वक्त की रफ्तार के साथ सभी अपने अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। जी हाँ, चांद जाने की तैयारी कर रहा है और सूरज देवता आगमन की तैयारी पर हैं जोरों शोरों के साथ। सूर्य की किरणों का उजियारा सारे जहां को प्रकाशवान कर रहा है, एक नए विश्वास के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। आज का सवेरा सबकी राहों को एक अलग और एक नई दिशा दिखा रहा है। वहीं ठंडी हवाएं सबको सुकून दे रही हैं। जैसे माँ की गोद का सुकून कहता है कि सब अच्छा ही होगा।

इस दुनिया में सबका अपना एक महत्व है, अपना अस्तित्व है। हमें कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। रहीम जी भी कहते हैं, रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहा करे तरवारी।

कभी कभी हमारे छोटे छोटे प्रयास भी दोस्तों हमें सफलता दिला दे हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, बस सही समय का इंतजार करना पड़ता है। आज की कोशिश आने वाले बेहतरीन कल की दस्तक है। चिराग फिल्म का ये गीत आप सभी के लिए लता जी के स्वर में।

इसी के साथ भोर सुहानी से विदा लेते हैं रूपा, आप जुड़े रहिए इसी तरह, इसी शिद्दत के साथ, इसी प्यार के साथ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हर सुबह को अपने रूप में ढाल लीजिए। जी हाँ, जैसा आप चाहते हैं उसी रूप में इसे आप ढाल लीजिए। नमस्कार।

0: వైష్ణవి. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है. श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए. इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है. प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है.
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं. ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं. इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं.
0: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने चेन्नई में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के लिए चयनित 285 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटे. कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि सरकारी सेवा में शामिल होने वाले नए युवा 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे. सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमी

0: कंडक्टर उद्योग को उन देशों की साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा, क्योंकि अब वे चिप डिजाइन और निर्माण करने वाले सक्षम देश के रूप में उभर रहा है। इसे कई कंपनियां और देश अपने लिए खतरा मान सकते हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर उद्योग में हर स्तर पर व्यापक प्रयास की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उद्योग जगत, केंद्र सरकार और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। निर्वाचन आयोग आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित करेगा। इस दौरान मतदाता सूची में नए नाम जोड़े जा सकेंगे। किसी नाम को जोड़ने के प्रस्ताव या हटाए जाने पर आपत्ति दर्ज की जा सकेगी और मतदाता सूची के विवरण को ठीक कराया जा सकेगा। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के संबंध में कहा कि सुनवाई के दौरान गैर सूचीबद्ध दस्तावेज पर भी विचार किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस ने द्वारका जिले में अवैध रूप से और वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए विशेष अभियान चला है। इसका उद्देश्य ऐसे विदेशी नागरिकों की पहचान करना, उनके दस्तावेज का सत्यापन करना, आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों का पता लगाना और नियमानुसार कार्रवाई करना है। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा 100 हफ्ते नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में युवाओं को बड़े पैमाने पर एकजुट किया जाएगा। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने बताया कि देश भर में 1067 जगहों पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह आयोजित किया जा रहा है। समारोह में नशा मुक्ति की शपथ, हस्ताक्षर अभियान, खास विषयों पर आधारित नुक्कड़ नाटक, रचनात्मक लेखन और युवाओं की अगुवाई में चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जाएगा। जापान में 20वें एशियाई खेल 2026 में आज कई भारतीय खिलाड़ी अलग अलग स्पर्धाओं में पदक जीतने की कोशिश करेंगे। टेकबॉल खिलाड़ी क्विंसी डिसूजा आज सुबह 6:30 बजे कांस्य पदक के लिए जापान की युइना साकामोटो से मुकाबला करेंगी। इसके बाद भारतीय निशानेबाज एलाविनिल वेलारिविन, सोनम वक्सकर और विदर्शा विनोद महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में पदक जीतने की कोशिश करेंगे। ये तीनों खिलाड़ी व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा में पदक के लिए मुकाबला करेंगी। भारतीय महिला हॉकी टीम भी अपने अभियान की शुरुआत करेगी और ग्रुप स्टेज के पहले मैच में उज्बेकिस्तान का सामना करेगी। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। इससे पहले अन्य सेमीफाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने होंगे। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय क्षेत्रों में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटका, तमिलनाडु में कल तक गरज चमक के साथ तेज हवा चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. Prime Minister Narendra Modi has distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 20th Rozgar Mela through video conferencing. Speaking on the occasion, Mr. Modi emphasized the pivotal role of youth in building a developed and self-reliant India. He said that in recent years, the central government has consistently focused on equipping the youth with the skills and opportunities needed to prepare for the future.
2: बीते वर्षों में भारत सरकार का निरंतर जोर युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने पर रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना या अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देने का प्रयास, हमारी कोशिश है कि युवाओं की पढ़ाई और उनकी स्किल्स बदलती इकोनॉमी की जरूरतों के साथ चले। जैसे एक उदाहरण है पीएम सेतु। इस योजना के माध्यम से 60,000 करोड़ रुपए के निवेश से 1,000 सरकारी ITIs को आधुनिक बनाया जा रहा है। इसमें इंडस्ट्री की सीधी भागीदारी सुनिश्चित की गई है।
1: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP has secured 3 major posts in the Delhi University Students Union DUSU elections. ABVP's Yash Dabas won the post of president, while Riya Chavri secured victory for secretary and Lakshya Raj Singh for joint secretary. However, independent candidate Dipan

0: एमए के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में मंगोलिया के खिलाड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है और अपने लिए कम से कम एक कांस्य पदक अर्जित कर लिया.
1: Yes, she has made it to the semi-finals, which means the bronze medal is confirmed. India's first medal is confirmed. And what a story Suchika has had. She's 36 years of age, playing her second Asian Games. But the last time around in 2023 in Hangzhou, China, she was representing India in Kurash. Before that, she has also tried her hands on jujutsu and judo. And finally, her medal has come in MMA. That tells you that if you keep on knocking the door, eventually it will break down. Talking about breaking down doors, the Indian women's hockey team is breaking some doors down in their first match. They are off to a winning start.
0: बिल्कुल जी हाँ, बात हॉकी की है और एक तरफा मुकाबला जो हॉकी में महिलाओं का खेला गया उसमें भारतीय महिला टीम ने एक तरफा अंदाज में इस मुकाबले को 19-0 से अपने नाम कर लिया और एक बेहतरीन स्टार्ट इंडिया को दिया.
1: Yes, they have defeated Uzbekistan. Of course, Uzbekistan were not considered a big boulder in their way. They were considered a very light team, thin on experience, and India were going in as the favorites. However, the kind of explosivity that India showed was heartening. They were playing in their saffron kits and they started off on the right note in the 6th minute. Lal Rensemai, who was struggling with some strain in her hamstring and had her hamstring heavily taped, scored the first goal, and after that the procession began. Total 19 goals, out of which 8 came off Deepika's hockey stick. 19-0, first game done. The Indian women's team have started off on the right note, and now the eyes will be on India's men's team, who will be in action at 11:30 a.m. by Indian Standard Time. They will be facing Indonesia in their first pool match.
0: बात करते हैं अब अन्य मुकाबलों की, जिसमें अब टेग बॉल की, जहां पर लग रहा था कि इस डेब्यू खेल में भारत को कोई ना कोई पदक जरूर मिलेगा, क्योंकि दो कांस्य पदक के मैच मुकाबले थे निशाने पर, लेकिन यहां पर हमें निराशा हाथ लगी है. टेग बॉल में डेब्यू हुए इस खेल से पदक की उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं. महिला सिंगल्स के कांस्य पदक मुकाबले में क्विम्सी डिसूजा को जापान की विश्व नंबर 7 युइना साकामोटो के खिलाफ 2 सेटों में हार का सामना करना पड़ा. दोनों गेम बेहद करीबी रहे, लेकिन क्विम्सी दोनों सेट 11-12 के अंतर से हार गयी. हार के साथ चौथे स्थान पर रही और हिस्ट्री बनाने से चूक गयी. इसी के साथ टेग बॉल में अगला मुकाबला हुआ मिक्स डबल्स का, जहां एक और कांस्य पदक दाव पर था, लेकिन यह मुकाबला भी भारतीय टीम वियतनाम की जोड़ी से हार गई. मिक्स डबल में क्विम्सी और मोहम्मद अनस इमरान बेग की जोड़ी वियतनाम से 12-9, 12-6 से हार कर बाहर हो गई, और इस तरह से एशियन गेम्स में टेग बॉल में भारत का अभियान बिना पदक के समाप्त हो गया.
1: यू हैव टू फील फॉर क्विन्सी डिसूजा. शी हैड टू प्ले बैक टू बैक मैचेस एंड हर बॉडी कुड नॉट टेक द टोल ऑफ इट. शी वाज स्ट्रगलिंग विद सम एक्सक्रूशिएटिंग पेन इन हर लोअर बैक, ड्यू टू व्हिच देयर वर मल्टीपल टाइम आउट्स कॉल्ड. शी हैड टू टेक मल्टीपल इंजरी ब्रेक्स, बट इवेंचुअली शी गॉट अप, कंपीटेड. यस, शी डिड नॉट विन द मैच. हाउएवर, वी हैव अ लॉट टू लर्न फ्रॉम द वेलर.

भाई वाह, क्या कहने। सुबह सुबह आज 10:22 जहां पर हमारी स्टूडियोज की घड़ी बता रही है, उस वक्त कभी कभी खयाम की मौसीकी से लबरेज ये गाना दिलों को छू जाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, संडे की सुबह और हॉलिडे का रंग छाया हुआ है और हल्के से बादल है। बूंदाबांदी कल बहुत जोरों शोर से हुई है। आज हम एक ऐसे गीत के बारे में बात करेंगे जो एक सुर नहीं बल्कि एक जज्बात है। मुकेश की आवाज़ में कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। बहुत ही दिलचस्प और खुशनुमा गाना है। खयाम के मौसीकी के तले और साहिर लुधियानवी के अल्फाज ने इसे एक ऐसी शायराना रंग दिया है कि उसकी मिसाल शायद ही देखने को मिलती है। फिल्म कभी कभी 1976 की ये फिल्म है। अमिताभ बच्चन, राखी, शशि कपूर, वहीदा रहमान, ऋषि कपूर, नीतू सिंह की अहम भूमिका पर बनी ये फिल्म थी। एंड द सॉन्ग इज अ जेंटल कन्फेशन ऑफ लव एंड लव रैप्ड इन मुकेश वेलवेटी वॉइस। साहिर लुधियानवी पोएट्री स्पीक्स ऑफ फ्लीटिंग रोमांस एंड इटर्नल लॉन्गिंग। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है इज मोर देन जस्ट अ लाइन टुडे, इट्स अ साई ऑफ द सोल। खयाम्स मिनिमलिस्ट कॉम्पोजिशन अलाउज द लिरिक्स टू शाइन, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक बैलेड्स इन हिंदी सिनेमा। क्यों हम इस गाने को सुनते हैं? बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ सॉन्ग बट इट्स ऑल्सो टाइमलेस डायलॉग बिटवीन हार्ट एंड द मेमोरी। इट रिमाइंड्स अस दैट लव, इवन इफ इनकम्प्लीट, लीव्स बिहाइंड अ फ्रेग्रेंस दैट नेवर फेड्स। द सॉन्ग वॉज ओरिजिनली रिटन बाय साहिर लुधियानवी एज अ स्टैंड अलोन पोएम बट लेटर ऑन बींग एडेप्टेड फॉर द फिल्म। खयाम का जो डिसीजन था कि इस गाने के लिए कम अज कम ऑर्केस्ट्रा और मुकेश की आवाज को ज्यादा हॉन्टिंग

0: All right, so we'll quickly take you to our New Delhi studios to listen to the 20th edition of the Asian Games 2026 being held in Japan. Some lively updates.
1: Aichi Nagoya.
2: नमस्कार। जापान के नागोया में चल रहे 20वें एशियाई खेलों की ताजा अपडेट के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ मैं कविता।
3: And I am Darpan.
2: अब तक के भारत के प्रदर्शन की बात करें तो भारतीय परफॉर्मेंस में दो मेडल कंफर्म हो चुके हैं। पहली अपडेट में हमने आपको बताया था सुचिका तारियाल MMA सेमीफाइनल के मुकाबले में पहुंच गई हैं, जहां कम से कम उन्होंने अपने लिए एक कांस्य पदक सुनिश्चित कर लिया है और दूसरा पदक ऑफिशियल तौर पर आया है शूटिंग रेंज से।
3: Yes, so that becomes the first official medal that has been confirmed. Of course, Suchika could go on to get into the final, could wield a silver or a bronze. But the first official medal has come from the shooting range, 10-meter air rifle women's team event, where the trio of Elavanil Valarivan, Sonam Maskar and Vidarsa Vinod have confirmed a silver medal, and India are off the mark on the medals tally. Let us also tell you that out of these three, two shooters have even made it to the final of the individual event, which means Elavanil Valarivan and Sonam Maskar will be in action in the final of the 10-meter air rifle women's individual event final at 11 a.m., which means we could have a couple more medals in the store.
2: और अभी मेडल की उम्मीद खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इसके बाद स्विमिंग में भी हमारे पास एक मौका है मेडल अर्जित करने का। स्विमिंग में ऋषभ दास फाइनल में एंट्री कर चुके हैं, जहां 100 मीटर बैक स्ट्रोक में ऋषभ आज अपना फाइनल मुकाबला खेलेंगे और इसी के साथ इनके साथ रहेंगे रिजर्व में उत्कर्ष पाटिल, जिनका मुकाबला होगा दोपहर को 2:40 पर। उम्मीद है कि यहां ऋषभ का मेडल आ जाए।
3: Then talking about a medal, where we are thinking that a medal is assured, is cricket. Women's cricket is currently underway. The semi-final match has begun. India are facing off against Bangladesh. India have won the toss, decided to have a bat first, and currently as we speak at the Korogi Sports Park, the duo of Smriti Mandhana and Shefali Verma is on the park, and Smriti Mandhana is just 7 runs away from becoming the highest ever run getter in women's T20 internationals. Will they be able to? Will she be able to break that record? We will know soon. Earlier in the day, Sri Lanka defeated Pakistan and made it to the final. So if India wins this, they will be facing off against Sri Lanka in the finale.
2: बात करते हैं टेबल टेनिस की, जहां हमारी महिला जो टीम है उन्होंने एक शानदार आगाज दिया है। दर्पण ने बताया क्रिकेट के बारे में और यहां पर हम टीटी की बात कर रहे हैं, जहां पर विमेंस टीम इवेंट में ग्रुप एफ के मुकाबले में इन तीनों ही खिलाड़ियों ने अपने अपने मुकाबले जीत लिए हैं। श्रीजा अकुला, दिया चिताले, यशस्वनी घोरपड़े ने यहां पर शानदार तरीके से एक तरफा अंदाज में जो आगाज दिया है टेबल टेनिस में, देखना होगा कि आगे का रास्ता कैसा रहता है।
3: Right, and the men's team is also in action in table tennis. India is facing off the same opponent, Indonesia, in the men's team event. Satya Nanasekaran got us off to a great start by winning the first match, and then in a seesaw battle, Manav Thakkar was pushed to the limit, but he came out on the top as well. He won his match as well, and currently Manu Shah is playing in the third match. 5 matches in total in one fixture, and if you win 3 of them, you win the entire fixture. The women won 3 straight. The men have won 2. If they win this one, they will be winning this fixture as well.
2: बिल्कुल, अब बात होगी हॉकी की, क्योंकि हॉकी में एक अच्छी खबर तो हमारे पास सुबह आ चुकी है, जहां पर भारतीय महिला टीम ने एक शानदार तरीके से आगाज दिया, लेकिन दूसरा मुकाबला भी होना बाकी है, जहां बात होगी पुरुषों की। और पुरुषों के मुकाबले में ये पूल ए का मुकाबला है, जहां आज ये दोनों टीमें इंडोनेशिया के साथ मुकाबला है, 11:30 आज मैदान पर होंगी।
3: राइट, रिमेम्बर इन द हॉकी इवेंट एंड क्वालिफिकेशन फॉर द 2028 LA ओलंपिक्स इज at stake, so we want both our men's team and the women's team to win gold. The women's team defeated Uzbekistan earlier today by 19-0, where Deepika herself scored 8 goals, and Savita Punya, our goalkeeper, had not much to do. She was playing her 320th international match, and with that she has now become along with Vandana Kataria the joint most capped player for India in women's hockey. Anyhow, talking about India's badminton campaign now, that gets underway at 11:30 today, where India are going to face off against Kazakhstan, and the women's

दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो नमस्ते हेलो आदाब। इन तीन अल्फाज के साथ मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो मैन। जी हाँ दोस्तों, संडे की गर्मी अपनी जगह है, लेकिन उसके साथ साथ सुरों की जो ठंडक है वो भी बरकरार है, और कहानियों का जो सफर है वो भी जारी है, और हमेशा दिल को सुकून देने वाली बातें जो है वो भी हम यहाँ पर करेंगे। आज महेश भट्ट का जन्मदिन है। महेश भट्ट हिंदुस्तानी सिनेमा के एक अजीम डायरेक्टर है, एक ऐसा फिल्म मेकर जिन्होंने हिंदी सिनेमा को असली जज्बात और सच्चाई के रंग दिए, और इस खास दिन पर हम उन्हें याद करते हैं। वो 77 इयर्स के हो गए हैं और उनके बेशुमार जो नगमे हैं वो सुनाने की कोशिश करेंगे। तो मैंने शुरुआत में कहा था कि मुस्कुराता हुआ मेरा यार, तो उसी गाने को हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि दरमियान में वो गाना हमने रोक दिया था हमारे लाइव अपडेट्स जो कि एशियन गेम्स के ताल्लुक से थे। किशोर कुमार और कल्याण जी आनंद जी के कंपोजिशन में राजेंद्र कृष्ण के बोल लहू के दो रंग 1979 में ये फिल्म आई थी, और विनोद खन्ना, शबाना आजमी, डैनी डंगजप्पा के अहम किरदार के तले ये फिल्म थी। फिल्म का नाम आपको याद रहेगा, लहू के दो रंग। ये महेश भट्ट की अर्ली डायरेक्टोरियल वेंचर्स में से एक थी, एस्टैब्लिशिंग हिमसेल्फ एज अ फिल्म मेकर हु इज अनअफ्रेड टू मिक्स एन एक्शन एंड ड्रामा एंड ऑल्सो रोमांस। तो किशोरदा की आवाज़ इतनी बेहतरीन है कि उनके रेंडिशन ने एक लाइटर रोमांटिक एज स्टोरी लाइन में बरपा किया। द मूवी एक्चुअली वॉन टू फिल्म फेयर अवार्ड्स, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर डैनी डंगजप्पा और बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर कल्याण जी आनंद जी। लहू के दो रंग से मुस्कुराता हुआ।

वाह, क्या खूबसूरत गाना है। मैं बयान नहीं कर सकता, इतनी दिलचस्प और इतनी खूबसूरत बयानी है कि कहना बड़ा मुश्किल है। द फिल्म टेल्स द स्टोरी ऑफ इंस्पेक्टर राज, जो कि विनोद खन्ना ने इसका किरदार अदा किया, हु ट्राइज टू अनकवर्स द शॉकिंग ट्रूथ अबाउट हिज फैमिली वाइल फाइटिंग क्राइम। सो इट्स अ टेल ऑफ बिट्रेयल, रिवेंज एंड ऑल्सो जस्टिस। तो महेश भट्ट ने अपने सिग्नेचर इमोशनल डेप्थ के साथ शबाना आजमी की परफॉर्मेंस को भी एक नया रोशन चेहरा बनाकर भेजा। वाइल डैनी रोल ऑल्सो अर्न हिम एक्लेड्स, द फिल्म मार्क महेश भट्ट राइज एज अ डायरेक्टर हु कुड बैलेंस कमर्शियल अपील विद लेयर्ड स्टोरी टेलिंग, नुएंस स्टोरी टेलिंग एंड अ क्वालिटी दैट लेटर डिफाइंड हिज करियर। है ना कमाल की बात। तो दोस्तों, लहू के दो रंग वॉज मोर देन अ फिल्म, इट वॉज महेश भट्ट अर्ली प्रॉमिस, अ फिल्म मेकर हु गेव हिंदी सिनेमा इट्स इमोशनल एंड अनफॉरगेटेबल एब्सोल्युटली दीज थिंग्स। मुस्कुराता हुआ मेरा यार एक लाइटर शेड है जॉय का, एंड आज उनकी जन्मदिन पर वी सैल्यूट हिम, हिज करेज, हिज कॉन्ट्रीब्यूशन एंड हिज सिनेमा। सो स्टे ट्यून ऑन रेनबो FM 101.9 बिकॉज द जर्नी ऑफ सॉन्ग्स एंड स्टोरीज कंटिन्यू हियर। तो आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक और ही बहुत ही खूबसूरत सी गजल, जगजीत सिंह की आवाज में। फिल्म है अर्थ, और इसके माने आपको बहुत ही जल्द पता चल जाएंगे। हमारे साथ यूं ही बने रहिए।

वेल बहुत ही शानदार सा नगमा आपने सुना, इतनी खूबसूरत गजल शायद ही आपको सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। दोस्तों, संडे की जो अपनी खुशी है, एक 6 दिनों के बाद जब रुखसत की बारी आती है तो कहीं ना कहीं आपको ठंडक जरूर मिलती है। भले ही मौसम कैसा भी होने दीजिए, सुरों की ठंडक और कहानियों का जादू हमेशा दिल को सुकून देता है। आज महेश भट्ट का जन्मदिन है, एक फिल्म मेकर जिन्होंने हिंदी सिनेमा को अपने अहम जज्बात अता किए हैं। जगजीत सिंह की आवाज़ में आपने सुना ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत, जिसके कंपोजर खुद जगजीत सिंह थे और बोल थे कैफी आजमी के। फिल्म अर्थ, अर्थ के मतलब माने होते हैं, मीनिंग। 1982 की फिल्म थी जिसे महेश भट्ट ने खुद डायरेक्ट किया था। और दिस इज गजल, अगर आप कहेंगे गाना नहीं, नगमा नहीं, बल्कि इट्स अ मिरर ऑफ पेन बिहाइंड द स्माइल। जगजीत सिंह की आवाज कैरीज दैट क्वाइट एक, कैफी आजमी के शायरी में एक कहीं ना कहीं अपनी रूह को झिंझोड़ने की और फिर उसे समझने की कोशिश बताई जाती है। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? गम जो है एक बहुत ही गहरी साइकोलॉजिकल कैफियत होती है, एंड इट्स अ क्वेश्चन वी ऑल आस्क आवरसेल्व्स एट वन पॉइंट, हाउ मच सोरोज़ और

hide behind the mask of happiness. हम क्यों इस गाने को सुनना चाहते हैं? क्योंकि it reminds us that music can heal, but it also can reveal about Jagdish Singh's rendition makes this ghazal immortal. Mahesh Bhatt's placement of the song in Earth film gave it cinematic power. Earth was one of the first mainstream Hindi films, openly explores the themes of infidelity and women's search for identity. Bade gehre subjects the. इतने आसानी से इन सब्जेक्ट्स को शायद जगह या फिर कुछ और मिली होगी, बिल्कुल भी नहीं. इसी वजह से ये गाना और ये गज़ल बहुत इम्पोर्टेंट है. जगजीत सिंह की गज़ल गज़ल की मौसिकी को एक नई पॉपुलैरिटी बख्शी एंड क्रिएटिंग अ न्यू वेव ऑफ सोलफुल ट्रैक्स. द सॉन्ग रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड गज़ल्स ऑन रेडियो इवन टुडे. सो इसी वजह से इतनी दहेज गुजरने के बावजूद भी हम इस गाने को याद करते हैं. बहुत ही खूबसूरत फिल्म है अर्थ. अगर आपने नहीं देखी है तो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है. तो दोस्तों, अर्थ वॉज नॉट जस्ट अ फिल्म बट दैट वॉज अ रेवोल्यूशन. स्टोरी of a woman finding her own strength, a story of truth told without compromise. Hai na khoobsurat si baat. Aaiye ek aur gaana.

कब्जा फिल्म एक और खूबसूरत फिल्म है महेश भट्ट की, उसी से आप ये गाना सुन रहे हैं। कुछ ही लम्हों में हम आपको लिए चलते हैं हमारे न्यू दिल्ली के स्टूडियोज में, जहां पर आप सुन सकते हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111।

0: नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि हमारा ये कार्यक्रम मन की बात का विस्तार है, और इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में उल्लेख किया एक बेहद रोचक वेबसाइट का। साथ ही जो वेबसाइट के संस्थापक हैं उनसे बात भी की, आपको याद आया? वेबसाइट थी www.bharatrajya.com और इसके संस्थापक श्री कृष्णा शेषाद्री जी, इनसे प्रधानमंत्री जी ने बात भी की थी। तो आज हम भी कृष्णा शेषाद्री जी से अपनी एक बातचीत के माध्यम से आपको इस वेबसाइट के बारे में बेहद रोचक जानकारी दे रहे हैं, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। लेकिन आइए, सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं मन की बात का वो अंश जिसमें प्रधानमंत्री जी ने कृष्णा शेषाद्री जी से बात की थी।
1: साथियों, कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर किसी ने लिखा था, आषाढ़ी एकादशी के पावन अवसर पर मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इतिहास को रोचक बनाने के अपने प्रयास का शुभारंभ कर रहा हूं। उन्होंने आगे बताया, यह आइडिया बहुत ही सिंपल है। आप इस वेबसाइट पर जाएं और कोई भी एक वर्ष चुन लें। यहां आपको आसानी से पता चलेगा कि उस समय भारत के किस हिस्से पर किसका शासन था। मुझे भी यह काफी दिलचस्प लगा। मैंने सोचा कि इसके बारे में और अधिक जानकारी ली जाए। मुझे पता चला कि यह काम मुंबई में रहने वाले श्रीमान कृष्णा शेषाद्री जी ने किया है। मजे की बात यह है कि कृष्णा जी ने वेबसाइट का नाम भी बहुत सिंपल रखा है, www.bharatrajya.com। उन्होंने जो प्रयास किया है उसकी जानकारी आप लोगों तक भी जरूर पहुंचनी चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न सीधे श्री कृष्णा जी से ही बात की जाए। साथियों, कृष्णा जी हमारे साथ फोन पर जुड़ रहे हैं। कृष्णा जी नमस्ते।
2: नमस्ते सर, नमस्ते।
1: भाई, मुझे पता चला है न आप टेक की दुनिया से हो, न आप हिस्ट्री टीचर हो, फिर भी आपने टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हिस्ट्री की साइट बना डाली, तो मुझे बहुत उत्सुकता है ये सब कैसे हुआ।
2: सर धन्यवाद, सर आपसे बात करके मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो सर मेरे बारे में अगर मैं थोड़ा बताऊं तो सर मैं एक इंजीनियर था, फिर मैंने MBA किया, फिर मैं मार्केटिंग फील्ड में चला गया। लेकिन ये सब जब भी करता था तब भी मेरे को बचपन से इतिहास में हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था। तो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू समथिंग ऑन हिस्ट्री, हाउ टू मेक इट इंटरेस्टिंग। एंड मेरे को ये भी लगता था कि हम जैसे हिस्ट्री सिखाते हैं उसमें हम बहुत इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उसमें हम बहुत बदलाव लेके आ सकते हैं, हिस्ट्री को एक कहानी बना के लोगों तक पहुंचा सकते हैं।
1: कृष्णा जी, भारतीय इतिहास का ऐसा कौन सा पहलू है जिसके बारे में आपको लगा कि इसका जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को होनी चाहिए?
2: सर अगर आप भारतीय इतिहास जैसे हमारे स्कूलों या कॉलेजों में सिखाया जाता है, जैसे आप देखते हो, तो वो एक कोई एक एम्पायर या कोई एक किंगडम उसके दृष्टिकोण से, उसके नजरिए से सिखाया जाता है, और वो एम्पायर्स को डिस्प्रोपोर्शनेट अटेंशन भी मिलता है। इस चक्कर में बाकी के बहुत सारे जो हमारे साम्राज्य थे, जो महान साम्राज्य थे, जैसे चोलास थे, पल्लवास थे, कारकोटा डायनेस्टी था कश्मीर में, अहोम्स थे, जिन्होंने कम से कम 600 साल आसाम में अपनी संस्कृति और अपने वैल्यू सिस्टम को बरकरार रखा, ये सब के बारे में हम नहीं जानते। तो मैंने सोचा कि ऐसा कोई एक साइट बनाए जो ऐसे महान साम्राज्य को भी लोगों से इनको इंट्रोड्यूस किया जाए।
1: कृष्णा जी, आप इतनी मेहनत करते हैं, मैं ऐसे ही आपको हाइपोथेटिकल सवाल पूछता हूँ। अगर आपको इंडियन हिस्ट्री के किसी भी 3 लोगों से बातचीत का अवसर मिले तो आप किन से बात करना चाहेंगे और क्यों?
2: हाँ सर, तो पहले मैं बात करूंगा राजराज चोला या राजेंद्र चोला सर से, जो चोला साम्राज्य के सबसे मोस्ट पावरफुल या सबसे इम्पोर्टेंट राजाओं में से थे। तो मैं उनसे ये जानना चाहूंगा कि पहले उनको ये विजन कैसे आया, जैसे उन्होंने बृहदीश्वर टेम्पल या गंगाईकोंडा चोलापुरम के जो बड़े बड़े मंदिर हैं, शिव जी के मंदिर हैं, वो एग्जीक्यूट करने के लिए उनको वो विजन कहाँ से आया, वो प्लानिंग कैसे की, उनको वो थॉट कैसे आया कि हम ऐसा कुछ बना के जाए जो अगले 1000 या 2000 साल तक दूसरे लोगों को प्रेरित कर सके। तो वो मुझे उनसे जानना है। और दूसरी जो पर्सनैलिटी है ये एक्चुअली मेरे हिसाब से इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत अंडररेटेड पर्सनैलिटी है सर, उनका नाम है हेमू। तो हम उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंडियन इतिहास में 2 या 3 लाइन पढ़ते हैं। हमको ये नहीं पता है कि वो जो हेमू जो थे सर, वो एक कॉमन मैन थे, एक साधारण इंसान थे, वो एक व्यापारी थे। उधर से उन्होंने एक एम्पायर खड़ा किया, और वो नॉट ओनली वो एक एम्पायर बिल्डर थे, वो एक मिलिट्री थिंकर भी थे, मिलिट्री जीनियस थे, जिन्होंने अपने करियर में 23 लड़ाइयां लड़ी, उसमें से उन्होंने 22 लड़ाइयां जीती। तो उनका थॉट प्रोसेस कैसा था और कैसे वो एक आम आदमी से एक इतने बड़े राजा बने, वो उनका वो जर्नी मैं जानने की बहुत दिलचस्पी रखता हूँ सर। और तीसरी जो है ये दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी, शी इज अ वुमन सर, त्रिभुवना महादेवी। तो ये जो है एक उड़ीसा में एक किंगडम है जिसका नाम था भौमाकारा डायनेस्टी। तो इनकी भी कहानी बहुत दिलचस्प है। इन्होंने जब 850 के आसपास जो साल में उनके जो नेबर पाला एम्पायर ने इनके एम्पायर पे धावा बोल दिया था सर, और इनके राजा जो इनके हस्बैंड थे वो उस लड़ाई में शहीद हो गए, और इसके वजह से वो एम्पायर बहुत छोटा हो गया और उसके जो सरदार थे, उसके जो लीडर्स थे, वो एम्पायर छोड़ के जाने लग गए थे। तो ये जो त्रिभुवन महादेवी जो लेडी थी, इन्होंने वो सरकार संभाली एंड शी बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और उन्होंने सरकार को नॉट ओनली स्टेबिलाईज किया बट इतना उसको पावरफुल बना दिया कि वो अगले 100 साल तक कलिंगा और वो एरिया में राज करते रहे। तो दीस आर थ्री इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज व्हिच हुम आई वुड लाइक टू मीट इन हिस्ट्री सर।
0: हम जानते हैं कि ये बातचीत आपको बेहद रोचक लग रही है, लेकिन आपको हम ज्यादा तो ऑडियो क्लिप नहीं सुनवा पाएंगे। हाँ, कृष्णा शेषाद्री जी से हम बहुत सारे सवाल जरूर करेंगे ताकि इस वेबसाइट के बारे में, उनके इस प्रयास के बारे में हम और ज्यादा जान सके। तो सबसे पहले कार्यक्रम में स्वागत करते हैं कृष्णा शेषाद्री जी का। कृष्णा जी, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद धन्यवाद।
0: आप ये बताएं कि प्रधानमंत्री जी ने आपकी वेबसाइट का उल्लेख मन की बात में किया और आपसे संवाद भी हुआ उनका, कैसा लगा आपको, आपका अनुभव कैसा रहा?
3: फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, एंड ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आपने मुझे आपके स्टूडियो पे बुलाया। और जैसे बात आती है मन की बात की, तो पहले तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी से बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो वेबसाइट मैंने बनाया था एकदम मैंने एक हॉबी के तरह से बनाया था, मेरे को इससे कोई अपेक्षा नहीं थी, मुझे पसंद था तो मैंने बनाया। तो जब मुझे पता चला कि इस वेबसाइट को प्रधानमंत्री जी ने ना ही देखा है बट उसे यूज भी किया है, उसे एक्सपीरियंस किया है, उसके बहुत सारे फीचरों के साथ खेला है, तो इट वॉज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी, नॉट ओनली फॉर मी बट फॉर माई फैमिली एज वेल। द मोस्ट इमोशनल मोमेंट फॉर मी वॉज वेन माई मदर क्राइड आफ्टर सीइंग द ब्रॉडकास्ट, इट वॉज टीयर्स ऑफ जॉय दैट शी हैड। मेरे को इतनी अच्छी फीलिंग आ गई थी कि हमारे सबका एक लक्ष्य होता है, पूरी दुनिया चाहे ना चाहे हमें अपने माँ पिताजी, वी हैव टू मेक देम प्राउड, और वो मैंने इसके थ्रू किया, दैट वॉज माई बिगेस्ट सेटिस्फेक्शन। और मेरी जो वाइफ है शी इज अ नेशनल लेवल राइफल शूटर, सो शी नोज हाउ हार्ड इट इज टू अचीव समथिंग एट दैट लेवल, एंड सो शी वॉज ऑल्सो वेरी वेरी हैप्पी। और रही बात बाकी दोस्तों या प्रतिक्रियाओं की, मेरे बहुत सारे जो ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप थे जिसमें कोई मैसेज नहीं भेजता था, वो जाग उठे थे मन की बात के बाद। बहुत सारे लोगों ने उसमें कॉन्ग्रेचुलेट किया, बहुत सारे लोगों ने अपनी पॉजिटिव ओपिनियन या प्रतिक्रिया दी, वेबसाइट के बारे में तारीफ की, विच आई फेल्ट वेरी हैप्पी। एंड द बेस्ट पार्ट वॉज अ लॉट ऑफ पीपल इन माई पेरेंट्स, जो हमारे मम्मी डैडी अपार्टमेंट में रहते हैं, बहुत सारे लोगों ने मेरे मम्मी डैडी को, अच्छा वो आपका बेटा है, वो आपका बेटा है, जो वो एक फीलिंग मेरे मम्मी डैडी के, आज भी मेरी मम्मी डैडी के आंखों में वो जो प्राइड है, मैं आपको सच बताऊं तो अभी भी, आज भी मैं थोड़ा विश्वास नहीं हो रहा है कि, मेरे हिसाब से आई थिंक 2 हफ्ता हो गया है, लेकिन अभी भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि एक्चुअली ये मेरी वेबसाइट का जिक्र प्रधानमंत्री जी ने किया।
0: अच्छा, ये बताएं कि वेबसाइट शुरू करने का विचार आपको कैसे आया, कब सोचा आपने कि इस तरह की एक वेबसाइट मुझे शुरू करनी है?
3: एक्चुअली आपने मन की बात में भी सुना होगा तो मैं हिस्टोरियन नहीं हूँ, तो मैं एक इंजीनियर हूँ, फिर मैं एक MBA हूँ, मैं अभी मार्केटिंग में काम करता हूँ, अभी जो मैं कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, जो मेरे प्रोफेशनल लाइफ है और इतिहास में उसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन बचपन से मुझे इतिहास में एक विशेष तरह की दिलचस्पी है, आई हैड अ वेरी गुड इंटरेस्ट इन हिस्ट्री। तो एक्चुअली उसका इंस्पिरेशन जाता है मेरी माँ को, वी आर ऑल तमिलियंस, मेरी माँ एक तमिल में एक मैगजीन आती थी उस टाइम पे, वीकली मैगजीन होती थी, उसका नाम कल्की था, तो उन्होंने एक जो साउथ इंडियन चोलास के ऊपर एक एपिक लिखी थी, उसका नाम था पोन्नियिन सेल्वन, 1-2 साल पहले उसकी पिक्चर भी बनी थी, तो उस मैगजीन में हर हफ्ते वीकली स्निपेट्स के हिसाब से छपती थी, और मेरी माँ हर हफ्ते वो मैगजीन लेके आती थी और मुझे पढ़ के सुनाती थी, और उन्होंने इतने अच्छे से उस टाइम का, उन चोलास का, उन मंदिरों का और उस लैंडस्केप का इतने अच्छे तरह से वर्णन किया था कि मेरे तभी से मेरी हिस्ट्री में इंटरेस्ट शुरू हो गया था कि ये हम और किस तरह से देखें और किस तरह से जाने। और इस तरह से मैंने इतिहास के और सारे कई सारे किताबें पढ़ना शुरू की और वहीं से मेरा इंटरेस्ट हिस्ट्री में था। और रही बात भारत राज्य के इंस्पिरेशन की, तो मेरे जब भी मैं हिस्ट्री क्लास में स्कूल में पढ़ता था या कोई मुझे हिस्ट्री सिखाता था, हमारे देश में जिस तरह से हिस्ट्री सिखाई जाती है उससे आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी विथ इट। क्योंकि हम क्या करते हैं, एक इतिहास जैसे एक सब्जेक्ट को या एक डेट या कोई किंगडम या कोई किंग उस लेवल पे लेके आ जाते हैं, तो उसके वजह से क्या होता है कि इतिहास जो है एकदम ड्राई और बोरिंग सब्जेक्ट बन जाता है। जैसे आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि जहांगीर ने क्या किया, उससे मेरा क्या लेना देना, तो मतलब हिस्ट्री एकदम बोरिंग सब्जेक्ट बन जाता है। और हम कभी भी हिस्ट्री को पूरे भारत के दृष्टिकोण से नहीं देखते। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बताऊं कि हमको ये नहीं पता कि जब मुगल नॉर्थ में थे, जब बाबर आए थे देश में 1526 में, तब साउथ में क्या हो रहा था। जब वास्को डगामा आए थे 1400s के एंड में, तब नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा था। तो हमें एक पूरा इंडिया का व्यू हिस्ट्री में कभी नहीं मिलता। तो ये जो था, ये आइडिया मेरे मन में 15 साल से इट वॉज ट्रबलिंग मी, मेरे को चुभ रहा था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जब वो आइडिया आया तो मेरे पास वो ना टेक्निकल एक्सपर्टीज थी ना नॉलेज थी उस आइडिया को एक वर्किंग वेबसाइट बनाने में। लेकिन जब ये AI रेवोल्यूशन आया 3 साल, जब AI ने हमें कोडिंग और प्रोग्राम बनाने की शक्ति दी, तो मैंने सोचा क्यों ना उसे इस्तेमाल करके मेरे 15 साल के ख्वाब को सच बनाया जाए।
0: तो कृष्णा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ऐतिहासिक लेखों, दुर्लभ तस्वीरों और नक्शों को जब हम आर्काइव करते हैं, फिर उन्हें जब सर्च करना चाहते हैं, तो उसके लिए डेटाबेस को कैसे आपने डिजाइन किया?
3: अगर आप भारत राज्य के वेबसाइट देखेंगे तो इसका स्ट्रेंथ ही इसकी सिंप्लिसिटी है। हम ना कुछ कॉम्प्लिकेटेड डेटाबेस या ना कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीजें हम यूज करते हैं। हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पहलू, जो वेबसाइट का जो हीरो है, वो मैप है। आप देखोगे तो बहुत सारे इंटरनेट में ऐसे ओपन सोर्स मैप मिलते हैं जहां पे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक आपको बराबर मैपिंग मिल जाती है। तो हमने क्या किया कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो मैप है, उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल के मैप को लिया और हमने एक सब कॉन्टिनेंट व्यू लिया था। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश, इस 5 कंट्री के मुझे डिस्ट्रिक्ट लेवल मैप्स मिले। और फिर मैंने क्या किया कि AI के थ्रू मैंने ऐसे सोर्सेस या ऐसे बुक्स चूज किए जो इतिहास में एक स्टैंडर्ड माना जाता है, जैसे जादूनाथ सरकार जी हैं और ऐसे बहुत सारे किताबें हैं जो हमने मैसूर किंगडम के एक हर्षवर्धन राव करके एक हैं, शायद मैं नाम में थोड़ी प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक कर सकता हूँ, मुझसे माफी चाहता हूँ। तो ऐसे मैंने कम से कम एटलीस्ट 25-30 बुक्स को सोर्सेस के नाम पे डिसाइड किया। और फिर मैंने क्या किया कि AI को ये सारे बुक्स में सर्च करने बोला कि एक ईयर में उस डिस्ट्रिक्ट में कौन राज कर रहा था। और इस तरह से मैंने एक पूरी मैपिंग बनाई। अभी जो आप लेते जाओगे तो 300 CE से आपके पास डेटा है, तो 300 CE टू 2026 में हर एक साल में हर एक डिस्ट्रिक्ट में किसने राज किया का मैंने एक मैपिंग बनाया, और वो मैपिंग से आपको भारत राज्य आज दिखता है।
0: आपसे रोचक बातचीत जारी रहेगी यहाँ इसी मोड़ पर। मैं आपसे आपकी पसंद का एक गाना पूछना चाहूंगी जो हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे।
3: हाँ, ये जो गीत है ये मेरी वाइफ और मेरे पिताजी और मेरी मम्मी, ये तीनों का वन ऑफ मोर मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स। डेफिनेटली ये गाना सुनिए। ये गाना है अमर प्रेम से कुछ तो लोग कहेंगे।
0: ठीक है, तो लीजिए आपकी पसंद का ये गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं।

0: गाने के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। मन की बात का विस्तार लिए ये कार्यक्रम आज आप तक लाया है एक वेबसाइट के बारे में रोचक जानकारी। हमारे विशेषज्ञ हैं इस कार्यक्रम में कृष्णा शेषाद्री जी, जो कि www.bharatrajya.com वेबसाइट के संस्थापक हैं और अपने इस सपने को साकार कर चुके हैं वेबसाइट के माध्यम से। हम इसी के बारे में आज जान रहे हैं शेषाद्री जी से। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि जो पुरानी हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें होती हैं या दस्तावेज होते हैं, जब हम वो चेक करते हैं तो वेबसाइट की जो स्पीड है बहुत धीमी हो जाती है उनकी वजह से। तो आपने ऑप्टिमाइजेशन की तकनीक इस्तेमाल की है ताकि ठीक से ये वेबसाइट चल सके?
1: तो हमारे वेबसाइट में मैंने ऐसे कोई हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें या ये कोई नहीं डाला है, क्योंकि मेरा ये मैप बेस्ड वेबसाइट है, तो इसमें हम तस्वीरें नहीं डाल रहे हैं। क्योंकि मुझे पता था कि अगर हम तस्वीरें डालते हैं तो हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, कि भारत राज्य का मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में किस किस भाग में कौन राज कर रहा था। तो मेरे को उस ऑब्जेक्टिव से डाइवर्ट नहीं होना था, तो इसके लिए पिक्चर्स हो या ऐसे हाई रेजोल्यूशन फोटो हो जिससे यूजर का ध्यान या यूजर का क्या बोलते हैं उसका एक्सपीरियंस हर्ट हो सकता है या डिमिनिश हो सकता है, वो कोई भी फीचर मैंने नहीं डाले हैं। और रही बात उससे डेटा निकालने में, हाँ, बहुत सारे किताबें ऐसी थी जो एक फोटो के हिसाब से थी, तो हमने जब एरिया के लिए वो डेटा सेट लोड करने से पहले मैंने उसको OCR कराया, उसको एक टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट किया और उस कन्वर्जन से मैंने डेटा निकाला। लेकिन अगर आप देखने जाओगे वेबसाइट में कोई ऐसा कोई फोटो नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर हम वो फोटो डालते हैं तो यूजर का ध्यान बट जाता है और हमारे वेबसाइट का कोर ऑब्जेक्टिव है वो शायद कहीं मीट नहीं हो पाता।
0: आपकी वेबसाइट में लोग सामग्री जोड़ सकते हैं और इस तरह से आपके प्रयास में वो भी जुड़ते हैं। मैं यहाँ जानना चाहूंगी कि आपने सिक्योरिटी के लिए भी क्या कुछ फीचर्स ऐड किए हैं कि जो हमारे सही तथ्य हैं उनसे छेड़छाड़ ना हो।
1: हमने किसी को भी एडिट राइट नहीं दिए हैं, तो एडिट राइट्स अभी फिलहाल सिर्फ मेरे पास ही हैं। तो कोई भी सुझाव आते हैं, कोई भी हमको करेक्शंस आते हैं, कोई भी रिकमेंडेशंस आते हैं, तो मैं अपने सोर्सेस, जो हमने बुक्स की जो सोर्सेस गैदर की हैं, जो आपको हमारे वेबसाइट के सोर्सेस के टैब में भी मिल जाएंगी, उसके अगेंस्ट मैं मेजर करता हूं। अगर वो सोर्स में होता है तो ही मैं उसको इनकॉर्पोरेट करता हूं। पूरा वेबसाइट का कंटेंट है, मैं अकेले अपने कंप्यूटर से उसको अपलोड करता हूं। ये कहीं इंटरनेट में या कहीं ऐसे जगह नहीं है जहां पे आके लोग उसे हैक कर सके। तो इसके लिए जितना मैंने ये वेबसाइट को सिंपल बनाया है। और रही बात सिक्योरिटी या चोरी करने की डेटा की, तो मैंने ये जो वेबसाइट है ये ओपन सोर्स कर दिया है, फ्री कर दिया है, तो अगर कोई भी जाके मेरे वेबसाइट से वो मेरा जो भी सारा डेटा है वो डाउनलोड करके अपना खुद का वेबसाइट भी बना सकता है। क्योंकि मैंने जब ये वेबसाइट बनाया तो मुझे ये लगा था कि हमको कभी अपना जो नॉलेज है, अपनी जो भारत की इतनी वास्ट नॉलेज का जो हमारी रिपोजिटरी है, वो हमेशा सबको ओपन होनी चाहिए। इट हैज टू बी एक्सेसिबल फॉर एवरीवन। और हम वो नहीं कर सकते अगर हमने उसमें कुछ या पे वॉल लगा दिया या उसको पैसे लेके उसको एक्सेस दिया, तो ये जो वेबसाइट का ऑब्जेक्टिव है टू मेक हिस्ट्री फन टू एवरीवन, वो फेल हो जाएगा। इसके लिए मुझे सिक्योरिटी की कोई डर नहीं। अगर कोई तोड़ के डेटा ले भी जाए तो वो अच्छा ही है, क्योंकि मैं उसे बस विश करूंगा कि इससे भी अच्छा और वो वेबसाइट बना दे। तो अगर आप जब भारत राज्य के वेबसाइट में जाएंगे तो वहां पे एक करेक्शंस करके एक टैब होगा, तो अगर वो आप करेक्शंस के टैब पे क्लिक करेंगे तो आपको दो टाइप के सजेशंस आप हमें दे सकते हो। एक है कि अगर हमें कोई फीचर्स चाहिए, जैसे हम बहुत लोग ने मन की बात प्रोग्राम के बाद बहुत लोगों ने ऐसा सुझाव दिया कि ये वेबसाइट को आप रीजनल लैंग्वेज में अवेलेबल करो, तो वो टाइप के फीडबैक भी हम आप दे सकते हो। और अगर दूसरी टाइप का फीडबैक ये है, अगर आपको लगता है कि इस प्रदेश में जो हमने मार्क किया है ये जो रूलर है वो गलत है, तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल तक के करेक्शंस भी आप हमें पहुंचा सकते हो। इट इज अ वेरी इजी टू यूज, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड टैब, और आप उसमें जैसे ही सबमिट करेक्शन सबमिट करोगे वो हमको मेल में आता है, हम उसे रीड करते हैं। अगर वो सोर्सेस के साथ वेरीफाई होता है तो हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। क्योंकि करेक्शंस की इम्पोर्टेंट रीजन ये है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमने 1000 डिस्ट्रिक्ट को कम से कम 1500 साल पे मैप किया है। इसका मतलब है हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको 1000x1000 टाइम्स एंट्री आपको मिलेगी, तो और हमें पता है कि कहीं ना कहीं हम गलतियां करेंगे और इस गलती को हमको सबको मिलके सुधारना है। क्योंकि इंडियन हिस्ट्री ऐसी चीज है जो एक आदमी या एक वेबसाइट की बस की बात नहीं है, ये हम सबका एक वेबसाइट है और हम सबको मिला के सामूहिक योगदान से ही हम इसकी एंट्री को और एक्यूरेट बना सकते हैं और बेटर बना सकते हैं, ताकि अगले कुछ सालों तक ये हिस्ट्री लर्निंग को मजेदार बने।
0: आपसे रोचक बातचीत जारी रहेगी। यहाँ इसी मोड़ पर मैं आपसे आपकी पसंद का एक गाना पूछना चाहूंगी जो हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे।
1: सो दिस इज ऑल्सो डेडिकेटेड टू माई वाइफ। ये हमारी दोनों की फेवरेट मूवी तारे जमीन पर से है और वो जो गाना है खोलो खोलो, तो ये हमें बहुत दोनों को बहुत पसंद है एंड ये एकदम मोटिवेशनल सॉन्ग है।
0: ठीक है, तो लीजिए आपकी पसंद का ये गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं।

0: गाने के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। मन की बात का विस्तार लिए ये कार्यक्रम आज आप तक लाया है एक वेबसाइट के बारे में रोचक जानकारी। हमारे विशेषज्ञ हैं इस कार्यक्रम में कृष्णा शेषाद्री जी, जो कि www.bharatrajya.com वेबसाइट के संस्थापक हैं और अपने इस सपने को साकार कर चुके हैं वेबसाइट के माध्यम से। हम इसी के बारे में आज जान रहे हैं शेषाद्री जी से। कृष्णा जी, ये बताइए कि इस प्रोजेक्ट के दौरान आपकी जो सबसे बड़ी सीख थी वो क्या रही और शुरुआती दौर में कैसी चुनौतियां थी?
1: बिगेस्ट लेसन दैट आई हैव लर्न इन दिस एक्सपीरियंस इज बिल्डिंग थिंग्स, कि अगर आप कुछ चीज बिल्ड करते हो और अगर एक चीज क्रिएट करते हो, उसमें जो आपको मजा आता है वो और किसी चीज में नहीं आता। तो जब आप एक चीज आप देखते हो, एक वेबसाइट जो नहीं है, देन इट स्लोली कम्स टुगेदर एंड देन फाइनली एक विजुअली वो आपको दिखता है, जो आपको जॉय और वो एंजॉयमेंट आता है, इट आई डोंट थिंक देर आर वेरी फ्यू एक्सपीरियंसेस इन द वर्ल्ड विच आई थिंक प्रोबेबली मैच इट।
0: मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, हमारे जो दृष्टि बाधित साथी होते हैं, हम देखते हैं अक्सर कि वो पठन पाठन में बेहद रुचि लेते हैं और साथ ही बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं। ऐसे में वो नए नए माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं अपने ज्ञानवर्धन के लिए, नई तकनीक इस्तेमाल करते हैं। तो आपकी वेबसाइट पर क्या स्क्रीन रीडर जैसी सुविधा है ताकि दृष्टि बाधित साथी जो हैं वो भी आपकी वेबसाइट से जुड़ सके?
1: ये एक्चुअली आपने मुझे बहुत दुविधा में डाल दिया है, क्योंकि ये जो है भारत राज्य जो है एक विजुअल मीडियम का वेबसाइट है। इसमें हम विजुअली इंडिया के मैप को दिखाते हैं, इसको हम टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कन्वर्ट इन टू टेक्स्ट, और अगर हम टेक्स्ट

0: में कन्वर्ट कर भी दें तो एज अ स्क्रीन रीडर हो या जो तकनीक है वो वेबसाइट उनके लिए ऑप्टिमम एक्सपीरियंस नहीं बनेगा। लेकिन हमने थोड़े कुछ फीचर्स डाले हैं तो अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस है या किसी को और कुछ है तो वो हमने कलर ब्लाइंड मोड इंप्लीमेंट किया है ताकि वो भी ये वेबसाइट को एंजॉय कर सके।
1: जब आपने वेबसाइट डेवलप की तो उस दौरान बहुत सारे इतिहासकारों, शोधकर्ताओं या फिर कंटेंट राइटर्स के साथ आपका मिलना जुलना हुआ होगा, बातचीत हुई होगी, तो ये बताएं कि आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स कैसे उन्हें समझाई और कहीं इसमें तकनीक तो कोई बाधा नहीं बनी?
0: एक बात मैं अभी सच्चाई में बताता हूँ कि मैंने ये कंटेंट रिसर्च है, ये जो कंपाइलेशन है, ये मैंने अकेले में किया है। लेकिन मैं कभी जिंदगी में ये नहीं भूलूंगा कि मैंने अकेले में किया है, क्योंकि आई एम स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स। द एंटायर कॉन्टेंट, द एंटायर मैपिंग, जो भी आप देख रहे हो भारत राज्य में, डिस्ट्रिक्ट में किसने काम किया, ये मेरे से बहुत ही बड़े हस्तियों ने, बहुत ही बड़े हिस्टोरियंस ने इसके ऊपर अपनी पूरी जिंदगियां डेडिकेट की हैं, और उसमें से ऐसे किताबें लिखी हैं जिसमें सब कुछ क्लियर है। जैसे हमारे जो सोर्सेस हैं, सबसे बड़े सोर्स जो है वो आरसी मजूमदार जी हैं, जिनके ऑलमोस्ट 10 से 11 वॉल्यूम हैं जो इंडिया के वैदिक एज से लेके इंडिपेंडेंस स्ट्रगल तक सारी चीजें कवर करती हैं। फिर हमने नीलकंठ शास्त्री, जिन्होंने साउथ इंडिया की हिस्ट्री के ऊपर बहुत बड़ी अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं। जादूनाथ सरकार जी, जिसने फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर, मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया जैसे इतने अच्छी किताबें लिखी हैं इंडियन हिस्ट्री के ऊपर कि इट इज अमेजिंग द डिटेलिंग दैट दे हैव गॉन थ्रू। और बहुत सारे और भी ऑथर्स हैं, जैसे एक ऑथर थे जिसने सिर्फ राजपूतों पे, राजस्थान पे 5 वॉल्यूम लिखे हैं। एक एक छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट तक उन्होंने कवर किया है कि कब क्या हुआ, कौन सा युद्ध हुआ, युद्ध में कौन सी टेरिटरी इधर से उधर गई। तो मैंने ऐसा नहीं समझा है कि मैंने अकेले में काम किया है। आई हैव ओनली रेफरेंस्ड एंड आई हैव ओनली यूज्ड द वर्क्स ऑफ ग्रेट पर्सनैलिटीज लाइक मजूमदार, जादूनाथ सरकार जी, नीलकंठ शास्त्री एंड ऐसे और एंड सो मेनी मोर ऑथर्स, और बिकॉज ऑफ हुम दिस वेबसाइट इज अलाइव टूडे। मैंने ऐसा तो नहीं कि मेरे पास कोई टीम ऑफ हिस्टोरियंस है, बट मेरे पास इन जैसे महान दिग्गज हिस्टोरियंस का आशीर्वाद था जिसकी वजह से आज ये भारत राज्य जो वेबसाइट है वो लाइव है।
1: जब प्रधानमंत्री जी से आपकी बात हो रही थी उस वक्त आपने उनसे कहा था कि हम इतिहास को रोचक तरीके से पढ़ा सकते हैं, तो इस बारे में आपके और क्या विचार हैं? एक प्रयास तो आप कर चुके हैं, आपको क्या लगता है हमें अपने बच्चों को अपना इतिहास, अपना गर्व कैसे बताना चाहिए?
0: जो आज हम इतिहास स्कूलों में पढ़ाते हैं या बहुत सारे जो नौजवान हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, तो उनको ये एक सोर्स ऑफ विजुअल हिस्ट्री है, और अगर ये देखेंगे तो और हिस्ट्री या इतिहास को और अच्छे से वो याद रख सकते हैं। हम वो ही एंगल से इस वेबसाइट को नियर फ्यूचर में हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा हमारे वेबसाइट में एक फीचर है ट्रम्प कार्ड का, तो हम सब जब बच्चे थे तब हमने WWE के या क्रिकेटर्स के ट्रम्प कार्ड के साथ बहुत एंजॉय किया है, और आज भी हमको बहुत सारे जो डेटा है वो ट्रम्प कार्ड के वजह से याद है। और हमने ये वेबसाइट में इतिहास के ट्रम्प कार्ड्स बनाए हैं, हर एक एम्पायर के, हर एक किंगडम के हमने ट्रम्प कार्ड्स बनाए हैं। तो अगर वो ट्रम्प कार्ड बच्चे रेफर करें या बच्चे यूज करें तो उनको इतिहास मजेदार ही नहीं रहेगा, याद भी रहेगा। मेरा उद्देश्य ये है कि हम हिस्ट्री को एक स्टोरी बनाएं, और अगर हम स्टोरी की तरह सब बच्चों को ये इतिहास पढ़ाएं तो वो इतिहास उन्हें याद तो रहेगा ही, बट वो उसे वैल्यू भी करेंगे।
1: हो सकता है कि हमारे न्यू डेवलपर्स इस समय आपको सुन रहे हों, हमारे ऐसे साथी, हमारे ऐसे श्रोता जो अपनी कोई वेबसाइट शुरू करना चाहते हैं या किसी वेबसाइट में सहयोग करना चाहते हैं, तो आप जरा उनके लिए बताएं क्या सलाह आप देंगे, उन्हें क्या क्या फीचर्स अपनाने चाहिए और कैसे तैयारी करें?
0: इफ एनीवन वांट्स टू बिल्ड एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, छोटी सी छोटी वेबसाइट हो सकती है या कुछ बड़ा भी प्रोजेक्ट हो सकता है, माय ओनली रिक्वेस्ट टू देम इज आप उसके अंदर जाइए, बिल्ड करना चालू कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे आप बिल्ड करोगे वो आपके अंदर अच्छा एहसास होगा, यू विल फील बेटर एंड देन यू विल नॉट ओनली बिकम अ बेटर बिल्डर बट यू विल ऑल्सो बिकम अ बेटर ह्यूमन। ये जरूर बोलूंगा कि ये जो प्रधानमंत्री जी का जो मन की बात इनिशिएटिव है, इट इज अ वेरी इंस्पायरिंग एंड अ मोटिवेटिंग इनिशिएटिव। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मतलब कोई जरूरत नहीं थी ये वेबसाइट के बारे में जाके मुझसे बात करने, बट उन्होंने इसमें इंटरेस्ट लिया, मेरे से बात की, वो वेबसाइट में, इससे बड़ा मोटिवेशन एक फॉरगेट टेक पर्सन किसी को भी नहीं हो सकता। और ये मन की बात जब हो गई तो इसमें मुझे एक रिन्यूड कॉन्फिडेंस आया, एक रिन्यूड एनर्जी आई है, जिसमें से मैं इस भारत राज्य को और भी ज्यादा बेहतर बनाऊं, और भी ज्यादा पीछे टाइम में जाऊं, जितना भारत

0: का इतिहास है उसे कवर कर सकूं, और इसे एक ऐसा वेबसाइट बनाऊं जो आगे इतिहास के लिए सबसे ज्यादा यूज्ड वेबसाइट हो। तो ये मोटिवेशन मन की बात के साथ आया है, और सबसे मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने मेहनत की है तो आपको उसका रिकॉग्निशन मिलेगा। ये मुझे मन की बात के ये प्रोग्राम के थ्रू, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट लेसन आई हैव लर्न्ड।
1: आपसे रोचक बातचीत जारी रहेगी। यहाँ इसी मोड़ पर मैं आपसे आपकी पसंद का एक गाना पूछना चाहूंगी जो हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे।
0: तो ये गाना मेरे जो बॉस हैं सुरेश कुमार सर, आनंद सर और राजेश सर को डेडिकेट करना चाहता हूँ। ये उनका एक वन ऑफ देयर फेवरेट सॉन्ग्स, दिस इज फ्रॉम आई थिंक नाइन मूवी हम दोनों। द सॉन्ग इज मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया।
1: ठीक है, तो लीजिए आपकी पसंद का ये गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं।
2: Even now, when I see myself on the screen, I rarely gag about myself. I'm a very great critic of myself. I may not say so to the world, but because I'm a very healthy sign, because you are in constant process of improving and progress. And that's a very, very great sign for any worker in any field, which is creative.

गाने के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। मन की बात का विस्तार लिए ये कार्यक्रम आज आप तक लाया है एक वेबसाइट के बारे में रोचक जानकारी। हमारे विशेषज्ञ हैं इस

0: कार्यक्रम में कृष्णा शेषाद्री जी, जो कि www.bharatrajya.com वेबसाइट के संस्थापक हैं और अपने इस सपने को साकार कर चुके हैं वेबसाइट के माध्यम से, हम इसी के बारे में आज जान रहे हैं शेषाद्री जी से। यहाँ आपसे एक बात और पूछना चाहूंगे कृष्णा जी, आपकी वेबसाइट में बहुत सारे ऐतिहासिक पात्र हैं जो हमें प्रेरित करते हैं, लेकिन ये बताइए कि आपके फेवरेट पात्र कौन से हैं, आप किन पात्रों से ज्यादा प्रभावित हुए हैं?
1: अब तो वेबसाइट पूरा बनाए तो सारे पात्र से प्रभावित हूँ ही, बट माई फेवरेट इज, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, माई फेवरेट इज द ट्रम्प कार्ड सेक्शन, क्योंकि अगर हमने अलग अलग टाइम के, अलग अलग टाइम पीरियड्स के, अलग अलग एम्पायर्स के कार्ड प्रिंट करके हमने हमारे बच्चों या हमारे स्कूलों में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो उनके थ्रू वो हिस्ट्री पढ़ाना मजेदार बना सकते हैं और उनके बच्चों के बीच में वो एक खुद ही में एक इंटरेस्टिंग गेम हो सकता है, जो वो समर में या कभी भी जब उनको टाइम मिले तो खेल के ना ही वो रिलैक्स कर सकते हैं, बट इतिहास के बारे में भी जान सकते हैं। तो हमारे वेबसाइट के थ्रू जो है आपको आपकी पूरी डिस्ट्रिक्ट की पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी। अगर आप रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हो तो आप रायगढ़ पे क्लिक करोगे तो 300 CE से आज तक रायगढ़ में किस किस लोगों ने राज किया, कितनी बार वो जिला हाथ बदला, कितने राजा आए, कितने राजा गए, ये सब का आपको एक ही जगह पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। वो ही नहीं, आपको और भी आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में और भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, जैसे उसका पॉपुलेशन क्या है, उसका एरिया क्या है, उसका एवरेज टेम्परेचर क्या है, उसमें कौन से क्रॉप उगते हैं, उसमें कौन से इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं, कौन से मंदिर हैं, कौन से आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, सबकी लिस्ट आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी, वो भी आप खुद डाउनलोड भी कर सकते हो। आई कैन टेल यू अ फनी इंसिडेंट रिगार्डिंग दिस। किसी कलीग को दिखा रहा था तो मैंने उसको पूछा कि तुम्हारा जिला कौन सा है जहां से तुम हो, तो उस जिला का नाम बताओ, तो उसने रायगढ़ बताया, तो हमने रायगढ़ पे क्लिक किया, तो रायगढ़ में अराउंड 1100-1200 के टाइम पे एक शिलाहारास करके एक जो डायनेस्टी थी वो रूल करती थी, तो वो उसने देखा और उसने बोला कि मेरा जो सरनेम है वो शिलाहारा है, तो वो उसी को नहीं पता था कि वो एक जमाने के राज परंपरा से था, तो वो एक अच्छा सा कोरिलेशन हो गया था हमको और उसको भी एक अच्छी जानकारी मिली जो उसको तभी तक नहीं पता थी।
0: कृष्णा जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके और बहुत कुछ हमें आपकी वेबसाइट के बारे में जानने को मिल रहा है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आने वाले समय के लिए क्या आप वर्चुअल रियलिटी या AI जैसे फीचर्स भी इसमें जोड़ने की योजना बना रहे हैं?
1: जैसे मैंने आपको बोला था कि 3D मॉडल्स ऑफ इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया, जैसे कैलाश टेम्पल हो, या जैसे मैंने बोला था बृहदीश्वर टेम्पल हो, या एलोरा केव्स हो, या अजंता केव्स हो, तो हम वर्चुअल रियलिटी के थ्रू लोगों को उन मॉन्यूमेंट्स को घर बैठे बैठे एक्सपीरियंस दे सकते हैं। मुझे VR के वर्ल्ड के बारे में इतनी ज्यादा जानकारी है नहीं, तो इसके लिए मैं इसके बारे में आपको विस्तारित से जवाब नहीं दे सकता, लेकिन आई एम श्योर दैट इन द कमिंग टाइम टेक्नोलॉजी विल बी सोफिस्टिकेटेड इनफ वेयर आप घर बैठे बैठे कैलाश टेम्पल को एक्सप्लोर कर सकते। तो ऐसे बहुत सारे फीचर डाल सकते हैं जहां पे लोग घर बैठे बैठे या वो मॉन्यूमेंट में ही वो मॉन्यूमेंट के बारे में जाने और उसको एंजॉय करें। अभी तो फिलहाल 3D मॉडलिंग तो हमने नहीं की, हमने तो एक सिंपल ओवर 2D मैप ओवर लेआउट में हमने एक टाइमलाइन किया है। जैसे हम सोच रहे हैं कि जैसे आगे बढ़े हम ऐसा भी कुछ करें कि भारत के कुछ इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं उसको हम एक 3D मॉडल बना के वेबसाइट में होस्ट करें, ताकि लोग वहां पे 3D के थ्रू उस मॉन्यूमेंट्स को एक्सपीरियंस कर सके। ये एक फीचर है जो हमने पाइपलाइन में रखी है, जल्दी में वो हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। कोलैबोरेशन से हमारा जो एक्यूरेसी है, ये जो एनरिचमेंट ऑफ डेटा है, ये कोलैबोरेशन से आगे बढ़ेगा। बट हाउ आई विजुअलाइज दिस वेबसाइट एटलीस्ट इन द नियर फ्यूचर इज एन एजुकेशनल एड।
0: आपसे रोचक बातचीत जारी रहेगी यहाँ इसी मोड़ पर। मैं आपसे आपकी पसंद का एक गाना पूछना चाहूंगी जो हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे।
1: दंगल टाइटल सॉन्ग है वो।
0: ठीक है, तो लीजिए आपकी पसंद का ये गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं।

0: गाने के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मन की बात का विस्तार लिए ये कार्यक्रम आज आप तक लाया है एक वेबसाइट के बारे में रोचक जानकारी। हमारे विशेषज्ञ हैं इस कार्यक्रम में कृष्णा शेषाद्री जी जो कि www.bharatrajya.com वेबसाइट के संस्थापक हैं और अपने इस सपने को साकार कर चुके हैं वेबसाइट के माध्यम से। मैं ये उम्मीद करती हूँ कृष्णा जी जब आपसे इतनी रोचक बातचीत आज हमारी हुई है हमें bharatrajya.com के बारे में पता चला है और प्रधानमंत्री जी ने भी हमें प्रेरित किया है कि हम अपने प्रेरणा देने वाले ऐतिहासिक पात्रों के बारे में जानें आपकी वेबसाइट के माध्यम से। तो जो श्रोता आज हमें सुन रहे हैं ऐसे में बहुत सारे छात्र भी हो सकते हैं विद्यार्थी हैं या शोधकर्ता हो सकते हैं इतिहासकार हो सकते हैं उन्हें आपके इस प्रयास से जरूर मदद मिलेगी और हम बहुत सारी शुभकामनाएं आपको देते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे युवा साथी भी अपने बीते हुए कल को गर्व के साथ याद करें और उसमें आपकी वेबसाइट भी उनकी मदद करती रहे। बहुत सारी शुभकामनाएं आकाशवाणी परिवार की ओर से आपको और आपकी पूरी टीम को। हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा शेषाद्री जी।
1: थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।
0: तो चलते चलते अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं एक बहुत ही प्यारा सा गाना।

0: इस गाने के साथ ही पोस्ट बॉक्स नंबर 111 की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए। कार्यक्रम संयोजक प्रमोद कुमार वत्स, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता शाहनवाज खान के साथ मैं नीलम मुल्काने अब आपसे लेती हूं अनुमति। आप वेबसाइट देखिए, कुछ सीखिए और जो सीखा है हमें भी आप बता सकते हैं अपने ईमेल्स के माध्यम से, अपनी चिट्ठियों के माध्यम से। और हम विशेष आभार प्रकट करते हैं विविध भारती मुंबई की पूरी टीम का, उनकी मदद से ही हम ये कार्यक्रम तैयार कर पाए। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रीय संकल्प समारोह आज देश भर में 1067 स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार विकसित

0: भारत के लिए 100 सप्ताह की नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत युवा एकजुट हो रहे हैं। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जा रहा है। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से संबद्ध बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि इसका उद्देश्य पात्र परिवारों को ही सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर प्रदान करना है। एक रिपोर्ट।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं, उन्हें दोबारा यह कराने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक कनेक्शन को आधार से सत्यापित उपभोक्ता से जोड़ने से सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए होने वाले दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया है। मुंबई के कोस्टल रोड पर आज सवेरे एक बीएमडब्ल्यू कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। कार मरीन ड्राइव से हाजी अली की ओर जा रही थी। घायल व्यक्ति को नायर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को साइबर हमलों और अन्य बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ देश भारत को इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि चिप डिजाइन और विनिर्माण में सक्षम देश के रूप में उभरने के कारण भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा। उन्होंने कहा कि कई कंपनियां और देश अब भारत को अपने लिए खतरा मान सकते हैं। निर्वाचन आयोग आज नई दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित कर रहा है। इस दौरान मतदाता सूची में सुधार के लिए दावे और आपत्ति दर्ज की जा सकेंगी। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में कहा कि सुनवाई के दौरान गैर सूचीबद्ध दस्तावेज पर भी विचार किया जा सकता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव के पद जीत लिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने विश्वविद्यालय चुनाव में परिषद की सफलता पर बधाई दी है। श्री राजनाथ सिंह ने कहा ये जीत राष्ट्र प्रथम नीति में युवाओं के अटूट विश्वास का प्रतीक है। श्री शाह ने कहा कि ये जीत छात्र कल्याण के लिए परिषद की प्रतिबद्धता दर्शाता है। भारत ने जापान के आयची नागोया में एशियाई खेलों में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा का रजत पदक जीत लिया है। एला वेनिल वेलारिवन, सोनल मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने देश को पहला पदक दिलाया। चीन ने विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता, जापान को कांस्य पदक मिला। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने एशियाई खेलों में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर एला वेनिल वेलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्शा के विनोद को बधाई दी। डॉक्टर मांडविया ने सोशल मीडिया पोस्ट में भारतीय दल के लिए भविष्य में गौरवशाली क्षणों की कामना की है। जापान एशियाई खेलों में महिला T20 क्रिकेट के दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 196 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 195 रन बनाए। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। क्वार्टर फाइनल में भारत ने जापान को 8 विकेट से हराया था। चीन के साथ क्वार्टर फाइनल में वर्षा के कारण रद्द होने से बेहतर रैंकिंग के कारण बांग्लादेश सेमीफाइनल में पहुंचा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियाई खेलों में पूल बी के पहले मुकाबले में उज्बेकिस्तान को 19-0 से रौंद दिया है। दीपिका सहरावत ने 8, इश्का चौधरी ने 3 जबकि लाल थन तुलांगे और नेहा ने 2 गोल दागे। भारत का अगला मुकाबला कल इंडोनेशिया से होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने आज पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना कर संस्कृति उत्थान का मार्ग प्रशस्त किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. President Draupadi Murmu will address valedictory session of the International Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics in New Delhi this evening.

ऑलराइट दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है नमस्ते हेलो आदाब, और मैं हूं आपका रेडियो मैन। दोस्तों, संडे की अब दोपहर शुरू होने वाली है, 12:12 यहां पर हमारी स्टूडियोज की घड़ी बता रही है। तो सुरों की जो ठंडक है और जज्बात का जो जादू हमेशा दिल को सुकून देता है, आज क्योंकि महेश भट्ट का बर्थडे है, जन्मदिन है, एक ऐसे फिल्म मेकर हैं वो जिन्होंने सिनेमा को अपने जो असली जज्बात थे वो मुहैया करवाए, और ख़ास दिन है उनके लिए, तो उन्हीं की फिल्मों से हम चुनिंदा नगमे आप तक लेकर आए हैं। तो शुरुआत करते हैं इस गाने से। मेरा नाम है रेडियो मैन, शो का नाम है नमस्ते हेलो आदाब, और हम पहुंच रहे हैं रेनबो FM 101.9 के माध्यम से। तो आइए, नाम फिल्म से चिट्ठी आई है, पंकज उधास, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आनंद बख्शी, 1986 की, डायरेक्ट करदा महेश भट्ट की फिल्म नाम।

ऑलराइट दोस्तों, जितनी खूबसूरती के साथ गुलाम अली ने इस गाने को गाया है और उतनी ही खूबसूरत फिल्म भी थी, लेकिन गाना बहुत ही दिलचस्प। अनु मलिक के कंपोजिशन में आनंद बख्शी के लिखे बोल और गुलाम अली की बेहद खूबसूरत आवाज़। फिल्म आवारगी 1990 में, जिसे महेश भट्ट ने डायरेक्ट किया था, अनिल कपूर, मीनाक्षी शेषाद्री और गोविंदा तीनों की त्रिकोणी लव स्टोरी थी। ये दरअसल गजल है, जहाँ पर देर इज प्लेंटी ऑफ पोएट्री एंड म्यूजिक। गुलाम अली की आवाज़ में एक किस्म की खुशबू है, एक लॉन्गिंग है, और आनंद बख्शी के अल्फाज जैसे कोई आपके आंखों के सामने एक नक्शा प्रेजेंट कर रहा हो। अनु मलिक रीस्ट्रेन कॉम्पोजिशन लेट्स दी गजल ब्रीथ एंड गिविंग इट टाइमलेस एलिगेंस। इट्स नॉट जस्ट अ सॉन्ग, इट्स एन एटमोसफियर। एक माहौल है, एक बहुत ही खूबसूरत सा कॉन्वर्जेशन है बिटवीन हार्ट एंड द नाइट स्काई। एंड वाई डू वी लिसन टू सच सॉन्ग? बिकॉज सिनेमा पॉसेस टू लेट पोएट्री टेक सेंटर स्टेज। चमकते चांद को देखकर इज दैट पॉज अ मोमेंट ऑफ स्टिलनेस, ब्यूटी एंड रिफ्लेक्शन। महेश भट्ट का जो डिसीजन था कि गुलाम अली को मेन स्ट्रीम सिनेमा में लेकर आया जाए और हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी मौसीकी, क्योंकि मिलती जुलती है, वहाँ पर एक ब्रिज का काम कर सकते हैं। ये गज़ल जो आवारगी में है, वो एक यूनिक आइडेंटिटी है, एक कल्ट क्लासिक कह सकते हैं, एक बहुत ही अनकन्वेंशनल स्टोरी लाइन को दर्शाती है। द सॉन्ग रिमेन्स वन ऑफ मनु मलिक्स मोस्ट सेंसिटिव कॉम्पोजिशन, ऑफन साइटेड एज ए प्रूफ ऑफ हिज वर्सिटैलिटी। आवारगी बहुत ही दिलचस्प नगमा है और एक महेश भट्ट के कैनवस ऑफ इमोशंस पर उन्होंने जिस तरीके से पेंट किया, ऑनेस्टी, वल्नरेबिलिटी, चमकते चांद एक ऐसी गजल को दर्शाता है। सो ऑन हिज बर्थडे वी सल्यूट महेश भट्ट फॉर हिज करेज, फॉर हिज सिनेमा एंड ऑल्सो फॉर एक्सलेंट स्टोरी टेलिंग। तो इसी मौजू पर हम आगे बढ़ते हैं और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।

तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी बंदगी है, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है। कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज में, नदीम श्रवण के कंपोजिशन में आशिकी फिल्म आई। समीर के बोल थे 1990 की बेपनाह मोहब्बत की अजीम दास्तान लेकर आए थे महेश भट्ट। ये सॉन्ग दरअसल एक सॉन्ग नहीं बल्कि डिस्टिल्ड इनटू मेलोडी। कुमार सानू वेलवेटी वॉइस, अनुराधा पौडवाल टेंडरनेस एंड आइसिंग ऑन द टॉप था। इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक अ विस्पर्ड लव, द प्रॉमिस, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। एंड दीज आर द वर्ड्स दैट वर डिक्लेरेशन ऑफ द एटर्नल लव। नदीम श्रवण ने मौसीकी ऐसी बर्पा की कि सॉफ्ट ऑर्केस्ट्रा और एक टाइमलेस चार्म बना दिया। द सॉन्ग स्टिल रेजोनेट्स विद ऑल ऑफ अस, है ना कमाल की बात। आशिकी वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन हिंदी फिल्म म्यूजिक, क्योंकि ये लॉन्च पैड भी था नदीम श्रवण के लिए, जो कि 90s के किंग्स माने जाते थे। द साउंड ट्रैक बिकम द हाइएस्ट सेलिंग एल्बम ऑफ द टाइम, मेकिंग कुमार सानू एंड अनुराधा पौडवाल हाउस होल्ड नेम्स। एंड द फिल्म म्यूजिक वॉज सो पॉपुलर दैट इट शेडोज द मूवी। लोगों को फिल्म की कहानी याद नहीं है, लेकिन ये गाने हमेशा याद रहते हैं, और ये गाना तो बहुत ही दिलचस्प था। तो दोस्तों, आशिकी वॉज मोर देन अ फिल्म, इट वॉज अ म्यूजिकल रेवोल्यूशन। तू मेरी जिंदगी है वॉज इट सोल, एंड इट्स द सोल ऑफ द सॉन्ग दैट स्टिल डिफाइंस द रोमांस डिकेड्स लेटर। महेश भट्ट का आज जन्मदिन है और उनके ताल्लुक से हम यहाँ पर बातें कर रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक और खूबसूरत सा नगमा उन्हीं की फिल्म से।

ऑल राइट साथियों, बहुत ही खूबसूरत सा गाना नदीम श्रवण की कंपोजिशन में, जिंदगी की तलाश में हम, और कुमार सानू की बहुत ही वेलवेटी वॉइस, समीर के लिरिक्स हैं। 1991 में फिल्म आई थी, 1990 के बाद आशिकी की सुपरहिट सक्सेस के बाद महेश भट्ट ने साथी फिल्म रिलीज की थी, आदित्य पंचोली, मोहसिन खान, वर्षा उजगांवकर की ये फिल्म थी। And the song was a beautiful ballad. It is almost about the essence of life and for love, meaning and belongingness. The whole song is drenched in melancholy, making the listener feel the ache of wandering hearts. Nadeem Shravan ki composition, layered after layered, soft orchestra hai, giving a song meditative quality. Or the song is not just a song, but it's a reflection. It's search for life. What do we truly seek? Are we seeking love, peace, or redemption? Saathi was Mahesh Bhatt's darker films. It was trying to explore crime, love, redemption, aise themes the. Aur ye soundtrack kafi ahmiyat ka hamil rakhta hai. To dosto, hum Mahesh Bhatt ki aajiyon mein paidaish par aage badhte hain aur sunte hain kuch aur nakme.

0: जागते रहो,
1: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो,
0: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है,
1: अफवाहों से,
0: धोखाधड़ी से
1: जागरूक होना है, अपने अधिकारों के प्रति,
0: अपने जिम्मेदारियों के प्रति।
1: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से, और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से।
0: सजग भारत,
1: जागरूक भारत,
0: सशक्त भारत।
1: सुनिए सजग भारत
0: सोमवार सुबह 11:30 पर सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर। सजग भारत,
1: जागरूक बनिए,
0: सजग रहिए।

बहुत ही दिलकश सा गाना आपने सुना महेश भट्ट के। आज बर्थडे स्पेशल में हम उनके चुनिंदा नगमों को पेश कर रहे हैं, और मोहम्मद अजीज की, बल्कि तलत अजीज की आवाज में आपने गाना सुना। राजेश रोशन की मौसिकी, सूरज सानिम के बोल, और फिल्म है डैडी। अनुपम खेर और पूजा भट्ट की ये फिल्म डैडी, द सॉन्ग इज हॉन्टिंग एंड द रिफ्लेक्शन ऑफ द पावरफुल इमोटिव, यू नो, गजल सिंगिंग में माहिर तलत अजीज ऑल्सो एबल टू मेक सम ग्रेट सेंस थ्रू दिस सॉन्ग्स। आईना मुझे मेरी मेरे मुझसे मेरी सूरत न मांग इज अ कन्फ्रंटेशन सॉन्ग, बिकॉज इट्स अ रिमाइंडर दैट द हार्डेस्ट बैटल आर फॉट विद इन आवर सेल्फ्स। The song is about facing reality, about redemption, and also about the courage. And कमाल की बात, डैडी वॉज महेश भट्ट सेमी ऑटोबायोग्राफिकल फिल्म थी, जिसे उनकी अपनी खुद की जाती जिंदगी के जो स्ट्रगल्स थे, वो एल्कोहलिज्म, रिकवरी, सब कुछ था। द फिल्म मार्क द डेब्यू ऑफ द डॉटर पूजा भट्ट, विच वॉज मेकिंग इट मोर डीपली एंड पर्सनल। और तलत अजीज की आवाज़ काफ़ी बेहतरीन थी। तो आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक और खूबसूरत सा नगमा।

महेश भट्ट की फिल्मों से हम यहाँ पर गाने सुन रहे हैं, तो आइए आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं कितना प्यारा है। दिस इज अनदर फिल्म क्रिमिनल।

ऑलराइट, सो यू आर लिसनिंग टू सम अमेजिंग सॉन्ग्स फ्रॉम महेश भट्ट फिल्म्स। और क्रिमिनल एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी। आज हम एक ऐसे कलाकार, एक ऐसे डायरेक्टर, एक ऐसे स्क्रीन राइटर को याद कर रहे हैं जिन्होंने हिंदुस्तानी सिनेमा को, इंडियन सिनेमा को कुछ नई कहानियाँ दी और कुछ ऐसे बोल्ड थीम्स दिए जो आज तक नहीं दोहराए गए हैं। बी इट इनफिडेलिटी इन मैरिजेज एंड ऑल्सो लाइक द हिजड़ा कल्चर ऑफ सड़क and some of the love and longing relationship, all that he explored. So we wish him all the very best and also healthy and prosperous life. And on that note, I'm going to take leave. My friend Anusha is here. She will going to take care from 2 o'clock. But until then, we will be able to play some of the amazing songs of Mahesh Bhatt. तो दिल है कि मानता नहीं एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी। तो उसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ इजाजत और अलविदा। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। हास्ता ला विस्ता बेबी, एडियोस अमिगोस, एंड हैव अ हैप्पी वीक अहेड फ्रॉम टुमारो।

0: जागते रहो जागते रहो,
1: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो,
0: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है,
1: अफवाहों से
0: धोखाधड़ी से
1: जागरूक होना है, अपने अधिकारों के प्रति
0: अपने जिम्मेदारियों के प्रति।
1: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से, और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से।
0: सजग भारत,
1: जागरूक भारत,
0: सशक्त भारत।
1: सुनिए सजग भारत
0: सोमवार सुबह 11:30 पर सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर। सजग भारत,
1: जागरूक बनिए
0: सजग रहिए।

0: स्टार्टिंग विद शूटिंग।
1: शूटिंग की बात करते हैं। सबसे पहले शूटिंग में आए हैं दो मेडल जो कि हमें मिले हैं 10 मीटर एयर राइफल विमेन्स टीम में। ये जीते हैं हमारी तिकड़ी ने एला वनिल वला रिवन, सोनम मस्कर विदर्शा विनोद ने। वहीं इसी के इंडिविजुअल प्रतिस्पर्धा में एला वनिल ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया।
0: Right, and in the hockey stadium also, India were the dominant force. The men's team started off their campaign with a 13-1 win over Indonesia. Meanwhile, the women were a step ahead. They defeated Uzbekistan by 19-0.
1: क्रिकेट की बात ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। तो क्रिकेट में भारतीय महिला टीम ने अपना कदम रख लिया है। फाइनल में भारतीय महिला टीम ने बांग्लादेश को 114 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश किया है और अब वो गोल्ड मेडल के लिए श्रीलंका से भिड़ेगी।
0: यस, शेफाली वर्मा स्कोर्ड अ सेंचुरी टुडे, 100 नॉट आउट ऑफ 49 बॉल्स। शी वाज द स्टार, कंप्लीटेड 100 सिक्सेस इन T20I क्रिकेट। सो डिड स्मृति मानधना, हु हैज नाउ आल्सो बिकम द ऑल टाइम लीडिंग रन गेटर इन वुमेन्स T20I। सो टू मेडल्स कमिंग इन शूटिंग, वन इन द इंडिविजुअल इवेंट इन द वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल, वन इन द टीम इवेंट, एंड by the virtue of qualifying for the finals, the women's cricket team is also assured of a silver. Another athlete of ours is assured of at least a bronze, and that is Suchika Tarial in MMA in the 60 kilogram category. She defeated her Mongolian opponent in the quarterfinal and got herself into the semi-final. Meanwhile, in the badminton court, led by PV Sindhu, the Indian women's team in the team event also went off to a winning start. PV Sindhu won her match in straight sets, and so did Tanvi Sharma and Unnati Hooda. 3-0 against Kazakhstan, India into the quarterfinals in this event as well.
1: चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं मेडल टैली पर, जहां भारतीय टीम अभी 10वें पायदान पर ही काबिज है 2 सिल्वर मेडल के साथ, और पहले पायदान पर है चाइना की टीम।
0: Right, so those 2 silver medals for India. However, remember, 2 more are confirmed. They are not yet reflecting on the medals table. However, we hope that they get converted into gold. Still early days, still a lot of medals to be won, and we will keep you updated. You were listening to the live updates of the 20th Asian Games live on Akashvani.
2: अभी आप एशियन गेम्स 2026 की अपडेट सुन रहे थे।

0: जागते रहो जागते रहो,
1: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो,
0: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है,
1: अफवाहों से
0: धोखाधड़ी से
1: जागरूक होना है, अपने अधिकारों के प्रति
0: अपने जिम्मेदारियों के प्रति।
1: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से, और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से।
0: सजग भारत,
1: जागरूक भारत,
0: सशक्त भारत।
1: सुनिए सजग भारत
0: सोमवार सुबह 11:30 पर सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर। सजग भारत,
1: जागरूक बनिए
0: सजग रहिए।
2: FM रेनबो 101.9।

0: ఓ బేబీ చిత్ర నుంచి సూపర్ హిట్ సాంగ్ విన్నారు. సో ఫ్రెండ్స్, మరి మనం ఏమో స్నాక్ టైంలో మూవీ అప్డేట్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాం కదా, ఆ విశేషాలన్నీ కూడా తెలుసుకుందాం. కానీ మరికొద్ది క్షణాల్లో 4:30 కావస్తుంది మన రెయిన్బో క్లాక్ లో. మరి 20th ఎడిషన్ ఆఫ్ ఏషియన్ గేమ్స్ 2026 మరి జపాన్ లో జరుగుతున్నాయి కదా, వాటి అప్డేట్స్ వింటారు, వింటూనే ఉండండి 101.9 FM రెయిన్బో. రెయిన్బోతో జీవితం రంగుల మాయం.
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया.
2: जापान के आईची नागोया में चल रहे 20वें एशियाई खेलों की ताजा अपडेट के साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं कविता.
3: एंड आई एम दर्पण टीकिया.
2: 45 देशों के करीब 17,000 एथलीट 43 खेलों में 469 मेडल्स के लिए मशक्कत कर रहे हैं. जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि भारत के अब तक 2 सिल्वर मेडल आ चुके हैं और इसके अलावा अभी 2 पदक सुनिश्चित हो गए हैं. पहला है एमएमए और दूसरा है महिला क्रिकेट में.
3: राइट, बट करंटली वी विल टेक यू टू व्हाट इज द स्काई हॉल इन नागोया वेयर द टेबल टेनिस कॉम्पिटिशन इज हैपनिंग. एंड आफ्टर गेटिंग ऑफ टू अ विनिंग स्टार्ट एंड विनिंग देयर रिस्पेक्टिव फर्स्ट फिक्स्चर्स, both the Indian men's team and the Indian women's team have been given a run for their money in their second fixture. In their second fixture, after winning against Indonesia earlier in the morning, the women's team ran into Singapore, a team that really pushed them to the edge in a seesaw battle that went down to the wire. Eventually, India came out on top. However, the men's team is currently huffing and puffing against Iran. Against Iran, we started off with a battle between Manush Shah and Naushad Alamian, who defeated the Indian paddler. After that, a 16-year-old Faraji of Iran defeated India's Manav Thakkar, and currently Harmeet Desai in the third match is playing against Naushad Alamian and has come to the brink of losing the first set. The score is currently 11-10, and just as I say that, he loses another point and eventually loses the set as well. So India have already lost 2 matches and they have lost this set as well, which means in this particular fixture they are struggling and they need to win almost everything from here on in order to win in this fixture.
2: बात करते हैं वुशु की, जहां पर अभी से कुछ ही देर पहले मुकाबला हुआ महिलाओं का एशियन गेम्स 2026 में. भारत की डेब्यूटेंट वुशु खिलाड़ी अपर्णा को महिला सांडा 52 किलोग्राम के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में ईरान की सोगन सिकाई ए चेतान के खिलाफ 0-2 से हार का सामना करना पड़ा. इस हार के साथ अपर्णा का एशियन गेम्स अभियान समाप्त हो गया. हालांकि एशियाई स्तर के इतने बड़े मंच पर उनका पदार्पण अपने आप में उनके करियर का एक महत्वपूर्ण अनुभव है. आज नतीजा भले ही अपर्णा के पक्ष में नहीं रहा, लेकिन ये सफर अभी शुरू हुआ है और आने वाले मुकाबलों में यही अनुभव उनके काम आएगा. वहीं बात करते हैं अगले मुकाबले की जो अभी होना है. बात करते हैं विक्रांत बालियान की, जिनका मुकाबला अब से कुछ ही देर बाद होने वाला है. और अगर हम इनके बारे में थोड़ा सा आपको बताएं तो ये सेना में कार्यरत हैं, अपनी ड्यूटी के साथ साथ देश के लिए रिंग में भी कड़ा मुकाबला लड़ते हैं. सीनियर्स को देखकर इन्होंने अपना सफर शुरू किया था और अब उसी की प्रेरणा लेकर इन्होंने इस खेल को चुना और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. वहीं अगर सोहेल की बात करें तो सोहेल भी इनसे कम नहीं है. इनके ओपोनेंट जूनियर वर्ल्ड चैंपियन है, तो ये मुकाबला कड़ा हो सकता है.
3: Right, Sohail comes from Iran, and Iran is giving India a run for their money on the table tennis table. What would be the outcome in Wushu?

0: We'll find out together. However, in case you missed out on the earlier updates, let's give you a quick highlight of what has transpired for India today. First of all, starting with shooting, where India won two silver medals. The first one came in the team event of the 10-meter women's air rifle. The trio of Vidarsha Vinod, Sonam Maskar and Ella Vanil won the silver medal, and then Ella Vanil went on to win the silver medal in the individual event as well.
1: इसके बाद बात करते हैं MMA की, जिसमें सुचिका तारियाल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है और अपने लिए कम से कम एक मेडल सुनिश्चित कर चुकी हैं।
0: Similarly, the cricket team, the women's cricket team has also secured a medal riding on Shefali Verma's swashbuckling 100. India defeated Bangladesh in the semi-final by 114 runs, which means now they will compete with Sri Lanka in the finale for the gold medal.
1: Hockey में भी भारतीय महिला और पुरुष टीमों ने अपने अपने मुकाबले जीते. इंडिया में महिलाओं में जो मुकाबला हुआ वो भारतीय टीम ने 19-0 से जीत लिया उज्बेकिस्तान के साथ, वहीं पुरुषों ने 13-1 से इंडोनेशिया से अपना मुकाबला जीता.
0: Meanwhile, in badminton, PV Sindhu, Tanvi Sharma, Unnati Hooda gave good performances in the women's team event, and India won their opening fixture 3-0 and entered the quarterfinals.
1: चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं मेडल टैली पर. भारतीय पोजीशन इस वक्त काबिज है. हम 10वें पायदान पर 2 सिल्वर मेडल के साथ. पहले नंबर पे है चाइना, जिन्होंने जीत लिए हैं 11 गोल्ड, 6 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल. इसी के साथ जापान है दूसरे पायदान पर, जिन्होंने जीते हैं 6 गोल्ड मेडल, 6 सिल्वर मेडल और 7 ब्रॉन्ज मेडल.
0: स्टिल अर्ली डेज, वी होप दैट द पिक्चर वुड चेंज एंड इट वुड बी रोजियर फॉर इंडिया इन द कमिंग डेज. हाउएवर, वी विल कीप यू अपडेटेड. वी विल मीट यू अगेन एट 6:30 PM फॉर आवर नेक्स्ट अपडेट. फॉर नाउ, कीप लिसनिंग टू आकाशवाणी.
2: एशियन गेम्स 2026, आईजी नगोया.

0: able to get over their Vietnamese opponents and they had to miss out on the bronze medal.
1: पूरे दिन के इस लेखे जोखे के बाद नजर डालते हैं एक बार मेडल टैली पर, जहां भारत 10वें पायदान पर 2 सिल्वर मेडल लेकर काबिज है. इसी के साथ साथ यहां पर पहले पायदान पर मौजूद है चाइना, जिन्होंने 11 गोल्ड 6 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए हैं. दूसरा पायदान है जापान का.
0: राइट, एंड रिमेम्बर वी विल बी ज्वाइनिंग वंस अगेन इन एन आवर्स टाइम एट 7:30. विल बी टेलिंग यू व्हाट्स इन स्टोर टुमारो. स्टे ट्यून्ड टू आकाशवाणी.
2: एशियन गेम्स
3: 101.9.
4: Hey, did you know the Kakatiya Kalatoranam is more than just a monument?
5: Really? Tell me.
4: That's what Telanganam is all about. Stories of our land, our art, our cinema, and our people.
5: Wow. So it's like a cultural adda on radio.
4: Exactly. Every night at 8 p.m. on FM Rainbow 101.9.
6: Telanganam. Telangana's heartbeat on air.

0: राष्ट्रपति ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस उपाय जरूरी हैं। सूचना और प्रसारण
1: विनंडी गजवाहन सेवपै प्रत्यक्ष व्याख्यानम्।

0: आप सुन सकते हैं आज 10 बजे एशियन गेम 2026 के हाइलाइट्स, जो जापान में चल रहा है उसके हाइलाइट्स भी आप सुनेंगे 10 बजे। 20 मिनट का प्रोग्राम रहेगा, फिर 10:20 से हमारा प्रोग्राम जारी रहेगा। तो आइए हमारे प्रोग्राम का आगाज हम करते हैं हरफे ताबिंदा से। पेशकश है मोहम्मद उसामा की।
1: जिसकी जुबान अच्छी होती है उसे हर जगह इज्जत मिलती है, और जिसकी जुबान खराब होती है वो हर जगह जलील खार और रुस्वा होता है। जुबान इंसान को मिलने वाली बड़ी नेमतों में से एक है। किसी शायर ने जुबान के बारे में क्या खूब कहा है, कुदरत को नापसंद है सख्ती जुबान में, रखी नहीं है इसलिए हड्डी जुबान में। इसलिए हमें सख्त लहजे और खराब जुबान के इस्तेमाल से बचना चाहिए, क्योंकि जुबान दिल की बात कहती है, दिलों को जोड़ती है, रिश्ते बनाती है, और कभी एक लफ्ज़ या लहजे से रिश्ते टूट भी जाते हैं। बकौले शायर, वो एक बात बहुत तल्ख कही थी उसने, वो एक बात बहुत तल्ख कही थी उसने, बात तो याद नहीं, याद है लहजा उसका। जुबान के दुरुस्त इस्तेमाल से मुराद यह है कि हम अल्फाज का इंतखाब एहतियात से करें, बातचीत में सदाकत, शाइस्तगी और नरमी का ख्याल रखें, और सबसे अहम यह है कि लहजा नर्म हो, क्योंकि सख्त लहजा और तल्ख कलामी अक्सर गलतफहमियां पैदा करती है, जबकि नर्म लहजा लोगों का दिल जीत लेता है। जब हम खुद नर्म लहजे में बात करेंगे तो हमारा दिमाग पुरसुकून होगा। रिसर्च के मुताबिक नर्म आवाज़ और लहजा खुद को और दूसरों को सुकून देता है। नसीहत, मशवरा, तनकीद या इनकार भी अगर नर्म लहजे में किया जाए तो उसका असर ज़्यादा होता है, जबकि तल्ख लहजा सुनते ही सामने वाला बददिल हो जाता है। सख्त लहजा ब्लड प्रेशर और डिप्रेशन का भी सबब बनता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि नर्म लहजे में बात करने की आदत हम कैसे बनाएं? तो बात शुरू करने से पहले गहरी सांस लें और खुद को पुरसुकून करें। बराह मेहरबानी अगर आप इजाज़त दें, या मैं समझता हूँ जैसे जुमलों का इस्तेमाल करें। गुस्से की हालत में फौरन जवाब न दें, कुछ लम्हे इंतज़ार करें, दूसरों की बात सुनने के बाद ही जवाब दें। दौरान गुफ्तगू किसी को न टोकें, मुस्कुराहट के साथ बात करें, यह खुद ब खुद लहजे को नर्म बना देती है। जुबान एक तलवार है, अगर नर्म लहजा इस्तेमाल हो तो शफा देती है, और अगर सख्त हो तो जख्म देती है। नर्म गुफ्तारी और अच्छा लहजा न सिर्फ समाज में इज्जत दिलाता है, बल्कि दिन ब दिन आपकी मकबूलियत और शोहरत में भी इजाफा करता है। तो आइए आज से अहद करें कि हम अपनी जुबान और लहजे का बेहतरीन इस्तेमाल करेंगे और अपनी जुबान से किसी का दिल नहीं दुखाएंगे।
0: मोहम्मद उसामा से अभी आप हरफ ताबिंदा सुन रहे थे। सामाइन, आज यानी 20 सितंबर को वर्ल्ड क्लीनअप डे मनाया जाता है। जैसा कि यानी नाम से हम समझ सकते हैं कि वर्ल्ड क्लीनअप डे यानी क्लीन और ग्रीन करने का जो दिन है आज, यह ऐसा दिन है जो हमें अपने माहौल, अपनी जमीन और अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाता है। इस दिन को वर्ल्ड क्लीनअप डे यानी आलमी योम सफाई कहा जाता है। ये दिन हमें ये पैगाम देता है कि सफाई सिर्फ हमारे घरों तक महदूद नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारी गलियां, सड़कें, पार्क, तालीमी इदारे, बाजार, नदी नाले और पूरी जमीन हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। हम अक्सर कहते हैं कि हमारा शहर साफ सुथरा होना चाहिए, सड़कों पर कचरा नहीं होना चाहिए और माहौल आलूदा नहीं होना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि इस तब्दीली की इब्तिदा कौन करेगा?

अपने हैदराबाद का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा। हैदराबाद तो बहुत तेजी से तरक्की कर रहा, यहाँ पे फ्यूचर सिटी भी बनने वाला है। यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंगा बन रही, कंपनियां खोल रही, लोगों की सहूलत के वास्ते रोडा, फ्लाईओवरा और ब्रिजा बनाते जा रहे। तरक्की तो बहुत हो रही मगर एक्सीडेंटा भी हो रहे। ट्रैफिक पुलिस और लोगों की भलाई के वास्ते काम करने वाले तंजीमा अपनी पब्लिक को ट्रैफिक रूल्स बता बता के थक जा रहे। हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट पहनो, एक्सीडेंटों से बचो बोल रहे, मगर अपने हैदराबादी हैं कि सुन रहे नहीं। चालाना मारे तो भी पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे को बस इतना ही बोलना है, रोडों पे गाड़ियां नको भगाओ, सीट बेल्ट और हेलमेट पहन के गाड़ियां चलाओ। अपन जब घर से निकलते तो अपने घर वाले अपने घर को आने का इंतजार करते रहते। बगैर हेलमेट के और बगैर सीट बेल्ट के अगर गाड़ियां चलाएंगे तो घर को तो बाद में, पहले उस्मानिया नहीं तो गांधी को पहुंच जाते। रोड सेफ्टी अपने साथ साथ दूसरे लोगों के वास्ते भी बहुत जरूरी है, तो रोड सेफ्टी के रूल्स को फॉलो करो, घर को सही सलामत पहुंचो।

हम इसको यानी इस पर अमल करें, सफाई किस तरीके से रखनी चाहिए उस पर हम अमल करें, ना कि सिर्फ इसके बारे में बातें करें। इस मौके पर हम सबको अहद करना चाहिए, हम सबको कुछ ना कुछ काम करना चाहिए कि क्लीन करने का, यानी घर से सफाई शुरू होती है, घर या बाहर हर जगह पे हमें कुछ ना कुछ काम करने चाहिए। हम कचरा सड़कों पर और आवामी मुकामात पर नहीं फेंकेंगे, ये हमें सोचना चाहिए। हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें, ये काम भी बहुत ज़रूरी है। और हम सिर्फ अपने आप को ही नहीं बल्कि दूसरों को भी सफाई की अहमियत समझाएं, और उन्हें भी यानी उन्हें भी हम कन्विंस करें कि वो भी इस तरीके की सफाई का कुछ ना कुछ काम करें। और हम अपनी ज़मीन को साफ, सरसब्ज और खूबसूरत बनाने में अपना किरदार तभी अदा कर सकते हैं, तभी सच्चे मानों में हम वर्ल्ड क्लीन अप डे मना रहे होंगे।

0: आप सुन रहे हैं 101.9 FM मेगाहर्ट्ज पर उर्दू प्रोग्राम नए रंग आप सुन रहे हैं। इस वक्त रात के 10 बजने ही वाले हैं और कुछ ही देर में आप सुनेंगे एशियन गेम्स 2026 जो जापान में चल रहे हैं उसके डेली हाइलाइट्स जो दिल्ली से नशे किए जाएंगे। सामाइन याद रखिए कि ये प्रोग्राम ये हाइलाइट्स आप सुनेंगे 10:20 तक और 10:20 से आपका अपना उर्दू प्रोग्राम नए रंग जारी रहेगा, तो कहीं मत जाइएगा। ये हाइलाइट्स सुनने के बाद भी तैयार रहिएगा हमारा प्रोग्राम गीत सुरीले गाते जा सुनने के लिए।
1: आपकी वाणी आकाशवाणी।
2: And here is the update for today for the 20th of September, the Asian Games 2026.
3: Asian Games 2026, Aichi Nagoya.
4: नमस्कार। खेल की दुनिया से इस वक्त की सबसे अहम रिपोर्ट लेकर हम हाजिर हैं। एक तरफ जापान की धरती और आइची नागोया का खेल मैदान है तो दूसरी तरफ हर खेल में पदक की उम्मीद में धक धक करती करोड़ों भारतीयों के दिलों की धड़कन है। आइची नागोया एशियन गेम्स 2026 का औपचारिक उद्घाटन और दो दिन पहले शुरुआती मुकाबलों के रोमांच के बाद आज से महामुकाबले और पदकों की दौड़ में एक दूसरे को पछाड़ कर आगे निकलने की होड़ शुरू हो चुकी है।
5: एशिया के 45 देशों के सर्वश्रेष्ठ एथलीट यहां जुटे हैं। 43 खेलों के कुल 469 मेडल इवेंट में हर खिलाड़ी अपना सब कुछ झोंक देने के लिए तैयार है।
4: तो अब आज की सुर्खियां। भारत ने शूटिंग में 2 सिल्वर मेडल पर साधा निशाना। एलेवेनिल वलारिवन विमेन्स 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में 0.6 अंक से गोल्ड से चूकी। एलेवेनिल सोनम मस्कर और विदार्सा विनोद को टीम इवेंट में भी सिल्वर। मिक्स्ड मार्शल आर्ट में सुचिका दरियाल ने इतिहास रचा, सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक किया पक्का। भारतीय महिला क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंची, खिताब के लिए श्रीलंका से होगा मुकाबला। हॉकी में भारतीय महिला और पुरुष टीमों का धमाकेदार आगाज, अपने अपने वर्गों में हासिल की बड़ी जीत। और बैडमिंटन में महिला टीम ने अपना पहला मैच आसानी से जीता, अब जापान से अगला मुकाबला।
5: वक्त बदल रहा है और खेल

0: इस साल एशियन गेम्स में 6 नए खेलों को पहली बार मेडल स्पोर्ट्स के रूप में शामिल किया गया है। ये खेल हैं मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, पैडल, सर्फिंग, टेक बॉल, वर्चुअल टाइक्वांडो और बीएमएक्स फ्रीस्टाइल। भले ही खेल नए हो लेकिन भारतीयों का जज्बा पुराना और आक्रामक है। जापान की धरती पर इतिहास रचते हुए भारत के लिए पहला पदक सुचिका तरियाल ने पक्का कर लिया है। सुचिका ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की ट्रेडिशनल कैटेगरी के सेमीफाइनल में प्रवेश कर दुनिया को बता दिया है कि नए दौर के नए खेलों में भी भारत किसी से पीछे नहीं है। एमएमए में सुचिका की सफलता के बारे में बता रही हैं कविता शर्मा।
1: आईटी नागोया एशियन गेम्स में मिक्स मार्शल आर्ट्स यानी एमएमए में भारत के लिए आज का दिन मिला जुला रहा। महिलाओं के ट्रेडिशनल 60 किलोग्राम वर्ग में भारत के 36 वर्षीय सुचिका तारियाल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मंगोलिया की अल्तानची मेग बैगलमा को क्वार्टर फाइनल में 2-0 से हराया और सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। इस जीत के साथ सुचिका ने एशियन गेम्स के इतिहास में एमएमए में भारत का पहला पदक सुनिश्चित कर दिया। सेमीफाइनल में पहुंचने वाले दोनों हारने वाले खिलाड़ियों को कांस्य पदक मिलता है, इसीलिए सुचिका का कम से कम कांस्य पदक तय हो चुका है। वहीं पुरुषों के 77 किलोग्राम वर्ग में भारत के वरुण सान्याल का अभियान मुकाबला शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। वजन वर्ग में आने के लिए वजन घटाने की प्रक्रिया के दौरान उन्हें चक्कर आए और वो बेहोश हो गए। मेडिकल जांच के बाद उन्हें प्रतियोगिता के लिए अनफिट घोषित कर दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार उन्हें चिकित्सा सहायता दी गई और बाद में उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। इस तरह सुचिका ने इतिहास रचा तो दूसरी तरफ वरुण के लिए दिन बेहद दुर्भाग्यपूर्ण रहा। भारत की नज़र अब सुचिका के सेमीफाइनल मुकाबले पर है।
2: सुचिका ने इन खेलों में भारत का पहला मेडल भले पक्का किया लेकिन पहला मेडल शूटिंग में मिला। कमाल के मेंटल स्ट्रेंथ और सटीक निशाने साधने के इस खेल में पहले दिन भारत की सफलता की जानकारी दे रहे हैं दर्पण तिकिया।
3: एशियन गेम्स 2026 में सफलता का पहला समाचार शूटिंग रेंज से आया है। 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धाओं में महिला निशानेबाजों ने टीम इंडिया को दिलाए हैं 2 सिल्वर मेडल। पहला टीम इवेंट में एलावनिल वलारिवन, सोनम मास्कर और विदर्शा विनोद की तिगड़ी के नाम रहा। भारतीय टीम ने पिछले एशियन गेम्स रिकॉर्ड को पछाड़ते हुए कुल 1898 अंक हासिल किए। हालांकि चीन से आने वाली तिगड़ी ने 1904.2 अंक हासिल कर एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया और गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। सोनम मास्कर ने क्वालिफाइंग एशियन गेम्स रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए 634.1 अंक हासिल किए। वहीं दिग्गज खिलाड़ी एलावलिन ने 633.5 तो विदर्शा ने 630.4 अंक हासिल किए। इस प्रदर्शन के चलते एलावलिन और सोनम 10 मीटर एयर राइफल के वुमेन्स इंडिविजुअल इवेंट के फाइनल के लिए भी क्वालिफाई की। एकल प्रतियोगिता के फाइनल में जहां सोनम के हाथ छठा पायदान लगा तो वहीं एलावनील लगातार गोल्ड मेडल पोजीशन पर बरकरार रही। हालांकि उनके अंतिम कुछ शॉट निशाने से अंश मात्र ही भटके और वो मेजबान जापान की हिनाटा ताइची से 0.6 अंकों से पिछड़ गई। कुल 253 अंक हासिल कर ताइची ने नया गेम्स रिकॉर्ड स्थापित किया और स्वर्ण पदक अपने नाम किया। तो वहीं भारत की एलावनिल वलारिवन के हाथ सिल्वर मेडल लगा। जापान जाने से पहले उन्होंने यही बताया था दैट शी इज ट्राइंग टू स्टे इन द प्रेजेंट।
4: मुझे लगता है कि अगर मैं अपना बेस्ट दूंगी तो वो मेरे उस दिन के लिए काफी रहेगा एंड मैं बस उसी पे फोकस कर रही हूँ। एट द एंड ऑफ द डे हम यही चाहते हैं कि इंडिया का फ्लैग सबसे ऊपर रहे।
2: एशियन गेम्स के जरिए ओलंपिक क्वालिफिकेशन का लक्ष्य लेकर उतरी भारतीय महिला और पुरुष हॉकी टीम्स ने अपने अभियान की शुरुआत उम्मीदों के अनुरूप की। महिला टीम ने ग्रुप के अपने पहले मैच में उज्बेकिस्तान को तो पुरुष टीम ने इंडोनेशिया को टिकने का मौका ही नहीं दिया, बता रही हैं अमीषा।
0: भारतीय महिला हॉकी टीम ने जबरदस्त खेल दिखाते हुए पूल बी के ग्रुप स्टेज के मुकाबले में उज्बेकिस्तान को 19-0 के बेहद विशाल अंतर से मात दी, जिसमें भारतीय फॉरवर्ड दीपिका सहरावत ने इंडिविजुअल 8 गोल दागे जिसमें 6 गोल पेनल्टी कॉर्नर के जरिए आए। ये किसी भी महिला हॉकी फील्ड मैच में किसी भारतीय खिलाड़ी द्वारा किया गया विश्व रिकॉर्ड जैसा एक बेहतरीन व्यक्तिगत प्रदर्शन है। इसके अलावा इशिका चौधरी ने एक शानदार हैट्रिक लगाई। वहीं लालरम सियामी, बलजीत कौर, नेहा गोयल, लाल थंथलुंगी और साक्षी राणा ने भी गोल करने में अपना योगदान दिया। भारतीय टीम ने मैच की शुरुआत से ही दबदबा बना लिया था और पहले हाफ में ही 8-0 की मजबूत बढ़त बना ली थी, जो दूसरे हाफ में 11 गोल्स के साथ 19-0 हो गई। ये एशियन गेम्स के इतिहास में भारत की तीसरी सबसे

0: बड़ी जीत है। अब भारतीय महिला हॉकी टीम का अगला ग्रुप स्टेज मैच कल इंडोनेशिया के खिलाफ होगा। वहीं दूसरी तरफ मेंस हॉकी में भी भारत का अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला, जहां कप्तान हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली डिफेंडिंग चैंपियन भारतीय टीम ने अपने पूल ए के ग्रुप मैच में इंडोनेशिया को 13-1 से शिकस्त दी, जिसमें दिलप्रीत सिंह ने अपनी हैट्रिक पूरी करते हुए 4 शानदार गोल दागे। भारत ने शुरुआत में ही आक्रामक खेल दिखाते हुए हाफ टाइम तक 7-0 की बढ़त बना ली थी, जो सेकेंड हाफ के अंत तक 13-1 हो गई। इस मैच में 8 अलग अलग खिलाड़ियों ने गोल किए, जिसमें दिलप्रीत के अलावा अभिषेक, शिलानंद लाकड़ा, राजेंद्र सिंह, मनदीप सिंह और कप्तान हरमनप्रीत सिंह शामिल थे। इस जीत के बाद भारत का अगला ग्रुप स्टेज मैच 22 सितंबर को श्रीलंका के खिलाफ होगा।
1: टेबल टेनिस में भी भारत की दोनों ही वर्गों में धमाकेदार शुरुआत हुई। इस खेल में मजबूत शुरुआत महिला टीम ने की। भारतीय टीम ने ग्रुप एफ के अपने पहले मैच में इंडोनेशिया को 3-0 की करारी शिकस्त दी। पहले मैच में श्रीजा अकुला ने अपनी प्रतिद्वंदी एन महरानी को करारी शिकस्त दी। श्रीजा ने यह मैच 3-1 से जीता। दूसरे मैच में दिया चिताले ने अपनी प्रतिद्वंदी अलमायरा नेबुच डनेजर को पांव जमाने का भी मौका नहीं दिया। दिया ने अपनी विरोधी को एक तरफा मुकाबले में 3-0 से मात दी। इसके बाद बारी थी अनुभवी यशस्विनी घोरपड़े की। उन्होंने भी निराश नहीं किया और इंडोनेशियाई खिलाड़ी चित्रा रश्मि का 3-0 से क्लीन स्वीप किया। ग्रुप बी के दूसरे मैच में विश्व रैंकिंग में 9वें स्थान पर मौजूद भारतीय टीम ने 14वीं रैंकिंग वाली टीम सिंगापुर को बेहद रोमांचक मुकाबले में 3-2 से शिकस्त देकर दूसरी जीत दर्ज की। इस मुकाबले में यशस्विनी घोरपड़े ने पहला मैच 3-1 से जीता। दूसरे मैच में श्रीजा अकुला को लॉय मिंग ने 2-3 से हराया। टाई का तीसरा मैच सिंगापुर की तेंझाओ ने दिया चिताले को 3-1 से हराकर जीता। चौथे मुकाबले में श्रीजा अकुला ने भारत को वापसी कराई। उन्होंने जेंग जियान के खिलाफ ये मैच 3-1 से जीता। टाई 2-2 पर पहुंच गया। अब बारी थी 5वें यानी निर्णायक मुकाबले की। यशस्विनी घोरपड़े का सामना 15 साल की लॉय मिंग से था। हर खेल प्रेमी की धड़कन बढ़ी हुई थी। इसी बीच लॉय मिंग ने पहला गेम 11-5 से जीत कर बढ़त बना ली, लेकिन इसके बाद यशस्विनी ने 11-8, 12-10 से जीत हासिल कर वापसी की। फिर मिंग ने चौथा गेम 4-11 से जीत लिया। मैच का फैसला 5वें गेम पर पहुंचा। इसे यशस्विनी ने 11-9 से जीत कर भारत को लगातार दूसरा मैच जिता दिया। भारतीय पुरुष टीम ने भी जीत से शुरुआत की। उसने ग्रुप एफ में इंडोनेशिया को 3-0 से हराया। पहला मैच जी साथियान और मोहम्मद नेगारा के बीच खेला गया, जिसे जी साथियान ने 3-0 से आसानी से जीता और भारत को 1-0 की बढ़त दिलाई। मानव ठक्कर और मोहम्मद जुनिंद्रा के बीच खेला गया दूसरा मैच बेहद नजदीकी रहा। इस रोमांचक मुकाबले में मानव ने 3-2 से जीत हासिल की। तीसरा मैच मानुष शाह और अफ़ान प्रातामा के बीच खेला गया, जिसे मानुष शाह ने 3-0 से जीत कर भारत की जीत पक्की कर दी। हालांकि दूसरे मुकाबले में 15वीं रैंकिंग वाले भारत को 20वीं रैंक वाली टीम ईरान ने एक तरफा अंदाज में 3-0 से हराया। उधर भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने उम्मीदों के अनुरूप अपने अभियान का आगाज किया है, बता रही हैं अमीषा।
0: 20वें एशियन गेम्स आईची नागोया में बैडमिंटन के विमेंस टीम इवेंट के राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में इंडियन टीम ने कजाकिस्तान को 3-0 से हराकर अच्छा प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल्स में जगह बना ली है। इस पूरे टाइम में इंडियन शटलर्स ने शुरुआत से ही कोर्ट पर अपना फुल कंट्रोल बनाए रखा। मैच की शुरुआत की भारत की स्टार शटलर और 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु ने। सिंधु ने कजाकिस्तान की कामिला समागुलोवा को स्ट्रेट सेट्स में 21-7, 21-9 से हराकर भारत को 1-0 से शुरुआती बढ़त दिलाई। इसके बाद दूसरी सिंगल्स खिलाड़ी उन्नति हुड्डा ने भी अपना जलवा दिखाया। उन्नति ने अपनी रफ्तार और सटीक स्मैश के दम पर कजाकिस्तान की अलीसा कुलेशोवा को 21-7 और 21-10 से हराकर ये मैच अपने नाम कर लिया। इस समय मुकाबला पूरी तरह भारत की झोली में था और फिर आखिर में जीत की इस औपचारिकता को पूरा करने के लिए कोर्ट पर उतरी युवा शटलर तन्वी शर्मा। तन्वी ने कजाकिस्तान की विपक्षी खिलाड़ी डियाना नामेनोवा को 21-5 और 21-10 से एक तरफा मुकाबले में हराकर मैच अपने नाम कर लिया, जिसके चलते भारत 3-0 से अजेय बढ़त बना पाया और क्वार्टर फाइनल्स का टिकट कंफर्म किया। अब इंडियन टीम इसी जीत के इरादे से 22 सितंबर को होस्ट कंट्री यानी जापान से भिड़ेगी।
1: शारीरिक चपलता और स्टेमिना के खेल टेक बॉल में हम ऐतिहासिक पदक के करीब पहुंचकर चूक गए। परिणाम के बारे में बता रही हैं कविता।
0: डेब्यू हुए टेक बॉल से पदक की उम्मीदें थी, लेकिन दिन की शुरुआत निराशा के साथ हुई। महिला सिंगल्स के कांस्य पदक मुकाबले में क्विंसी डिसूजा को

0: जापान की विश्व नंबर 7 युइना साकामोटो के खिलाफ दो सेटों में सीधे हार का सामना करना पड़ा। दोनों गेम बेहद करीबी रहे, लेकिन क्विंसी दोनों सेट 11-12 के अंतर से हार गयी। इसी के साथ टेकबॉल में अगला मुकाबला हुआ मिक्स डबल्स का, जहां एक और कांस्य पदक दाव पर था, लेकिन ये मुकाबला भी भारतीय टीम वियतनाम की जोड़ी से हार गयी। मिक्स डबल्स में क्विंसी और मोहम्मद अनस इमरान बेग की जोड़ी वियतनाम से 12-9, 12-6 से हार कर बाहर हो गयी। ये अभियान यहाँ जरूर समाप्त हुआ, लेकिन क्विंसी ने अपने मुकाबले जीतने के लिए पूरी मशक्कत की। क्विंसी लगातार मुकाबलों के बीच दर्द में दिखी, जहां मुकाबला कुछ मिनटों के लिए रोकना पड़ा। खेल के दौरान क्विंसी का दर्द साफ नजर आ रहा था, जिसका नतीजा उनकी परफॉर्मेंस पर भी देखने को मिला, और इस तरह से एशियन गेम्स में टेकबॉल में भारत का अभियान बिना पदक के समाप्त हो गया। पर भले ही ये खिलाड़ी मुकाबला हार गयी हो, लेकिन खेलों के एक नए रूप टेकबॉल की पहचान जरूर बन गयी।
1: तैराकी में इस बार भारतीय दल बड़ी उम्मीदों के साथ उतरा है। इस दल को न सिर्फ अपने पिछले प्रदर्शन को बेहतर करना है, बल्कि पदक जीत कर भी लाना है। हालांकि पहले दिन तैराकी में भारत की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही। पुरुष 100 मीटर बैक स्ट्रोक में ऋषभ दास ने हीट में शुरुआत तो अच्छी की और कमाल का प्रदर्शन करते हुए 54.85 सेकंड का समय निकाला। वे अपनी हीट में तीसरे और ओवरऑल 5वें स्थान पर रहकर फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में सफल रहे। हालांकि पदक की दौड़ में वे चीनी और जापानी खिलाड़ियों की तगड़ी चुनौती के बीच पोडियम तक नहीं पहुंच सके। फाइनल में ऋषभ ने टाइमिंग के लिहाज से अपने प्रदर्शन को और निखारा, फिर भी वे 54.77 सेकंड का समय लेकर 9 खिलाड़ियों के मुकाबले में 6ठे स्थान पर रहे। इसी स्पर्धा के हीट में उत्कर्ष पाटिल ने 56.19 सेकंड का समय लिया और ओवरऑल 12वें स्थान पर रहे। इस तरह वे फाइनल में जगह बनाने से चूक गए। पुरुष 100 मीटर फ्री स्टाइल में रोहित बेनेडिक्टन अपनी हीट में 50.25 सेकंड के समय के साथ 5वें स्थान पर रहे। वो ओवरऑल 12वें स्थान पर रहे और फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में असफल रहे। इसी इवेंट में आकाश मणि ने 50.85 सेकंड का समय निकाला और अपनी हीट में 8वें स्थान पर रहे। इस प्रदर्शन से वे भी फाइनल में जगह बनाने से चूक गए। अपने खिताब के बचाव के लिए उतरी महिला क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश की टीम के साथ दो दो हाथ किया और जीत के साथ स्वर्ण पदक के और करीब पहुंच गई है। अमीषा की रिपोर्ट।
2: आज जापान के कुरुगी स्पोर्ट्स पार्क में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी, जब बांग्लादेश के खिलाफ एशियन गेम्स के सेमीफाइनल मुकाबले में नाबाद शतक लगाकर शिफाली वर्मा ने क्रिकेट के इतिहास में एशियन गेम्स में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बनने का गौरव हासिल किया। शिफाली ने मात्र 49 गेंदों में 100 रनों की नाबाद तूफानी पारी खेली, जिसमें 9 छक्के और 3 चौके शामिल थे। भारत ने पहली बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर्स में 4 विकेट के नुकसान पर 195 रनों का एक बड़ा स्कोर खड़ा किया। बल्लेबाजों के बाद अब बारी गेंदबाजों की थी। 196 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेशी टीम भारतीय गेंदबाजी और बड़े लक्ष्य के प्रेशर के आगे टिक नहीं पाई और महज 81 रनों पर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से शानदार गेंदबाजी करते हुए दीप्ति शर्मा और नंदिनी शर्मा ने 3-3 विकेट चटकाए और भारत ने 114 रनों के विशाल अंतर से मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ अब भारत अपना सिल्वर मेडल तो पक्का कर चुका है, पर अब उनका लक्ष्य अपना गोल्ड मेडल बचाने पर होगा।
1: वुशु में भारत के लिए शुरुआत अच्छी नहीं रही, बता रही हैं कविता।
0: भारतीय वुशु खिलाड़ियों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण रहा। भारत के सूरज सिंह, मयांग लाम्बम, अपर्णा धैया और विक्रांत बालियान अपने अपने मुकाबलों में पदक की दौड़ से बाहर हो गए। दिन की शुरुआत पुरुषों के चांगक्वान फाइनल से हुई, जहां भारत के सूरज सिंह, मयांग लाम्बम ने 21 खिलाड़ियों के बीच 9.683 अंक के साथ 11वां स्थान हासिल किया। सूरज ने क्वालिटी ऑफ मूवमेंट में 5.000 और डिग्री ऑफ डिफिकल्टी में 2.000 अंक हासिल किए, जबकि उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस स्कोर 2.683 रहा। इसके बाद महिलाओं की 52 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में भारत की अपर्णा धैया का मुकाबला ईरान की सोगंद सिंकाई चेतान से हुआ। राउंड ऑफ 16 में अपर्णा को 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। दोनों राउंड में उन्हें 5-0 के स्कोर से हार मिली और इसके साथ ही उनका एशियन गेम्स अभियान समाप्त हो गया। वहीं पुरुषों की 75 किलोग्राम सांडा में भारत के विक्रांत बालियान का सामना ईरान के सोहेल मौसवी से हुआ। विक्रांत को भी राउंड ऑफ 16 में 0-2 से हार मिली और वो प्रतियोगिता से बाहर हो गए। इस तरह 20 सितंबर को भारतीय वुशु के तीनों मुकाबलों में भारत को जीत नहीं मिल पाई।
1: और अब बात कल के मुकाबलों की। सेपक केकरा में भारतीय पुरुष रेगु टीम की भिड़ंत ग्रुप बी में।

0: जापान से होगी। शॉर्ट टेनिस में मिक्स डबल्स में जय मीणा और आद्या तिवारी का सामना ग्रुप बी में कंबोडिया से होगा। फिर ये भारतीय जोड़ी मंगोलिया के साथ खेलेगी। इन्हें दक्षिण कोरिया से भी मैच खेलना है। वुशु में न्यमान वाक्सु महिला चेंग क्वान में चुनौती रखेंगी। पुरुषों के 56 किलोग्राम वर्ग में आर्यन राउंड ऑफ 16 में अफगानिस्तान के प्रतिद्वंदी का सामना करेंगे। शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफल मेंस कैटेगरी के व्यक्तिगत मुकाबले में हिमांशु ढिल्लन, पार्थ मान्य और रुद्रांश पाटिल निशाना साधेंगे। पुरुषों के स्कीट इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन टीम फाइनल के पहले दिन अनंतजीत सिंह नारूका, भवतेक सिंह गिल और मैराज अहमद खान की चुनौती होगी। इसी इवेंट के महिला वर्ग में महेश्वरी चौहान और परिनाज धालीवाल के साथ साथ रायजा ढिल्लन निशाने साधेंगी। महिला टेबल टेनिस में भारत का सामना ग्रुप एफ में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा। तैराकी में पुरुषों के 50 मीटर बैक स्ट्रोक के हीट दो में ऋषभ दास और श्रीहरि नटराज स्विमिंग पूल में होंगे। पुरुष फ्री स्टाइल के हीट टू में आकाश मणि उतरेंगे। हीट फोर में गीतेश हीरशाह भारत की चुनौती रखेंगे। पुरुषों की ब्रेस्ट स्ट्रोक में हीट वन में दानुष सुरेश उतरेंगे। पुरुषों की 4x200 मीटर फ्री स्टाइल रिले के हीट टू में वेदांत माधवन, दक्षिण शशि कुमार, अनीश गौड़ा और साजन प्रकाश की चौकड़ी होगी। एमएमए के महिला ट्रेडिशनल 60 किलोग्राम वर्ग में सूचिका तरियाल ईरानी प्रतिद्वंदी से मुकाबला करेंगी। हॉकी में भारतीय महिला टीम का सामना इंडोनेशिया से होगा। कबड्डी में पुरुष टीम का ग्रुप ए में जापान से मुकाबला होगा। महिला टीम ग्रुप ए में बांग्लादेश के साथ दो दो हाथ करेगी। वुशु में रोशिबीना देवी महिलाओं के 60 किलो वर्ग के राउंड ऑफ 16 में बांग्लादेश की खिलाड़ी का सामना करेंगी। बॉक्सिंग में पुरुषों के 70 किलोग्राम वर्ग में पहले मैच में सुमित थाईलैंड के सिंसिरी का सामना करेंगे। टेबल टेनिस में भारतीय पुरुष टीम की टक्कर पाकिस्तान से होगी।
1: तो अब बात करते हैं मेडल्स टैली की। चाइना 11 गोल्ड, 6 सिल्वर और 3 ब्रोंज के साथ कुल 20 मेडल्स जीत कर टॉप पर बना हुआ है। दूसरे स्थान पर जापान है, जिसके पास भी कुल 20 मेडल्स हैं, लेकिन 6 गोल्ड, 7 सिल्वर और 7 ब्रोंज के साथ वे चाइना से पीछे है। तीसरे नंबर पर दक्षिण कोरिया है, जिन्होंने 4 गोल्ड, 3 सिल्वर और 7 ब्रोंज के साथ कुल 14 मेडल्स अपने नाम किए हैं। वहीं अगर भारत के प्रदर्शन पर नजर डालें तो भारत फिलहाल 10वीं पोजीशन पर बना हुआ है, जहां भारत के खाते में अभी तक कुल 2 सिल्वर मेडल्स आए हैं और देश को अभी अपने पहले गोल्ड का इंतजार है।
0: तो भारतीय खिलाड़ियों की जीत की ये शुरुआत तो बस एक झांकी है, पूरी कहानी तो अभी बाकी है। हमारे पदक वीरों को आपकी दुआओं और चीयर्स की जरूरत है। अब जुड़े रहिए आकाशवाणी के साथ। कल सुबह 9:30 बजे हर घंटे हम आईची नागोया एशियन गेम्स की हर अपडेट के साथ हाजिर होंगे। फिर रात 10 बजे दिन भर की रिपोर्ट लेकर उपस्थित होंगे। अभी प्रोग्राम प्रोड्यूसर शाहनवाज खान, एडिटर वंदना भारद्वाज के साथ धर्मेंद्र मणि राजेश और अमिशा पटेल को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नागोया।
3: एशियन गेम्स 2026 जापान में होने वाले इस एशियन गेम्स के डेली रिपोर्ट अभी आप सुन रहे थे, जो दिल्ली से नशर की जा रही थी। ये आकाशवाणी हैदराबाद है, आप सुन रहे हैं 101.9 एफएम मेगाहर्ट्ज पर और हमारा उर्दू प्रोग्राम नए रंग का सिलसिला अब जारी है।

आज यानी 20 सितंबर के बारे में हमने बात की, वर्ल्ड क्लीनअप डे की, और इसके अलावा आज इंटरनेशनल डे ऑफ यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स भी मनाया जाता है, यानी बैनुल अक्वामी आलमी योम खेल। खेल हम सब के लिए, यानी बच्चों से लेके बड़ों तक मानी खेल मुख्तलिफ किस्म के खेल होते हैं, और इस तरीके से खेल व्यायाम हमारी जिंदगी के लिए, खास तौर से स्पोर्ट्स स्कूल स्टूडेंट्स के लिए अलग तरह का होता है, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए और यूनिवर्सिटी लेवल पे अलग तरह का होता है। लेकिन खेल ज़रूरी बहुत ज़्यादा है सेहतमंद रहने के लिए, सेहतमंद जिंदगी के लिए खेल बहुत ज़रूरी होता है।

आप सुन रहे हैं 101.9 FM मेगाहर्ट्ज पर नरंग प्रोग्राम जारी है और हम आपको सुना रहे हैं गीत सुरीले गाते जा। गीतों के साथ साथ जैसे कि हम कुछ बातें रोजाना आपसे करते हैं, तो आज हम ने भी कुछ बातें आपसे की और हम इस बातों को आगे बढ़ाते हैं। और अब हम आपसे बात करते हैं जमीन की तहे यानी लेयर्स ऑफ अर्थ के बारे में। समय जमीन हमारी कायनात का एक इंतहाई खूबसूरत और हैरत अंगेज सैयारा है। ये हमें जिंदगी गुजारने के लिए हवा, पानी, खुराक, मादनियात और बेशुमार कुदरती वसायल फराहम करती है। अगरचे हमें जमीन की सतह का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा नजर आता है, लेकिन जमीन के अंदरूनी हिस्से में कई मुख्तलिफ तहें मौजूद हैं। हर तह अपनी साख, दर्ज हरारत, दबाव और खसूसियात के एतबार से दूसरी तहों से मुख्तलिफ है।

खिश्यार्ड्स यानी क्रस्ट जमीन की सबसे बेरुनी और सबसे पतली तह है। हम इंसान इस तह पर रहते हैं। हमारे शहर, पहाड़, मैदान, जंगलात, दरिया और समंदर सब इसी बेरुनी हिस्से से मुतालिक रखते हैं। खश्रे, अर्श की मोटाई हर जगह एक सा नहीं होती। समंदर के नीचे मौजूद क्रस्ट निस्बतन पतला होता है, जबकि बर्रे आजमों के नीचे मौजूद क्रस्ट निस्बतन मोटा होता है। क्रस्ट को बुनियादी तौर पर दो अकसाम में भी तकसीम किया जाता है, जैसे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट कहते हैं।

आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नैरंग 101.9 FM मेगाहर्ट्ज पर। हम बात कर रहे थे जमीन के लेयर्स की। अब हम दूसरे लेयर के बारे में बात करेंगे, यानी क्रस्ट के नीचे जमीन की एक बहुत बड़ी तह मौजूद है जिसे मैंटल कहा जाता है। जमीन का एक बड़ा हिस्सा मैंटल पर मुश्तमिल होता है। मैंटल बहुत ज्यादा गर्म और दबाव वाले मादे से बना हुआ है। इसका ज्यादातर हिस्सा ठोस हालत में होता है, लेकिन तवील अरसे के दौरान इसका मादा इंतहाई आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर सकता है। मेंटल में मौजूद हरारत की वजह से वहां हरारती गर्दिश या कन्विक्शन करंट्स पैदा होती हैं। मेंटल को भी मुख्तलिफ हिस्सों में बयान किया जाता है, जिनमें बालाई मेंटल और जेरे मेंटल शामिल है। बालाई मेंटल के एक हिस्से को थीनोस्फियर कहा जाता है। यह निस्बतन नर्म और लचकदार होता है, जिसके ऊपर लिथोस्फियर की प्लेटें हरकत करती हैं। मेंटल में होने वाली हरकत का ताल्लुक पहाड़ों की तश्कील, जलजलों, आतिशफिशां और प्लेट टेक्टोनिक्स जैसे अहम अर्जियात मुजाहिर करते हैं।

ये सुरीले गाता जा जारी रहेगा। समय हम जैसा कि हम बात कर रहे हैं अर्थ के लेयर्स की, जमीन के लेयर्स की, अब हम बात करेंगे तीसरा लेयर यानी ऑटोकोर, बेरूनी मरकज। मेंटल के नीचे जमीन का बेरूनी मरकज मौजूद होता है। ये हिस्सा बुनियादी तौर पर लोहे और निकल जैसे धातु अनासर पर मुश्तमिल है। बेरूनी मरकज की एक अहम खसूसियत यह है कि यह माया हालत में होता है। यहां दर्जे हरारत इंतहाई ज्यादा होता है। जमीन की गर्दिश और बेरूनी मरकज में मौजूद पिघले हुए धातु मादे की हरकत मिलकर एक अहम कुदरती अमल पैदा करती है जिसे जमीन का मखनातीसी मैदान यानी मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। जमीन का मखनातीसी मैदान हमारे सैयारे के लिए इंतहाई अहम है। ये जमीन को सूरज से आने वाले बर्फी जर्रात और शमसी हवाओं के असरात से

हिप्नोटिक प्लेटोंस की हरकत से जलजले आ सकते हैं, प्लेटों की हरकत से पहाड़ वजूद में आ सकते हैं। आतिशफिशां फटने का ताल्लुक जमीन के अंदर मौजूद गर्म मादे से है। मेंटल की हरारियाती गर्दिश भी हरकत में अहम किरदार अदा करती है।

आप सुन रहे हैं 101.9 FM MHz पर उर्दू प्रोग्राम नैरंग। वक्त हमें इशारा कर रहा है कि अब हमें यानी हमारा प्रोग्राम खत्म करना चाहिए, लेकिन चलते चलते हम आपको सुना दें पयाम-ए-शब। पेशकश है नदीम अख्तर ज़ैदी की।

तेरी रूह में सन्नाटा है और मेरी आवाज में चुप। तू अपने अंदाज में चुप है, मैं अपने अंदाज में चुप। बाज़ औक़ात इंसान बहुत कुछ कहना चाहता है, मगर हालात, दुख, मायूसी या जज्बात उसे खामोश रहने पर मजबूर कर देते हैं। इसीलिए किसी की खामोशी को समझने की कोशिश करें, सिर्फ उसके अल्फाज को नहीं। जिंदगी का सबक ये है कि बोलने से पहले समझना और फैसला करने से पहले महसूस करना सीखें, क्योंकि कभी कभी खामोशी वो बात कह देती है जिसे अल्फाज बयान नहीं कर पाते। बोलता हूं तो मेरे होंठ झुलस जाते हैं।

0: उसको ये बात बताने में बड़ी देर लगी। जिंदगी में बाज बातें कहना आसान नहीं होता, मगर हर बात को दिल में दबाकर रखना भी इंसान को अंदर से थका देता है। इसीलिए जरूरी है कि बात कहने का वक्त, अंदाज और मुखातिब दुरुस्त हो। सच कहना अच्छी बात है, लेकिन सच को हिकमत, नरमी और मुनासिब वक्त के साथ कहना चाहिए। सबक यही है कि खामोशी अगर दिल का सुकून छीनने लगे तो मुनासिब वक्त पर अपनी बात कह देनी चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात देर से कहा गया सच सच बोलने के बावजूद अपना असर खो देता है।
1: नदीम अख्तर ज़ैदी से अभी आप पयाम शब सुन रहे थे। शब के इसी पयाम के साथ हमारा आज का उर्दू प्रोग्राम खत्म करने की आज नूर अफशां को दीजिए इजाजत। कल इन्हीं मीटर्स पर और इन्हीं इसी वक्त यानी रात 9:30 बजे 101.9 FM मेगाहर्ट्ज पर उर्दू प्रोग्राम नैरंग में आपसे हमारी दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इंजॉय करिए, अच्छे से नींद लीजिए और दिन का भी मजा लीजिए।

0: ये आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 एफएम मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त 11 बजे हैं, कुछ ही देर में समाचार दिल्ली से प्रसारित होंगे।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
2: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
1: राष्ट्रपति ने पर्यावरण संबंधी कानूनी मामलों में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण ने बड़ी संख्या में मामलों का तेजी से निपटारा किया है और नदियों, वायु गुणवत्ता तथा कचरा प्रबंधन से जुड़े मामलों में प्रभावी अनुपालन व्यवस्था विकसित की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे मंगलवार को एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में विजेताओं को सम्मानित करेंगी। राष्ट्रपति बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजित किया जाएगा। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और जापान के वायु आत्मरक्षा बल के प्रमुख जनरल ताकेहिरो मोरिता ने आज जोधपुर में भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में एक साथ उड़ान भरी।

0: दोनों देशों के वायुसेना प्रमुखों की ये उड़ान जोधपुर में चल रहे संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2026 के दौरान हुई है।
1: जापानी लड़ाकू विमानों का पहली बार भारतीय धरती से संचालन हमारे दोनों देशों के संबंधों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुझे तरंग शक्ति 2024 का समय बहुत स्पष्ट रूप से याद है। उस समय आपकी टीम यहाँ आई थी, मैं वाइस चीफ के रूप में आया था और मैंने उन सभी से मुलाकात की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में खराब मौसम की वजह से आपके विमान यहाँ नहीं आ सके थे और उस समय हम ये अवसर गंवा बैठे। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि इस बार हम उस अवसर की भरपाई कर पाए हैं। ये दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और व्यापक साझेदारी के बढ़ते हुए आयाम को दर्शाता है।
0: उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता ATS ने आज वाराणसी में बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति समिति TPC के प्रमुख ब्रिजेश गंजू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। ब्रिजेश गंजू की गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने कुल 30 लाख रूपये का इनाम घोषित किया था। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला करते हुए मॉस्को में एक तेल शोधन संयंत्र और रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन ने बीती रात रूस पर 1000 से अधिक ड्रोन दागे हैं, जिनमें से सैकड़ों का रुख सीधे राजधानी मॉस्को की तरफ था। मॉस्को के मेयर सरगई सोबियानिन ने इसे राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स IICA ने आज मानेसर गुरुग्राम में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड IBC संशोधन के जरिए विकसित होता कानून विषय पर एक जानकारीपूर्ण सत्र आयोजित किया। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कहा कि इस सत्र में इंसॉल्वेंसी कानून की बदलती प्रकृति और कानून, अधीनस्थ कानून और बाजार के घटनाक्रमों के बीच संबंधों पर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। जापान एशियाई खेलों में भारत की एलाविनेल वेलारिवन ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय निपुणिका शाहिद। President Draupadi Murmu has said the increasing frequency of natural disasters in recent times underlines the urgent need for strong climate action and global cooperation to mitigate the impacts of climate change. The President was addressing the valedictory session of the two-day conference on the future of environment and climate dynamics, organized by the National Green Tribunal in New Delhi this evening.
3: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
2: President Murmu said climate change is creating imbalances in various aspects of human life, including biodiversity, water availability and land resources. The President said a well-structured framework of policies and actions is essential to effectively address such a complex challenge and must ensure the active participation of not only governments and legal experts but also the communities most affected by climate change. Indian Air Force Chief Air Chief Marshal AP Singh and Japan Air Self-Defense Force Chief of Staff General Takehiro Morita flew together in India's indigenous light combat aircraft Tejas during a formation sortie in Jodhpur today. The flight by the air chiefs of both nations comes as the Indian Air Force and Japan Air Self-Defense Force are conducting the joint air exercise Veer Gargian 2026 in Jodhpur. This is the first time that Japanese fighter aircraft are operating from Indian soil as part of a bilateral exercise, further deepening the defense partnership between both the countries. Talking to media in Jodhpur after the sortie, Air Chief Marshal Singh said, "First ever operation of Japanese fighter jet on Indian soil marks major milestone in bilateral defense ties." A Naxal

0: जल डमरू मध्य बंद रहेगा। इस महीने अब तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई ने भारतीय शेयर बाजार से लगभग 21,000 करोड़ रुपए निकाले और सोने और चांदी की कीमतों में पिछले सप्ताह फिर से तेजी।
1: Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. We move on to the first story. Iran has said that the Strait of Hormuz will remain closed until their conditions are met and commitments from the United States are implemented. Iranian Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf made these comments according to Iran's semi-official Fars news agency. Ghalibaf said Iran would continue to fight and negotiate using military force against its enemies and diplomacy to consolidate what it considers gains on the battlefield. Meanwhile, the wider regional conflict continues. Saudi Arabia stated that it intercepted a ballistic missile launched towards Riyadh yesterday, while Yemen's Houthi movement has claimed attacks against Saudi targets. More from our correspondent.
2: Iranian officials have once again said that reopening the Strait of Hormuz depends on US commitments, including an end to fighting and changes to sanctions and restrictions on Iranian shipping. The strait remains heavily disrupted, even as US Central Command has claimed that it has helped more than 2,000 commercial vessels pass through the waterway in the past 2 months. The US State Department, citing the Houthi hostilities with Saudi Arabia, has renewed its travel alert for the West Asia region. The US has warned that the security environment remains complex with the potential for unforeseen escalation. Manish Shiva for Akashwani News from Dubai.
0: जी, और चले कुछ श्रोताओं के पास जो इंतजार कर रहे हैं अपने सवालों के साथ। दिल्ली से योगेश हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
3: जी नमस्कार आप सभी को।
0: नमस्कार,
3: मेरा सवाल ये है कि जैसे आजकल की जितनी इन्वेस्टमेंट होती हैं वो सारी की सारी एक फाइनेंशियल डिजिटल मोड से हो रही है, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे वो गोल्ड के बॉन्ड्स हो, चाहे वो रियल एस्टेट में रीट्स के इन्वेस्टमेंट्स हो या बॉन्ड्स या पीपीएफ वगैरह शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड वगैरह हो, तो जितने भी एसेट क्लास है सब में डिजिटल माध्यम से ही इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो ऐसे में डाइवर्सिफाई करने के लिए इस लेवल पे कितना जरूरी आप समझते हैं कि जो फिजिकल एसेट्स होते थे पहले जिनको हम ओन करते थे, जैसे वो प्लॉट या घर हो सकता है या फिजिकल गोल्ड हो सकता है, तो फिजिकल एसेट्स का होना भी कितना जरूरी है बैलेंस बनाकर रखने के लिए?
4: योगेश जी, जो आपका ओवरऑल सवाल है वर्चुअल एसेट्स वर्सेस फिजिकल एसेट्स का, तो हर चीज के कुछ फायदे और कुछ नुकसान रहते हैं। बट जहां तक डिजिटल ओनरशिप की बात है ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, व्हाइल यू गेन द एक्सपोजर टू दैट पर्टिकुलर एसेट क्लास वाया दैट मेथड, बट फिजिकल एसेट से आप ओनरशिप से जो एक हमारे दिमाग में एक चीज आती है वो रहती है एक साइकोलॉजिकल, हमें लगता है कि ये चीज हमारे पास है। डिजिटल या वर्चुअल कोई भी चीज होती है तो हमें लगता है कि इसकी पकड़ हमारे हाथ में नहीं है। बट जब भी कोई एसेट क्लास का एक्सपोजर हमें लेना होता है, ये वाले जो एस्पेक्ट्स हैं उनको साइड में रख के हमें ये देखना होता है कि किसी भी चीज को जब आप चाहे फिजिकल ओन कर रहे हो चाहे वर्चुअल ओन कर रहे हो, बट उसका बेनिफिट क्या है आपके लिए, मतलब वो आपके किसी गोल से लिंक्ड है या फिर वो किस टाइप का एक रिस्क या फिर लिक्विडिटी कॉन्स्ट्रेंट्स ऐसे कैसे हैं उस फिजिकल एसेट्स में जो आपको सोचना चाहिए, चाहे फिजिकल हो चाहे वर्चुअल हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां तक डाइवर्सिफिकेशन के माध्यम की बात है, तो अगर हम फंड्स के पर्टेनिंग बात करें तो जैसे हमारे कुछ बेसिक थंब रूल्स रहते हैं विच हेल्प अस डाइवर्सिफाई अ पोर्टफोलियो, कि हम एएमसी लेवल पे डाइवर्सिफाई करें, हम कैटेगरी लेवल पे डाइवर्सिफाई करें, हम एसेट क्लास लेवल पे डाइवर्सिफाई करें, ये कुछ चीजें करके हम लंबे समय के लिए अपना पोर्टफोलियो संतुष्टि से बना सकते हैं।
0: जी, आपने जैसा कहा अभी स्नेहा या जैसा सवाल था इनका कि डिजिटल सब कुछ लगभग डिजिटल हो गया है, तो ये सहूलियत है। और लेकिन ये सवाल इनके मन में क्यों आया, मैं उस पर विचार कर रहा था कि क्या इस

0: के पीछे डर क्या है? क्या सब कुछ डिजिटल है तो कहीं सब कुछ कॉलेप्स हो सकता है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली तो सब कुछ जमीन पर है. अगर अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो पैसे म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जा रहे हैं, और
1: बिल्कुल
0: वहां से फिर वो शेयर बाजार में अगर जा रहे हैं या बॉन्ड मार्केट में जा रहे हैं, तो वहां से भी वो फिर वो कंपनी एक्चुअली वो बाजार में है वो
1: बिल्कुल,
0: पैसे.
1: पर यहाँ इम्पोर्टेंट बात ये रहती है कि चाहे वो बाजार में है, आपने लगाए हुए हैं, ये सब एसेट क्लासेस एक रेगुलेटरी बॉडी के अंडर है,
0: अंडर है
1: जिनका
0: जी.
1: मेन बेनिफिट ही यही है कि इन्वेस्टर की सुरक्षा और इन्वेस्टर का जो एक एक्सपीरियंस है उसको कन्वीनियंट और इजी बनाने के लिए मतलब यहाँ पे कुछ डाउट नहीं रखना
0: नहीं
1: चाहिए,
0: रखना चाहिए, कोई ऐसी कोई हवा हवाई चीज नहीं है
1: नहीं है
0: डिजिटल की अचानक
1: बिल्कुल
0: कॉलेप्स हो जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब
1: बिल्कुल,
0: कुछ इरेज हो जाएगा.
1: सारे रिकॉर्ड्स डिजिटली रहते हैं।
0: जी
1: मतलब पुराने टाइम पे वो जो शेयर सर्टिफिकेट वाली बात होती थी, काफी लोगों को पता नहीं होता था कि अंदर पड़ा हुआ है कुछ, या वो
0: भूल
1: पेपर
0: जाते
1: खराब,
0: थे
1: भूल
0: लोग.
1: जाते थे
0: अभी भी
1: बिल्कुल।
0: बहुत सारे कॉल्स आते हैं हमारे पास ऐसे.
2: सो द डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स आर एक्चुअली फोकसिंग क्वाइट अ बिट ऑन मैक्रो इकोनॉमिक डेटा, द जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, यू ऑल्सो हैव द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स फ्लोज, द कमोडिटी प्राइजेज एंड ग्लोबल बॉन्ड यील्ड्स। इन सच अ सिनारियो what should an investor be doing when it comes to mutual funds? How should they navigate the particularly the geopolitical situation that's prevailing today?
1: Right. So, there is a specific problem here, which is that in the last 3-4 years, information has been all over. The information flow and thereby the interpretation of every minor macro detail has really reached investors in a way that, so let's say for people who entered post-COVID, we've always been talking about how their experience for 2-3 years had been spectacular, given the kind of returns or the
2: Right.
1: run-up that they were seeing in their portfolios. And suddenly when things started to change, I would not say collapse, change being that is the market design, the ups and downs, then the information started taking importance beyond a particular investor's circumstances or situations. So I would say for investors in a world where everything sort of seems haywire or for the time being,
2: Questionable.
1: yeah, all of that, it is good to know all of it to remain aware of what is happening in the macro world and outside the domestic as well. But when it comes to your own portfolio, you should be grounded in the fact that how your personal policies are, how your circumstances are, how your situation is. If let's say you need some money for a very important thing which you had been investing for, you should really not think about what is happening in the geopolitical arena or anywhere in the world, because you invested your money for this day, so you should pull it out. If in case you do not need your money, just continue with your asset allocation, with your SIPs. Don't be scared because of what is happening out there, because this is the most tough part, staying in the game when things look red in your portfolio.
2: So, are there any sector-specific mutual funds that you would recommend that people should focus on?
1: I would say specific to sectors more than that, to understand and or let's say to sort of keep control over where you are investing, you should actually be investing into diversified funds. Thereby, you will be giving the fund manager the opportunity to with the macro developments to, let's say, change the sectoral exposures or the company dynamics within the portfolio for your benefit. And yeah, that should be the focus and
2: So
1: not really the
2: the mantra, according to you, should be that one should continue to invest.
0: बिल्कुल.
1: राइट
0: स्नेहा की राय यही है राजेश, कि आप गिरते हुए बाजार का फायदा उठाएं और बाजार में पैसा लगाते रहें ताकि आप कम प्राइस पे यूनिट्स खरीद सकें, म्यूचुअल फंड में बने रहें. अगले कॉलर हैं जयपुर से शिवम, स्वागत है आपका, सवाल पूछें.
3: नमस्कार सर।
0: नमस्ते.
3: सर मैं अभी आने वाले 7-8 साल के लिए लगातार मंथली SIP करना चाहता हूँ फ्लेक्सी कैप फंड में। तो सर मैं ये जानना चाह रहा था कि ये पारस्परिक का फ्लेक्सी कैप फंड और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, इन दोनों में से किसी एक को चूज करना हो तो कौन सा बेटर रहेगा सर, प्लीज ये बताइए।
1: शिवम जी, ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने टाइम होराइजन को ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं, एंड इसीलिए आपने जो एक एसेट क्लास सिलेक्ट करी है वो भी बिल्कुल सही है।

0: विच इज इक्विटी. जब भी कुछ चुनाव की बात आती है ना, कैटेगरी लाइक फ्लेक्सी कैप, तो जैसे अभी हम पहले श्रोता को बता रहे थे, डाइवर्सिफिकेशन एक की रहती है अपने पोर्टफोलियो के लिए. तो हमें हमेशा जब इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम कम से कम दो फंड्स का चुनाव करें फ्लेक्सी कैप, मतलब किसी भी कैटेगरी में वैसे, बट आपने फ्लेक्सी कैप कैटेगरी कहा, तो दो फंड्स का चुनाव करें, वो ज्यादा बेहतर रहता है, ताकि किसी भी एक फंड पे हमारी जो पोर्टफोलियो की डिपेंडेंस है उससे प्रॉब्लम ना रहे. और जब इन्वेस्ट करें तो SIP के माध्यम से ही करें.
1: जी, आइए और अगली खबर पर नज़र डालते हैं। इस महीने अब तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों FPIs ने भारतीय शेयर बाजार से 20,974 करोड़ रुपए निकाले हैं। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार वैश्विक अनिश्चितता बढ़ने और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में वृद्धि के कारण निवेशकों की जोखिम लेने की क्षमता प्रभावित हुई है। वैसे देखा जाए तो देश के शेयर बाजारों में कुल बिक्री के जरिए FPIs ने 23,676 करोड़ रुपए निकाले, लेकिन प्राथमिक बाजार में उन्होंने 2,700 करोड़ रुपए का निवेश भी किया। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर में 25 आधारभूत अंकों की वृद्धि से वैश्विक तरलता की स्थिति पर अनिश्चितता और बढ़ गई है। भारतीय ऋण बाजार में भी FPIs की बिकवाली का दबाव बना रहा। सितंबर में अब तक FPI ने FAR के जरिए ऋण प्रतिभूतियों से 10,296 करोड़ रुपए निकाले हैं। VRR के जरिए 1,817 करोड़ रुपए की निकासी हुई, जबकि जनरल लिमिट मार्ग से समीक्षा अवधि के दौरान 1,068 करोड़ रुपए की निकासी दर्ज की गई।
2: If you have any questions related to mutual funds, we have in our studio mutual funds experts Neha Suri with us. So you can call us at 2331-4444 or 2331-0481 or 2371-7106. In the meantime, we are joined in by Shankar from Bhopal. Shankar, a warm welcome. Please ask your question.
3: Good evening, Market
2: Good
3: Mathura team.
2: evening.
3: Ma'am, my question is about REITs fund. If someone is invested in REITs fund, what should be the allocation into REITs fund as far as equity and debt is concerned and gold? What should be the REITs fund investment? And secondly, REITs fund earns on what? Do they earn on rental income or do they earn on price appreciation of property? How this model of REITs work? Can you please explain to us? Thank you.
0: So, Shankar, when it comes to the kind of allocation you should have beyond the traditional equity and debt allocation. By traditional, I mean equity asset class and debt asset class overall versus, let's say, gold or REITs. In your portfolio, while majorly equity and debt should be along with as per your asset allocation, for a REITs kind of exposure or say gold, you can look to have, let's say, a 10 to 15% kind of an allocation. Having said that, now even equity mutual funds have the leeway to invest some portion in REITs or the listed real estate and gold slash silver or any kind of commodities. So there is no longer a need to have a specific allocation carved out for, say, gold or REITs. Having said that, if you're still looking for some, of course, you can look to have a lower allocation, as I said, around 10%. When you say how they earn, while the details of that I will definitely have to look at, but since they are listed, the price appreciation is well part of it. So that part remains same as shares.
1: जी, और अभी के जो हालात हैं स्नेहा, जिसे हम पहले बात कर रहे थे, गिरते हुए बाजार का फायदा उठाएं, और लेकिन आमतौर पर ये गिरता हुआ बाजार जब काफी समय तक कायम रहता है और देर तक, तो थोड़ी घबराहट तो होती है। चलिए, हम इस पर आगे चर्चा रखेंगे जारी अपनी। और नोएडा से विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, स्वागत है आपका, सवाल पूछे।
4: सर, मेरे पास SBI का कॉन्ट्रा फंड है, वो बहुत अच्छा प्रूव नहीं कर रहा है। एक बार मैंने मार्केट मंत्रा में ही मैंने सुना था कि SBI कॉन्ट्रा में आप निवेश कीजिए सिप, लेकिन कोई अच्छा परसेंटेज इसमें जनरेट नहीं हो रहा है, तो कृपया सलाह दें।
0: विनोद जी, हम जिस कभी भी जिस भी कोई भी इक्विटी फंड्स पे इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए इन्वेस्ट करते टाइम कि हमारा कोई कोई भी फंड होता है वो हमेशा उतार चढ़ाव से गुजरते हुए उसके बेस्ट फेजेस आएंगे और उसके वर्स्ट फेजेस आएंगे, और कुछ ऐसे फेजेस होंगे

0: जब आपको ना ही कोई बेनिफिट हो रहा होगा, बहुत ही मिडलिंग टाइप ऑफ फेजेस होते हैं. यही वो एक्चुअल फेजेस होते हैं जब हमें उसमें लगे रहना होता है. बिकॉज अगर वो फंड आपके पोर्टफोलियो को ओवरऑल कंप्लीट करता है, तो हमें उसके जो एक मिडलिंग फेज होता है उसमें उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए. स्पेसिफिकली जो कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग एज अ स्ट्रैटेजी रहती है, ये इसमें चुनाव ऐसे शेयर्स या स्टॉक्स का करते हैं फंड मैनेजर्स जिनकी संभावना ऐसी रहती है कि ये अभी मार्केट से अलग चल रहे हैं, बट जब मार्केट का एक दूसरा टाइप ऑफ लेट्स से डायरेक्शन आएगा, तब ये आपको बेनिफिट देंगे. तो कॉन्ट्रा और जैसे वैल्यू इन्वेस्टिंग के स्टाइल्स होते हैं, इनमें थोड़ा जो एक धैर्य या पेशेंस होता है वो हमें ज्यादा लेकर चलना होता है. ओवरऑल फंड अगर आपके पोर्टफोलियो में सूटेबल है, आप SIP के माध्यम से उसमें लंबे समय से करते आ रहे हैं, तो भी आपको समय देना चाहिए. और अगर आपने हाल फिलहाल में स्टार्ट करा है, तो इक्विटी को रंग दिखाने के लिए कम से कम 3 या 5 साल हमें चाहिए ही रहते हैं. तो मेरी समझ में आपको बने रहना चाहिए.
1: From Odisha, we are joined in by Ambuja. A warm welcome, Ambuja.
2: Good evening, Market Mantra.
1: Good evening.
2: My question is, when I will take a loan against mutual fund, what discipline should I follow?
0: So, loan against mutual fund is a very, a very new and a very good way of, let's say, continuing the compounding part of your mutual funds and still getting some liquidity in your favor. I would say you should just not, whenever taking any kind of loan, according to me, one particular aspect remains that any kind of, interest payment, you should remain on top of it. And you should not, let's say, consider this particular, aspect of taking a loan for every liquidity needs that crops up. So you should have discipline in the sense that you are taking loan against your mutual fund units for this particular reason, because you are not able to arrange for any other, let's say, way out. While this remains a good way to take, to get some liquidity immediately, but a dependence of a kind that this becomes your way to go every time should be, I guess, taken care of.
1: जी, अगले कॉलर है मुंबई से पंकज, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
3: हाय, गुड इवनिंग मार्केट मंडल टीम।
1: गुड इवनिंग।
3: आई हैव गॉट टू क्वेश्चंस। वन इज, इफ आई हैव अ 5+ ईयर होराइजन, हाउ मेनी फंड्स शुड आई एक्चुअली हैव इन माय पोर्टफोलियो एंड हाउ डू आई अवॉइड ओवर डाइवर्सिफिकेशन इन माय पोर्टफोलियो? वन इज दैट, एंड द सेकंड वन इज अबाउट म्यूचुअल फंड्स नाउ इन्वेस्टिंग इन फॉरेन मार्केट. सो हाउ गुड और बैड आर दीज, एंड स्पेशली नाउ एट सच अ टाइम व्हेन से द US मार्केट्स और अदर मार्केट्स आर डूइंग आउट परफॉर्मिंग द इंडियन मार्केट. सो इज इट अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन सच फंड्स? थैंक्स.
0: राइट, सो पंकज, टेकिंग योर सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट, वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन बियॉन्ड AMC एंड फंड लेवल डाइवर्सिफिकेशन और एसेट क्लास डाइवर्सिफिकेशन इज हैविंग सम डाइवर्सिफिकेशन और सम ऑफ योर मनी बियॉन्ड द डोमेस्टिक और द लोकल लोकल होराइजन विच बिकम्स द डोमेस्टिक कंट्री. सो हैविंग सम एलोकेशन टू इंटरनेशनल फंड्स इज a really good way of topping up diversification in your portfolio. Having said that, international specific mutual funds which are 100% investing in those sort of are going through a blockage of a kind that you are not able to invest in those funds. But there are funds out there, if you let's say search, a Google search would tell you that there are funds which are investing some portion of their investments, their money, into international specific stocks, which can be a good way to start if they are overall diversified. Now coming to your first question, that since you're beginning, you have a long-term horizon, how many funds you should have? So there is no scientific formula or rule of thumb as such that these many funds will get you this much kind of a benefit of any kind. How you should go about selecting is something that I can help you with. One, looking at your time horizon and risk appetite, have some sense of asset allocation, how much equity you want, how much debt you want. Secondly, in case of equity, you can look to have, let's say, 1-2 flexi cap, multi cap as core of your portfolio, because they are diversified. They get you large, mid, small all at once. And then when you have some experience already, then you can look to have some 20% into small and mid cap, which require longer horizon because of the risk that they get you. But of course, the return benefit for the generation of wealth of your overall portfolio can enhance with that.

0: silver become part of the commodities? And we've seen historically how you know, there have been times when commodities or gold, let's say here, performs really well when there is uncertainty in the equity market, which hurts, of course, aggressive hybrid funds since they are about 65-70% in equity. So I would say you can look to have, if you're looking for a long-term horizon, you can look to have exposures of all of these asset classes into your portfolio, because a combination is what will help you in the long term. And, you know, specific allocations, standalone allocations may not be able to generate that much benefit.
1: Ji, MP se DS Sharma hamare saath hain. Swagat hai, aapka sawal poochhein.
2: Hello.
1: Hello, ji.
2: Namaskar, sir.
1: Namaskar.
2: Main DS Sharma bol raha hu, Mansoor MP se.
1: Ji.
2: Main 2017 mein maine HDFC से कुछ फंड लिए थे सर
1: जी.
2: बैलेंस में करीब 15 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए एक टैक्स सेविंग में, और कुछ दूसरे भी लिए थे. 2-3 साल तक तो उनके मेरे पास में रिजल्ट आते रहे, मगर अब क्या है, 2-3 साल से उनका पता ही नहीं है कि वो कहाँ है. बैंक जाता हूँ तो कहते हैं ये है ही नहीं हमारे अकाउंट में, जबकि मेरे पास में उनका हार्ड कॉपी है, सब कुछ है. तो क्या करना चाहिए सर?
0: जी डियर शर्मा जी, अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो बैंक को अपने जो रिकॉर्ड्स हैं उनमें सर्च करके वो मिलना चाहिए, या फिर अगर आपने डायरेक्टली बैंक के साथ करा था तो बिल्कुल ही मिलना चाहिए. और अगर कोई डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बीच में था जिसके साथ आपने करा था, आप उनसे मदद ले सकते हैं. और दूसरा तरीका ये रहता है कि आप मतलब हम एज इन्वेस्टर्स, हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि हम डायरेक्टली जो AMC है जिनसे हमने इन्वेस्ट करा है उनको भी रीच आउट कर सकते हैं उनकी वेबसाइट के जरिए, या फिर सेबी भी अलाउ करता है हमें कंप्लेन रेज करने का. तो ये तरीके आप,
3: कोई अम्बड्समैन नहीं है जिनके पास जा सकते?
0: बिल्कुल सेबी, तभी मैं बोल रही हूँ कि वहां पे भी होगा.
1: आई अगली खबर पे नजर डालें हम. सोने और चांदी की कीमतों में पिछले सप्ताह फिर तेजी देखने को मिली. ये बढ़त मुख्य रूप से सप्ताह के अंत में आई रिकवरी के कारण रही, जिसे कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से समर्थन मिला. MCX में अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट के सोने के वायदा भाव में सप्ताह के दौरान 1% की बढ़ोतरी हुई और ये 1,54,381 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ. दिसंबर अनुबंध वाली चांदी के वायदा भाव में 2.8% की बढ़त दर्ज की गई और ये 2,41,603 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई. कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर अनुबंध वाले सोने के वायदा भाव में सप्ताह के दौरान 0.4% की बढ़ोतरी हुई और ये $4,390.70 प्रति ट्रॉय ऑन्स पर बंद हुआ.
3: फ्रॉम जयपुर वी आर जॉइंड इन बाय जितेंद्र. अ वार्म वेलकम जितेंद्र.
4: हेलो. हाँ मैडम, ये एक्टिव फंड क्या होता है? एक नया NFO आया शायद मोतीलाल ओसवाल का ना, किसका एक्टिव फंड, तो क्या मतलब वो किस टाइप का, मतलब एक्टिव से क्या समझ में आ रहा है?
0: जितेंद्र जी, पूरी जानकारी के लिए मुझे पूरा नाम चाहिए होगा फंड का, कि मतलब मोतीलाल के कौन से फंड या क्या नाम.
3: We'll get back to him next week sometime. Moving on, the new merchant discount rate MDR framework will come into effect from 15th of next month. Under this framework, unified payments interface UPI transactions of up to 2000 rupees will attract zero MDR. As a result, there is no impact on small value UPI transactions up to 2000 rupees. National Payments Corporation of India said these small value UPI transactions comprise more than 95% of the total volume of UPI person to merchant transactions. It added that the intent of levying reasonable MDR is to ensure that UPI remains accessible and convenient for everyday transactions while supporting long-term ecosystem sustainability.
1: Ji, agli caller hai Punjab se Meenakshi. Swagat hai aapka, sawal poochhein.
5: Main Meenakshi bol rahi hu Bhatinda se. Mera sawal lagbhag yahi isi se milta julta tha ki agar main UPI के थ्रू SIP में इन्वेस्ट करती हूँ और अमाउंट अगर 2000 रुपए है तो क्या MDR लागू होने के बाद उस पर कोई असर आएगा?
0: मीनाक्षी जी, अभी तक जो मैं आपको बता सकती हूँ वो यही है कि एज एन SIP इन्वेस्टर हम पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, बाकी आगे आने वाला समय ही बताएगा.
3: डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स आर एक्सपेक्टेड टू फोकस ऑन मैक्रो इकोनॉमिक डेटा, जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, foreign institutions.

0: institutional investor flows, commodity prices and global bond yields for Qs in the week ahead. On the economic front, market participants will closely track core industries data. The primary market is also set for another busy week with six main board initial public offerings, IPOs, opening for subscription. Globally, investors will monitor developments surrounding the West Asia conflicts. Focus will also be on anticipated visit by Chinese President Xi Jinping to the United States.
1: और जल्दी जल्दी स्नेहा हम दो चार सेंटेंस में अगर हम बताना चाहें जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि बस गिरते हुए बाजार का फायदा उठाएं बाजार में बने रहें आप आगे क्या जोड़ना चाहेंगे इस पे
0: और कंपाउंडिंग कैसे होती है हाउ शुड वी आस्क यू नो आस्क द लिसनर्स टू बी वेरी वेरी यू नो वेरी वेरी इन्वॉल्वड इन द म्यूचुअल फंड्स
2: सो अगर आप एक से दो साल के बाद अपना पोर्टफोलियो देखेंगे तो आपको जो एक बढ़ोतरी दिखती है उसी को कंपाउंडिंग कहते हैं
0: इसीलिए
1: वक्त इतना ही है आज स्नेहा कार्यक्रम में आने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
2: जी धन्यवाद
0: हेडलाइंस वंस अगेन ईरान सेज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विल रिमेन क्लोज्ड अंटिल कंडीशंस आर मेट FPI withdraw nearly 21,000 crore rupees and in bullion market, gold and silver prices rise last week. That's what we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें
4: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 11:41 और 10 सेकेंड। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त फेरोज, लेकर आपका पसंदीदा प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत। और गीत मेरे मनमीत में सुनहरे दौर के उन नगमों को लेकर हम हाजिर हैं जो आपके दिल के बेहद करीब है। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलूस आदाब। और दोस्तों चलिए यादों की उस खूबसूरत दुनिया में जहाँ कहानी, संगीत और प्रकृति तीनों मिलकर सिनेमा को एक यादगार अनुभव बना देते थे, और उस दौर का नाम है सुनहरा दौर, यानी गोल्डन एरा, जिसमें बेहद खूबसूरत फिल्में बनी, बेहद खूबसूरत गीत लिखे गए और गाए गए। और पहला नगमा एक बेहद खूबसूरत फिल्म से, हम बात कर रहे हैं साल 1960 की बहुत ही चर्चित फिल्म जिस देश में गंगा बहती है की। फिल्म का निर्देशन किया था राधु कर्माकर ने और निर्माण किया था राज कपूर साहब ने। फिल्म में राज कपूर, पद्मिनी और प्राण प्रमुख भूमिका में नजर आए। राधु कर्माकर की ये पहली फिल्म थी जिसका निर्देशन उन्होंने किया था। इससे पहले वे राज कपूर की कई फिल्मों में सिनेमेटोग्राफर के रूप में अपनी पहचान बना चुके थे। फिल्म के गीतों को संगीत दिया था मशहूर जोड़ी शंकर जयकिशन ने, और गीत लिखे थे इस फिल्म के शैलेंद्र और हसरत जयपुरी साहब ने। इसी फिल्म से हमें मिले कई सदाबहार नगमे, ओ बसंती पवन पागल, आप लौट चले और होठों पे सच्चाई रहती है, और भी बहुत सारे बेहद खूबसूरत गीत।

फिल्म की खूबसूरती में मध्य प्रदेश के भेड़ा घाट की संगमरमर की चट्टानों का भी खास योगदान रहा। प्रकृति की इस दिलकश पृष्ठभूमि ने फिल्म के दृश्यों को यादगार बना दिया। उसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा है जिसमें कई फनकारों ने अपनी बेहद खूबसूरत आवाज दी, उनमें लता जी, गीता दत्त जी, मुकेश मन्ना डे साहब और महेंद्र कपूर। तो आइए इसी फिल्म का यह बेहद खूबसूरत नगमा हम आपको सुनवाते हैं, जिसको लिखा है शैलेंद्र ने और संगीत है शंकर जयकिशन साहब का।

लता जी, गीता दत्त, मुकेश मन्नाडे साहब, महेंद्र कपूर और शैलेंद्र की बेहद खूबसूरत, ये महेंद्र कपूर साहब की बेहद खूबसूरत आवाज़ों में नगमा था फिल्म जिस देश में गंगा बहती है। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत मेरे मनमीत की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में अगला नगमा एक और बहुत ही खूबसूरत फिल्म से, 1959 की ये फिल्म धूल का फूल। बी आर चोपड़ा निर्मित और उनके छोटे भाई यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित यह फिल्म यश चोपड़ा की बतौर निर्देशक पहली फिल्म थी। इससे पहले वे हालांकि नया दौर में एक सहायक निर्देशक के रूप में काम कर चुके थे। फिल्म में माला सिन्हा ने एक ऐसी महिला का किरदार निभाया जो अपने प्रेमी द्वारा ठुकराए जाने के बाद अपने बच्चों को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाती है। एक बेहद खूबसूरत कहानी, एक बेहद खूबसूरत फिल्म, और इस फिल्म का ये नगमा बहुत ही प्यारा जिसे अपनी आवाज दी लता मंगेशकर जी और महेंद्र कपूर साहब ने। तो आइए सुनते हैं इसी फिल्म का ये बहुत ही प्यारा नगमा, गीत मेरे मनमीत की इस महफिल।

महेंद्र कपूर साहब और लता जी की नीनी आवाजों के साथ मुझे यानी फिरोज को अब दीजिए इजाजत गीत मेरे मनमीत से। फिर हो गई हमारी मुलाकात, तब तक के लिए आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम आहूजा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
1: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनके यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे मंगलवार को एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में विजेताओं को सम्मानित करेंगी। राष्ट्रपति बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और जापान के वायु आत्मरक्षा बल के प्रमुख जनरल ताकेहिरो मोरिता ने जोधपुर में भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में एक साथ उड़ान भरी। दोनों देशों के वायुसेना प्रमुखों की ये उड़ान जोधपुर में चल रहे संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2026 के दौरान हुई है। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस ने वाराणसी में बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति समिति टीपीसी के प्रमुख ब्रजेश गंजू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। ब्रजेश गंजू की गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने कुल 30 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। दिल्ली कैंट विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी ईआरओ के कार्यालय ने साफ किया है कि भारत के चुनाव आयुक्त डॉ सुखबीर सिंह संधू द्वारा दी गई जानकारी, तथ्यों और दस्तावेजों की ठीक से जांच कर ली गई है।

0: एक प्रेस नोट में निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी ने कहा कि डॉ सिंधु की वोटर लिस्ट एंट्री को मंजूरी दे दी गई है और इसे विधानसभा क्षेत्र 38 दिल्ली कैंट की फाइनल वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए बरकरार रखा गया है। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला करते हुए मॉस्को में एक तेल शोधन संयंत्र और रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन ने रूस पर 1000 से अधिक ड्रोन दागे हैं, जिनमें से सैकड़ों का रुख सीधे राजधानी मॉस्को की तरफ था। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबयानिन ने इसे राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया है। मौसम विभाग ने ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अगले 2 से 3 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दिल्ली में अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। भारतीय महिला और पुरुष हॉकी टीम ने अपने अपने मुकाबलों में जीत दर्ज की। पुरुष टीम ने इंडोनेशिया को 13-1 और महिला हॉकी टीम ने उज्बेकिस्तान पर 19-0 से शानदार जीत दर्ज की। वहीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को 114 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में सुचिका तरियाल ने पारंपरिक श्रेणी के 60 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्का किया। इसके साथ ही भारतीय महिला बैडमिंटन और टेबल टेनिस टीम ने भी अपने अपने मुकाबलों में जीत दर्ज की। जापान एशियाई खेलों में भारत की एलावेनिल वेलारिवन ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया है।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय निपुणिका शाहिद। President Draupadi Murmu has said the increasing frequency of natural disasters in recent times underlines the urgent need for strong climate action and global cooperation to mitigate the impacts of climate change. The President was addressing the valedictory session of the two-day conference on the future of environment and climate dynamics, organized by the National Green Tribunal in New Delhi this evening. President Murmu said climate change is creating imbalances in various aspects of human life, including biodiversity, water availability and land resources.
2: Climate change manav astitva ke anek staron par asantulan paida karta hai. Biodiversity loss, water stress aur land degradation isse gehrai se jude hain. Water stress wale kshetron mein farm ponds sthaniya samuday ke liye atyant upayogi siddh ho sakte hain. Ye na keval varsha jal ko क्षेत्रों में रखने के लिए अपेतु सिंचाई के लिए समय पर जल उपलब्ध कराते, इनसे भूजल भी रिचार्ज होता है।
1: The President said a well-structured framework of policies and actions is essential to effectively address such a complex challenge and must ensure the active participation of not only governments and legal experts but also the communities most affected by climate change. Indian Air Force Chief Air Chief Marshal AP Singh and Japan Air Self-Defense Force Chief of Staff General Takehiro Morita flew together in India's indigenous light combat aircraft Tejas during a formation sortie in Jodhpur yesterday. The flight by the air chiefs of both nations comes as the Indian Air Force and Japan Air Self-Defense Force are conducting the joint air exercise Veer Garjan 2026 in Jodhpur. Talking to media in Jodhpur after the sortie, Air Chief Marshal Singh said first ever operation of Japanese fighter jet on Indian soil marks major milestone in bilateral defense ties. Ukraine launched over 1,000 drones at Russia overnight, including hundreds targeting Moscow. Mayor of Moscow Sergei Sobyanin called it the largest ever drone attack on the capital, reporting damage to an oil refinery and a residential building. Mr. Sobyanin said 2 people were killed and 20 injured in the attack across wider Moscow region. Russia's defense ministry said its forces shot down 1,100 Ukrainian drones across the country. Ukrainian President Volodymyr Zelensky said Kyiv used a range of missiles and drones in the attack, including Ukraine's domestically made Flamingo and Pelican missiles, to hit oil and logistics facilities. Central Board of Secondary Education

0: CBSE organized an interactive talkathon on the theme Nasha Mukt Yuva for Vikasit Bharat yesterday on the call of Prime Minister Narendra Modi for a drug-free India. The CBSE said the 45-minute program brought together experts, educators and students to discuss issues related to substance abuse, prevention and the importance of making healthy and responsible choices. The initiative aimed to directly engage students through social media platforms. CBSE invited questions from students and they raised questions concerning mental health, peer pressure and steps for de-addiction. India made a strong start at the Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan, winning two silver medals in shooting on the opening day yesterday. Trio of Elavanil Valarivan, Vidarsa Vinod and Sonam Maskar won silver in the women's 10M air rifle team event, while Elavanil added another silver in the individual event. The President and Prime Minister have congratulated the athletes on the feat. Suchika Tarial created history, becoming the country's first athlete to assure an Asian Games medal in mixed martial arts after reaching the women's traditional 60kg semi-finals. In cricket, Indian women's team stormed into the final after 114-run win over Bangladesh. They will take on Sri Lanka in the gold medal match tomorrow. Indian women's badminton team advanced to quarterfinal with a 3-0 win over Kazakhstan. The men's and women's hockey teams also began campaign with big wins. Men's team defeated Indonesia 13-1 in their Pool A match, while women's team beat Uzbekistan 19-0 in their Pool B opener. And that is the end of this news bulletin.
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
2: नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि हमारा ये कार्यक्रम मन की बात का विस्तार है, और इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में उल्लेख किया एक बेहद रोचक वेबसाइट का, साथ ही जो वेबसाइट के संस्थापक हैं उनसे बात भी की। आपको याद आया, वेबसाइट थी www.bharatrajya.com और इसके संस्थापक श्री कृष्णा शेषाद्री जी, इनसे प्रधानमंत्री जी ने बात भी की थी। तो आज हम भी कृष्णा शेषाद्री जी से अपनी एक बातचीत के माध्यम से आपको इस वेबसाइट के बारे में बेहद रोचक जानकारी दे रहे हैं, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। लेकिन आइए सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं मन की बात का वो अंश जिसमें प्रधानमंत्री जी ने कृष्णा शेषाद्री जी से बात की थी।
3: साथियों, कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर किसी ने लिखा था, आषाढ़ी एकादशी के पावन अवसर पर मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इतिहास को रोचक बनाने के अपने प्रयास का शुभारंभ कर रहा हूं। उन्होंने आगे बताया, यह आइडिया बहुत ही सिंपल है। आप इस वेबसाइट पर जाएं और कोई भी एक वर्ष चुन लें। यहां आपको आसानी से पता चलेगा कि उस समय भारत के किस हिस्से पर किसका शासन था। मुझे भी यह काफी दिलचस्प लगा। मैंने सोचा कि इसके बारे में और अधिक जानकारी ली जाए। मुझे पता चला कि यह काम मुंबई में रहने वाले श्रीमान कृष्णा शेषाद्री जी ने किया है। मजे की बात यह है कि कृष्णा जी ने वेबसाइट का नाम भी बहुत सिंपल रखा है, www.bharatrajya.com। उन्होंने जो प्रयास किया है उसकी जानकारी आप लोगों तक भी जरूर पहुंचनी चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न सीधे श्री कृष्णा जी से ही बात की जाए। साथियों, कृष्णा जी हमारे साथ फोन पर जुड़ रहे हैं। कृष्णा जी नमस्ते।
4: नमस्ते सर, नमस्ते।
3: भाई, मुझे पता चला है न आप टेक की दुनिया से हो न आप हिस्ट्री टीचर हो, फिर भी आपने टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हिस्ट्री की साइट बना डाली, तो मुझे बहुत उत्सुकता है ये सब कैसे हुआ।
4: सर धन्यवाद, सर आपसे बात करके मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो सर मेरे बारे में अगर मैं थोड़ा बताऊं तो सर मैं एक इंजीनियर था, फिर मैंने MBA किया, फिर मैं मार्केटिंग फील्ड में चला गया,

0: लेकिन ये सब जब भी करता था तब भी मेरे को बचपन से इतिहास में हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था. तो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू समथिंग ऑन हिस्ट्री, हाउ टू मेक इट इंटरेस्टिंग. एंड मेरे को ये भी लगता था कि हम जैसे हिस्ट्री सिखाते हैं उसमें हम बहुत इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, उसमें हम बहुत बदलाव लेके आ सकते हैं, हिस्ट्री को एक कहानी बना के लोगों तक पहुंचा सकते हैं.
1: कृष्णा जी, भारतीय इतिहास का ऐसा कौन सा पहलू है जिसके बारे में आपको लगा कि इसका जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को होनी चाहिए?
0: सर, अगर आप भारतीय इतिहास जैसे हमारे स्कूलों या कॉलेजों में सिखाया जाता है, जैसे आप देखते हो, तो वो एक कोई एक एम्पायर या कोई एक किंगडम उसके दृष्टिकोण से, उसके नजरिए से सिखाया जाता है, और वो एम्पायर्स को डिस्प्रोपोर्शनेट अटेंशन भी मिलता है. इस चक्कर में बाकी के बहुत सारे जो हमारे साम्राज्य थे, जो महान साम्राज्य थे, जैसे चोलास थे, पल्लवास थे, करकोटा डायनेस्टी था कश्मीर में, अहोम्स थे, जिन्होंने कम से कम 600 साल आसाम में अपनी संस्कृति और अपने वैल्यू सिस्टम को बरकरार रखा, ये सब के बारे में हम नहीं जानते. तो मैंने सोचा कि ऐसा कोई एक साइट बनाए जो ऐसे महान साम्राज्य को भी लोगों से इनको इंट्रोड्यूस किया जाए.
1: कृष्णा जी, आप इतनी मेहनत करते हैं, मैं ऐसे ही आपको हाइपोथेटिकल सवाल पूछता हूँ. अगर आपको इंडियन हिस्ट्री के किसी भी तीन लोगों से बातचीत का अवसर मिले तो आप किन से बात करना चाहेंगे और क्यों?
0: हाँ सर, तो पहले मैं बात करूंगा राजराज चोला या राजेंद्र चोला सर से, जो चोला साम्राज्य के सबसे मोस्ट पावरफुल या सबसे इम्पोर्टेंट राजाओं में से थे. तो मैं उनसे ये जानना चाहूंगा कि पहले उनको ये विजन कैसे आया, जैसे उन्होंने बृहदीश्वर टेम्पल या गंगाईकोंडा चोलापुरम के जो बड़े बड़े मंदिर हैं, शिव जी के मंदिर हैं, वो एग्जीक्यूट करने के लिए उनको वो विजन कहाँ से आया, वो प्लानिंग कैसे की, उनको वो थॉट कैसे आया कि हम ऐसा कुछ बना के जाए जो अगले 1000 या 2000 साल तक दूसरे लोगों को प्रेरित कर सके. तो वो मुझे उनसे जानना है. और दूसरी जो पर्सनालिटी है, ये एक्चुअली मेरे हिसाब से इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत अंडररेटेड पर्सनालिटी है सर, उनका नाम है हेमू. तो हम उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंडियन इतिहास में 2 या 3 लाइन पढ़ते हैं. हमको ये नहीं पता है कि वो जो हेमू जो थे सर, वो एक कॉमन मैन थे, एक साधारण इंसान थे, वो एक व्यापारी थे. उधर से उन्होंने एक एम्पायर खड़ा किया, और वो नॉट ओनली वो एक एम्पायर बिल्डर थे, वो एक मिलिट्री थिंकर भी थे, मिलिट्री जीनियस थे, जिन्होंने अपने करियर में 23 लड़ाइयां लड़ी, उसमें से उन्होंने 22 लड़ाइयां जीती. तो उनका थॉट प्रोसेस कैसा था और कैसे वो एक आम आदमी से एक इतने बड़े राजा बने, वो उनका वो जर्नी मैं जानने की बहुत दिलचस्पी रखता हूँ सर. और तीसरी जो है, ये दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी, शी इज अ वुमन सर, त्रिभुवना महादेवी. तो ये जो है एक उड़ीसा में एक किंगडम है जिसका नाम था भौमाकारा डायनेस्टी. तो इनकी भी कहानी बहुत दिलचस्प है. इन्होंने जब 850 के आसपास जो साल में उनके जो नेबर पाला एम्पायर ने इनके एम्पायर पे धावा बोल दिया था सर, और इनके राजा जो इनके हस्बैंड थे वो उस लड़ाई में शहीद हो गए, और इसके वजह से वो एम्पायर बहुत छोटा हो गया, और उसके जो सरदार थे, उसके जो लीडर्स थे, वो एम्पायर छोड़ के जाने लग गए थे. तो ये जो त्रिभुवन महादेवी जो लेडी थी, इन्होंने वो सरकार संभाली, एंड शी बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. और उन्होंने सरकार को नॉट ओनली स्टेबिलाईज किया, बट इतना उसको पावरफुल बना दिया कि वो अगले 100 साल तक कलिंगा और वो एरिया में राज करते रहे. तो दीज आर 3 इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज व्हिच हुम आई वुड लाइक टू मीट इन हिस्ट्री सर.
2: हम जानते हैं कि ये बातचीत आपको बेहद रोचक लग रही है, लेकिन आपको हम ज्यादा तो ऑडियो क्लिप नहीं सुनवा पाएंगे. हाँ, कृष्णा शेषाद्री जी से हम बहुत सारे सवाल जरूर करेंगे ताकि इस वेबसाइट के बारे में, उनके इस प्रयास के बारे में हम और ज्यादा जान सके. तो सबसे पहले कार्यक्रम में स्वागत करते हैं कृष्णा शेषाद्री जी का. कृष्णा जी, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है.
3: धन्यवाद. धन्यवाद.
2: आप ये बताएं कि प्रधानमंत्री जी ने आपकी वेबसाइट का उल्लेख मन की बात में किया और आपसे संवाद भी हुआ उनका, कैसा लगा आपको, आपका अनुभव कैसा रहा?
3: फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, एंड ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आपने मुझे आपके स्टूडियो पे बुलाया. और जैसे बात आती है मन की बात की, तो पहले तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी से बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो वेबसाइट मैंने बनाया था एकदम मैंने एक हॉबी की तरह से बनाया था, मेरे को इससे कोई अपेक्षा नहीं थी, मुझे पसंद था तो मैंने बनाया. तो जब मुझे पता चला कि इस वेबसाइट को प्रधानमंत्री जी ने ना ही देखा है बट उसे यूज भी किया है, उसके एक्सपीरियंस किया है, उसके बहुत सारे फीचरों के साथ खेला है, तो इट वॉज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी, नॉट ओनली फॉर मी बट फॉर माई फैमिली एज वेल. द मोस्ट इमोशनल मोमेंट फॉर मी वॉज वेन माई मदर क्राइड आफ्टर सीइंग द ब्रॉडकास्ट. इट वॉज

0: टीयर्स ऑफ जॉय दैट शी हैड. मेरे को इतनी अच्छी फीलिंग आ गई थी कि हमारे सबका एक लक्ष्य होता है, पूरी दुनिया चाहे ना चाहे हमें अपने माँ पिताजी, वी हैव टू मेक देम प्राउड. और वो मैंने इसके थ्रू किया, दैट वॉज माई बिगेस्ट सेटिस्फेक्शन. और मेरी जो वाइफ है, शी इज अ नेशनल लेवल राइफल शूटर, सो शी नोज हाउ हार्ड इट इज टू अचीव समथिंग एट दैट लेवल, एंड सो शी वॉज ऑल्सो वेरी वेरी हैप्पी. और रही बात बाकी दोस्तों या प्रतिक्रियाओं की, मेरे बहुत सारे जो ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप थे जिसमें कोई मैसेज नहीं भेजता था, वो जाग उठे थे मन की बात के बाद. बहुत सारे लोगों ने उसमें कॉन्ग्रेचुलेट किया, बहुत सारे लोगों ने अपनी पॉजिटिव ओपिनियन या प्रतिक्रिया दी, वेबसाइट के बारे में तारीफ की, विच आई फेल्ट वेरी हैप्पी. एंड द बेस्ट पार्ट वॉज अ लॉट ऑफ पीपल इन माई पेरेंट्स, जो हमारे मम्मी डैडी अपार्टमेंट में रहते हैं, बहुत सारे लोगों ने मेरे मम्मी डैडी को, अच्छा वो आपका बेटा है, वो आपका बेटा है, जो वो एक फीलिंग मेरे मम्मी डैडी के, आज भी मेरी मम्मी डैडी के आंखों में वो जो प्राइड है, मैं आपको सच बताऊं तो अभी भी, आज भी मैं थोड़ा विश्वास नहीं हो रहा है कि, मेरे हिसाब से आई थिंक 2 हफ्ता हो गया है, लेकिन अभी भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि एक्चुअली ये मेरी वेबसाइट का जिक्र प्रधानमंत्री जी ने किया.
1: अच्छा ये बताएं कि वेबसाइट शुरू करने का विचार आपको कैसे आया, कब सोचा आपने कि इस तरह की एक वेबसाइट मुझे शुरू करनी है?
0: एक्चुअली आपने मन की बात में भी सुना होगा, तो मैं हिस्टोरियन नहीं हूँ, तो मैं एक इंजीनियर हूँ, फिर मैं एक MBA हूँ, मैं अभी मार्केटिंग में काम करता हूँ. अभी जो मैं कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, जो मेरे प्रोफेशनल लाइफ है और इतिहास में, उसका कोई संबंध नहीं है. लेकिन बचपन से मुझे इतिहास में एक विशेष तरह की दिलचस्पी है, आई हैड अ वेरी गुड इंटरेस्ट इन हिस्ट्री. तो एक्चुअली उसका इंस्पिरेशन जाता है मेरी माँ को. वी आर ऑल तमिलियंस. मेरी माँ, एक तमिल में एक मैगजीन आती थी उस टाइम पे, वीकली मैगजीन होती थी, उसका नाम कल्की था. तो उन्होंने एक जो साउथ इंडियन चोलास के ऊपर एक एपिक लिखी थी, उसका नाम था पोन्नियिन सेल्वन. 1-2 साल पहले उसकी पिक्चर भी बनी थी. तो उस मैगजीन में हर हफ्ते वीकली स्निपेट्स के हिसाब से छपती थी, और मेरी माँ हर हफ्ते वो मैगजीन लेके आती थी और मुझे पढ़ के सुनाती थी. और उन्होंने इतने अच्छे से उस टाइम का, उन चोलास का, उन मंदिरों का और उस लैंडस्केप का इतने अच्छे तरह से वर्णन किया था कि मेरे तभी से मेरी हिस्ट्री में इंटरेस्ट शुरू हो गया था कि ये हम और किस तरह से देखें और किस तरह से जाने. और इस तरह से मैंने इतिहास के और सारे, कई सारे किताबें पढ़ना शुरू की, और वहीं से मेरा इंटरेस्ट हिस्ट्री में था. और रही बात भारत राज्य के इंस्पिरेशन की, तो मेरे जब भी मैं हिस्ट्री क्लास में, स्कूल में पढ़ता था या कोई मुझे हिस्ट्री सिखाता था, हमारे देश में जिस तरह से हिस्ट्री सिखाई जाती है, उससे आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी विथ इट. क्योंकि हम क्या करते हैं, एक इतिहास जैसे एक सब्जेक्ट को, या एक डेट, या कोई किंगडम, या कोई किंग, उस लेवल पे लेके आ जाते हैं. तो उसके वजह से क्या होता है कि इतिहास जो है एकदम ड्राई और बोरिंग सब्जेक्ट बन जाता है. जैसे आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि जहांगीर ने क्या किया, उससे मेरा क्या लेना देना. तो मतलब हिस्ट्री एकदम बोरिंग सब्जेक्ट बन जाता है, और हम कभी भी हिस्ट्री को पूरे भारत के दृष्टिकोण से नहीं देखते. लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बताऊं कि हमको ये नहीं पता कि जब मुगल नॉर्थ में थे, जब बाबर आए थे देश में 1526 में, तब साउथ में क्या हो रहा था. जब वास्को डगामा आए थे 1400s के एंड में, तब नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा था. तो हमें एक पूरा इंडिया का व्यू हिस्ट्री में कभी नहीं मिलता. तो ये जो था, ये आइडिया मेरे मन में 15 साल से इट वॉज ट्रबलिंग मी, मेरे को चुभ रहा था. लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जब वो आइडिया आया, तो मेरे पास वो ना टेक्निकल एक्सपर्टीज थी, ना नॉलेज थी उस आइडिया को एक वर्किंग वेबसाइट बनाने में. लेकिन जब ये AI रेवोल्यूशन आया 3 साल, जब AI ने हमें कोडिंग और प्रोग्राम बनाने की शक्ति दी, तो मैंने सोचा क्यों ना उसे इस्तेमाल करके मेरे 15 साल के ख्वाब को सच बनाया जाए.
1: तो कृष्णा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ऐतिहासिक लेखों, दुर्लभ तस्वीरों और नक्शों को जब हम आर्काइव करते हैं, फिर उन्हें जब सर्च करना चाहते हैं, तो उसके लिए डेटाबेस को कैसे आपने डिजाइन किया?
0: अगर आप भारत राज्य के वेबसाइट देखेंगे, तो इसका स्ट्रेंथ ही इसकी सिंप्लिसिटी है. हम ना कुछ कॉम्प्लिकेटेड डेटाबेस या ना कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीजें हम यूज करते हैं. हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पहलू, जो वेबसाइट का जो हीरो है, वो मैप है. आप देखोगे तो बहुत सारे इंटरनेट में ऐसे ओपन सोर्स मैप मिलते हैं जहां पे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक आपको बराबर मैपिंग मिल जाती है. तो हमने क्या किया कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो मैप है, उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल के मैप को लिया, और हमने एक सब कॉन्टिनेंट व्यू लिया था. भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश, इस 5 कंट्री के मुझे डिस्ट्रिक्ट लेवल मैप्स मिले. और फिर मैंने क्या किया कि AI के थ्रू मैंने ऐसे सोर्सेस या ऐसे बुक्स चूज किए जो इतिहास में एक स्टैंडर्ड माना जाता है. जैसे जादूनाथ सरकार जी हैं, और ऐसे बहुत सारे किताबें हैं जो हमने

0: किंगडम के एक हायर वर्धन राव करके एक है, शायद मैं नाम में थोड़ी प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक कर सकता हूँ, मुझसे माफी चाहता हूँ। तो ऐसे मैंने कम से कम एटलीस्ट 25 to 30 बुक्स को सोर्सेस के नाम पे डिसाइड किया, और फिर मैंने क्या किया कि एआई को ये सारे बुक्स में सर्च करने बोला कि एक ईयर में उस डिस्ट्रिक्ट में कौन राज कर रहा था, और इस तरह से मैंने एक पूरी मैपिंग बनाई। अभी जो आप लेते जाओगे तो 300 सीई से आपके पास डेटा है, तो 300 सीई टू 2026 में हर एक साल में हर एक डिस्ट्रिक्ट में किसने राज किया का मैंने एक मैपिंग बनाया, और वो मैपिंग से आपको भारत राज्य आज दिखता है।
1: आपसे रोचक बातचीत जारी रहेगी यहाँ इसी मोड़ पर। मैं आपसे आपकी पसंद का एक गाना पूछना चाहूंगी जो हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे।
0: हाँ, ये जो गीत है ये मेरी वाइफ और मेरे पिताजी और मेरी मम्मी, ये तीनों का वन ऑफ मोर मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स। डेफिनेटली ये गाना सुनिए, ये गाना है अमर प्रेम से कुछ तो लोग कहेंगे।
1: ठीक है, तो लीजिए आपकी पसंद का ये गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं।

0: गाने के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। मन की बात का विस्तार लिए ये कार्यक्रम आज आप तक लाया है एक वेबसाइट के बारे में रोचक जानकारी। हमारे विशेषज्ञ हैं इस कार्यक्रम में कृष्णा शेषाद्री जी, जो कि www.bharatrajya.com वेबसाइट के संस्थापक हैं और अपने इस सपने को साकार कर चुके हैं वेबसाइट के माध्यम से। हम इसी के बारे में आज जान रहे हैं शेषाद्री जी से। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि जो पुरानी हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें होती हैं या दस्तावेज होते हैं, जब हम वो चेक करते हैं तो वेबसाइट की जो स्पीड है बहुत धीमी हो जाती है उनकी वजह से। तो आपने ऑप्टिमाइजेशन की तकनीक इस्तेमाल की है ताकि ठीक से ये वेबसाइट चल सके?
1: तो हमारे वेबसाइट में मैंने ऐसे कोई हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें या ये कोई नहीं डाला है, क्योंकि मेरा ये मैप बेस्ड वेबसाइट है, तो इसमें हम तस्वीरें नहीं डाल रहे हैं। क्योंकि मुझे पता था कि अगर हम तस्वीरें डालते हैं तो हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, कि भारत राज्य का मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में किस किस भाग में कौन राज कर रहा था। तो मेरे को उस ऑब्जेक्टिव से डाइवर्ट नहीं होना था, तो इसके लिए पिक्चर्स हो या ऐसे हाई रेजोल्यूशन फोटो हो जिससे यूजर का ध्यान या यूजर का क्या बोलते हैं उसका एक्सपीरियंस हर्ट हो सकता है या डिमिनिश हो सकता है, वो कोई भी फीचर मैंने नहीं डाले हैं। और रही बात उससे डेटा निकालने में, हाँ, बहुत सारे किताबें ऐसी थी जो एक फोटो के हिसाब से थी, तो हमने जब एरिया के लिए वो डेटा सेट लोड करने से पहले मैंने उसको OCR कराया, उसको एक टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट किया और उस कन्वर्जन से मैंने डेटा निकाला। लेकिन अगर आप देखने जाओगे वेबसाइट में कोई ऐसा कोई फोटो नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर हम वो फोटो डालते हैं तो यूजर का ध्यान बट जाता है और हमारे वेबसाइट का कोर ऑब्जेक्टिव है वो शायद कहीं मीट नहीं हो पाता।
0: आपकी वेबसाइट में लोग सामग्री जोड़ सकते हैं और इस तरह से आपके प्रयास में वो भी जुड़ते हैं। मैं यहाँ जानना चाहूंगी कि आपने सिक्योरिटी के लिए भी क्या कुछ फीचर्स ऐड किए हैं कि जो हमारे सही तथ्य हैं उनसे छेड़छाड़ ना हो।
1: हमने किसी को भी एडिट राइट नहीं दिए हैं, तो एडिट राइट्स अभी फिलहाल सिर्फ मेरे पास ही हैं। तो कोई भी सुझाव आते हैं, कोई भी हमको करेक्शंस आते हैं, कोई भी रिकमेंडेशंस आते हैं, तो मैं अपने सोर्सेस, जो हमने बुक्स की जो सोर्सेस गैदर की हैं, जो आपको हमारे वेबसाइट के सोर्सेस के टैब में भी मिल जाएंगी, उसके अगेंस्ट मैं मेजर करता हूं। अगर वो सोर्स में होता है तो ही मैं उसको इनकॉर्पोरेट करता हूं। पूरा वेबसाइट का कंटेंट है, मैं अकेले अपने कंप्यूटर से उसको अपलोड करता हूं। ये कहीं इंटरनेट में या कहीं ऐसे जगह नहीं है जहां पे आके लोग उसे हैक कर सके। तो इसके लिए जितना मैंने ये वेबसाइट को सिंपल बनाया है। और रही बात सिक्योरिटी या चोरी करने की डेटा की, तो मैंने ये जो वेबसाइट है ये ओपन सोर्स कर दिया है, फ्री कर दिया है, तो अगर कोई भी जाके मेरे वेबसाइट से वो मेरा जो भी सारा डेटा है वो डाउनलोड करके अपना खुद का वेबसाइट भी बना सकता है। क्योंकि मैंने जब ये वेबसाइट बनाया तो मुझे ये लगा था कि हमको कभी अपना जो नॉलेज है, अपनी जो भारत की इतनी वास्ट नॉलेज का जो हमारी रिपोजिटरी है, वो हमेशा सबको ओपन होनी चाहिए। इट हैज टू बी एक्सेसिबल फॉर एवरीवन। और हम वो नहीं कर सकते अगर हमने उसमें कुछ या पे वॉल लगा दिया या उसको पैसे लेके उसको एक्सेस दिया, तो ये जो वेबसाइट का ऑब्जेक्टिव है टू मेक हिस्ट्री फंड टू एवरीवन, वो फेल हो जाएगा। इसके लिए मुझे सिक्योरिटी की कोई डर नहीं। अगर कोई तोड़ के डेटा ले भी जाता तो वो अच्छा ही है, क्योंकि मैं उसे बस विश करूंगा कि इससे भी अच्छा और वो वेबसाइट बना दे। तो अगर आप जब भारत राज्य के वेबसाइट में जाएंगे तो वहां पे एक करेक्शंस करके एक टैब होगा, तो अगर वो आप करेक्शंस के टैब पे क्लिक करेंगे तो आपको दो टाइप के सजेशंस आप हमें दे सकते हो। एक है कि अगर हमें कुछ फीचर्स चाहिए, जैसे हम बहुत लोग ने आज मन की बात प्रोग्राम के बाद बहुत लोगों ने ऐसा सुझाव दिया कि ये वेबसाइट को आप रीजनल लैंग्वेज में अवेलेबल करो, तो वो टाइप के फीडबैक भी हम आप दे सकते हो। और अगर दूसरी टाइप का फीडबैक है, अगर आपको लगता है कि इस प्रदेश में जो हमने मार्क किया है, ये जो रूलर है वो गलत है, तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल तक के करेक्शंस भी आप हमें पहुंचा सकते हो। इट इज अ वेरी इजी टू यूज, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड टैब, और आप उसमें जैसे ही सबमिट करेक्शन सबमिट करोगे वो हमको मेल में आता है, हम उसे रीड करते हैं। अगर वो सोर्सेस के साथ वेरीफाई होता है तो हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। क्योंकि करेक्शंस की इम्पोर्टेंट रीजन ये है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमने 1000 डिस्ट्रिक्ट को कम से कम 1500 साल पे मैप किया है। इसका मतलब है हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको 1000 x 1000 टाइम्स एंट्री आपको मिलेगी, तो और हमें

पता है कि कहीं ना कहीं हम गलतियां करेंगे और इस गलती को हमको सबको मिलकर सुधारना है, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री ऐसी चीज है जो एक आदमी या एक वेबसाइट की बस की बात नहीं है, ये हम सबका एक वेबसाइट है और हम सबको मिला के सामूहिक योगदान से ही हम इसके एंट्री को और एक्यूरेट बना सकते।

गाने के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। मन की बात का विस्तार लिए ये कार्यक्रम आज आप तक लाया है एक वेबसाइट के बारे में रोचक जानकारी। हमारे विशेषज्ञ हैं इस कार्यक्रम में कृष्णा शेषाद्री जी, जो कि www.bharatrajya.com वेबसाइट के

0: संस्थापक हैं और अपने इस सपने को साकार कर चुके हैं वेबसाइट के माध्यम से, हम इसी के बारे में आज जान रहे हैं शेषाद्री जी से। कृष्णा जी, ये बताइए कि इस प्रोजेक्ट के दौरान आपकी जो सबसे बड़ी सीख थी वो क्या रही और शुरुआती दौर में कैसी चुनौतियां थी?
1: बिगेस्ट लेसन दैट आई हैव लर्न्ड इन दिस एक्सपीरियंस इज बिल्डिंग थिंग्स, कि अगर आप कुछ चीज बिल्ड करते हो और अगर एक चीज क्रिएट करते हो, उसमें जो आपको मजा आता है वो और किसी चीज में नहीं आता। तो जब आप एक चीज आप देखते हो, एक वेबसाइट जो नहीं है, देन इट स्लोली कम्स टुगेदर एंड देन फाइनली एक विजुअली वो आपको दिखता है, जो आपको जॉय और वो एंजॉयमेंट आता है, इट आई डोंट थिंक देर आर वेरी फ्यू एक्सपीरियंसेस इन द वर्ल्ड विच आई थिंक प्रोबेबली मैच इट।
0: मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, हमारे जो दृष्टि बाधित साथी होते हैं, हम देखते हैं अक्सर कि वो पठन पाठन में बेहद रुचि लेते हैं और साथ ही बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं। ऐसे में वो नए नए माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं अपने ज्ञानवर्धन के लिए, नई तकनीक इस्तेमाल करते हैं। तो आपकी वेबसाइट पर क्या स्क्रीन रीडर जैसी सुविधा है ताकि दृष्टि बाधित साथी जो हैं वो भी आपकी वेबसाइट से जुड़ सके?
1: ये एक्चुअली आपने मुझे बहुत दुविधा में डाल दिया है, क्योंकि ये जो है भारत राज्य जो है एक विजुअल मीडियम का वेबसाइट है। इसमें हम विजुअली इंडिया के मैप को दिखाते हैं, इसको हम टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कन्वर्ट इनटू टेक्स्ट, और अगर हम टेक्स्ट में कन्वर्ट कर भी दें तो एज अ स्क्रीन रीडर हो या जो तकनीक है वो वेबसाइट उनके लिए ऑप्टिमम एक्सपीरियंस नहीं बनेगा। लेकिन हमने थोड़े कुछ फीचर्स डाले हैं, तो अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस है या किसी को और कुछ है तो वो हमने कलर ब्लाइंड मोड इम्प्लीमेंट किया है ताकि वो भी ये वेबसाइट को एंजॉय कर सके।
0: जब आपने वेबसाइट डेवलप की तो उस दौरान बहुत सारे इतिहासकारों, शोधकर्ताओं या फिर कंटेंट राइटर्स के साथ आपका मिलना जुलना हुआ होगा, बातचीत हुई होगी, तो ये बताएं कि आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स कैसे उन्हें समझाई और कहीं इसमें तकनीक तो कोई बाधा नहीं बनी?
1: एक बात मैं अभी सच्चाई में बताता हूँ कि मैंने ये कंटेंट रिसर्च है, ये जो कंपाइलेशन है, ये मैंने अकेले में किया है। लेकिन मैं कभी जिंदगी में ये नहीं भूलूंगा कि मैंने अकेले में किया है, क्योंकि आई एम स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स। द एंटायर कंटेंट, द एंटायर मैपिंग, जो भी आप देख रहे हो भारत राज्य में डिस्ट्रिक्ट में किसने काम किया, ये मेरे से बहुत ही बड़े हस्तियों ने, बहुत ही बड़े हिस्टोरियंस ने इसके ऊपर अपनी पूरी जिंदगियां डेडिकेट की हैं, और उसमें से ऐसे किताबें लिखी हैं जिसमें सब कुछ क्लियर है। जैसे हमारे जो सोर्सेस हैं, सबसे बड़े सोर्स जो है वो आरसी मजुमदार जी हैं, जिनके ऑलमोस्ट 10 से 11 वॉल्यूम हैं, जो इंडिया के वैदिक एज से लेके इंडिपेंडेंस स्ट्रगल तक सारी चीजें कवर करती हैं। फिर हमने नीलकंठ शास्त्री, जिन्होंने साउथ इंडिया की हिस्ट्री के ऊपर बहुत बड़ी अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं। जादूनाथ सरकार जी, जिसने फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर, मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया जैसे इतने अच्छी किताबें लिखी हैं इंडियन हिस्ट्री के ऊपर कि इट इज अमेजिंग द डिटेलिंग दैट दे हैव गॉन थ्रू। और बहुत सारे और भी ऑथर्स हैं, जैसे एक ऑथर थे जिसने सिर्फ राजपूतों पे, राजस्थान पे 5 वॉल्यूम लिखे हैं। एक एक छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट तक उन्होंने कवर किया है कि कब क्या हुआ, कौन सा युद्ध हुआ, युद्ध में कौन सी टेरिटरी इधर से उधर गई। तो मैंने ऐसा नहीं समझा है कि मैंने अकेले में काम किया है। आई हैव ओनली रेफरेंस्ड एंड आई हैव ओनली यूज्ड द वर्क्स ऑफ ग्रेट पर्सनैलिटीज लाइक मजुमदार, जादूनाथ सरकार जी, नीलकंठ शास्त्री एंड ऐसा और एंड सो मेनी मोर ऑथर्स, और बिकॉज ऑफ हुम दिस वेबसाइट इज अलाइव टूडे। मैंने ऐसा तो नहीं कि मेरे पास कोई टीम ऑफ हिस्टोरियंस है, बट मेरे पास इन जैसे महान दिग्गज हिस्टोरियंस का आशीर्वाद था, जिसकी वजह से आज ये भारत राज्य जो वेबसाइट है वो लाइव है।
0: जब प्रधानमंत्री जी से आपकी बात हो रही थी उस वक्त आपने उनसे कहा था कि हम इतिहास को रोचक तरीके से पढ़ा सकते हैं, तो इस बारे में आपके और क्या विचार हैं? एक प्रयास तो आप कर चुके हैं, आपको क्या लगता है हमें अपने बच्चों को अपना इतिहास, अपना गर्व कैसे बताना चाहिए?
1: जो आज हम इतिहास स्कूलों में पढ़ाते हैं या बहुत सारे जो नौजवान हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, तो उनको ये एक सोर्स ऑफ विजुअल हिस्ट्री है, और अगर ये देखेंगे तो और हिस्ट्री या इतिहास को और अच्छे से वो याद रख सकते हैं। हम वो ही एंगल से इस वेबसाइट को नियर फ्यूचर में हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा हमारे वेबसाइट में एक फीचर है ट्रम्प कार्ड का, तो हम सब जब बच्चे थे तब हमने WWE के या क्रिकेटर्स के ट्रम्प कार्ड के साथ बहुत एंजॉय किया है, और आज भी हमको बहुत सारे जो डेटा है वो ट्रम्प कार्ड के वजह से याद है। और हमने ये वेबसाइट में इतिहास के ट्रम्प कार्ड्स बनाए हैं, हर एक एम्पायर के, हर एक किंगडम के हमने ट्रम्प कार्ड्स बनाए हैं। तो अगर वो ट्रम्प कार्ड बच्चे रेफर करें या बच्चे यूज करें, तो उनको इतिहास मजेदार ही नहीं रहेगा।

0: याद भी रहेगा। मेरा उद्देश्य यह है कि हम हिस्ट्री को एक स्टोरी बनाएं, और अगर हम स्टोरी की तरह सब बच्चों को ये इतिहास पढ़ाएं तो वो इतिहास उन्हें याद तो रहेगा ही, बट वो उसे वैल्यू भी करेंगे।
1: हो सकता है कि हमारे न्यू डेवलपर्स इस समय आपको सुन रहे हो, हमारे ऐसे साथी, हमारे ऐसे श्रोता जो अपनी कोई वेबसाइट शुरू करना चाहते हैं या किसी वेबसाइट में सहयोग करना चाहते हैं, तो आप जरा उनके लिए बताएं क्या सलाह आप देंगे, उन्हें क्या क्या फीचर्स अपनाने चाहिए और कैसे तैयारी करें।
0: इफ एनीवन वांट्स टू बिल्ड एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, छोटी सी छोटी वेबसाइट हो सकती है या कुछ बड़ा भी प्रोजेक्ट हो सकता है, माय ओनली रिक्वेस्ट टू देम इज आप उसके अंदर जाइए, बिल्ड करना चालू कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे आप बिल्ड करोगे वो आपके अंदर अच्छा एहसास होगा, यू विल फील बेटर, एंड देन यू विल नॉट ओनली बिकम अ बेटर बिल्डर बट यू विल ऑल्सो बिकम अ बेटर ह्यूमन। ये जरूर बोलूंगा कि ये जो प्रधानमंत्री जी का जो मन की बात इनिशिएटिव है, इट इज अ वेरी इंस्पायरिंग एंड अ मोटिवेटिंग इनिशिएटिव। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मतलब कोई जरूरत नहीं थी ये वेबसाइट के बारे में जाके मुझसे बात करने, बट उन्होंने इसमें इंटरेस्ट लिया, मेरे से बात की, वो वेबसाइट में, इससे बड़ा मोटिवेशन एक फॉरगेट टेक पर्सन किसी को भी नहीं हो सकता। और ये मन की बात जब हो गई तो इसमें मुझे एक रिन्यूड कॉन्फिडेंस आया, एक रिन्यूड एनर्जी आई है, जिसमें से मैं इस भारत राज्य को और भी ज्यादा बेहतर बनाऊं, और भी ज्यादा पीछे टाइम में जाऊं, जितना भारत का इतिहास है उसे कवर कर सकूं, और इसे एक ऐसा वेबसाइट बनाऊं जो आगे इतिहास के लिए सबसे ज्यादा यूज्ड वेबसाइट हो। तो ये मोटिवेशन मन की बात के साथ आया है, और सबसे मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने मेहनत की है तो आपको उसका रिकॉग्निशन मिलेगा। ये मुझे मन की बात की ये प्रोग्राम के थ्रू, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट लेसन्स आई हैव लर्नड।
1: आपसे रोचक बातचीत जारी रहेगी यहाँ इसी मोड़ पर। मैं आपसे आपकी पसंद का एक गाना पूछना चाहूंगी जो हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे।
0: तो ये गाना मेरे जो बॉस हैं सुरेश कुमार सर, आनंद सर और राजेश सर को डेडिकेट करना चाहता हूँ। ये उनका एक वन ऑफ देयर फेवरेट सॉन्ग्स, दिस इज फ्रॉम आई थिंक मूवी हम दोनों। द सॉन्ग इज मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया।
1: ठीक है, तो लीजिए आपकी पसंद का ये गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं।
2: Even now when I see myself on the screen, I rarely gaga about myself. I'm a very great critic of myself. I may not say so to the world, but because I'm a very healthy sign, because you are on constant process of improving and progress. And that's a very, very great sign for any worker in any field, which is creative.

0: गाने के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। मन की बात का विस्तार लिए ये कार्यक्रम आज आप तक लाया है एक वेबसाइट के बारे में रोचक जानकारी। हमारे विशेषज्ञ हैं इस कार्यक्रम में कृष्णा शेषाद्री जी, जो कि www.bharatrajya.com वेबसाइट के संस्थापक हैं और अपने इस सपने को साकार कर चुके हैं वेबसाइट के माध्यम से। हम इसी के बारे में आज जान रहे हैं शेषाद्री जी से। यहाँ आपसे एक बात और पूछना चाहूंगी कृष्णा जी, आपकी वेबसाइट में बहुत सारे ऐतिहासिक पात्र हैं जो हमें प्रेरित करते हैं, लेकिन ये बताइए कि आपके फेवरेट पात्र कौन से हैं, आप किन पात्रों से ज्यादा प्रभावित हुए हैं?
1: अब तो वेबसाइट पूरा बना है तो सारे पात्र से प्रभावित हुए ही, बट माई फेवरेट इज, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, माई फेवरेट इज द ट्रम्प कार्ड सेक्शन। क्योंकि अगर हमने अलग अलग टाइम के, अलग अलग टाइम पीरियड्स के, अलग अलग एम्पायर्स के कार्ड प्रिंट करके हमने हमारे बच्चों या हमारे स्कूलों में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो उनके थ्रू वो हिस्ट्री पढ़ाना मजेदार बना सकते हैं और उनके बच्चों के बीच में वो एक खुद ही में एक इंटरेस्टिंग गेम हो सकता है, जो वो समर में या कभी भी जब उनको टाइम मिले तो खेल के ना ही वो रिलैक्स कर सकते हैं बट इतिहास के बारे में भी जान सकते हैं। तो हमारे वेबसाइट के थ्रू जो है आपको आपकी पूरी डिस्ट्रिक्ट की पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी। अगर आप रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हो तो आप रायगढ़ पे क्लिक करोगे तो 300 CE से आज तक रायगढ़ में किस किस लोगों ने राज किया, कितनी बार वो जिला हाथ बदला, कितने राजा आए, कितने राजा गए, ये सबका आपको एक ही जगह पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। वो ही नहीं, आपको और भी आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में और भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, जैसे उसका पॉपुलेशन क्या है, उसका एरिया क्या है, उसका एवरेज टेम्परेचर क्या है, उसमें कौन से क्रॉप उगते हैं, उसमें कौन से इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं, कौन से मंदिर हैं, कौन से आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, सबकी लिस्ट आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी, वो भी आप खुद डाउनलोड भी कर सकते हो। कैन टेल यू अ फनी इंसिडेंट रिगार्डिंग दिस। किसी कलीग को दिखा रहा था तो मैंने उसको पूछा कि तुम्हारा जिला कौन सा है, जहां से तुम हो तो उस जिला का नाम बताओ, तो उसने रायगढ़ बताया। तो हमने रायगढ़ पे क्लिक किया तो रायगढ़ में अराउंड 1100-1200 के टाइम पे एक शिलाहारास करके एक जो डायनेस्टी थी वो रूल करती थी। तो वो उसने देखा और उसने बोला कि मेरा जो सरनेम है वो शिलाहारा है। तो वो उसी को नहीं पता था कि वो एक जमाने के राज परंपरा से था। तो वो एक अच्छा सा कोरिलेशन हो गया था हमको और उसको भी एक अच्छी जानकारी मिली जो उसको तभी तक नहीं पता थी।
0: कृष्णा जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके और बहुत कुछ हमें आपकी वेबसाइट के बारे में जानने को मिल रहा है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आने वाले समय के लिए क्या आप वर्चुअल रियलिटी या AI जैसे फीचर्स भी इसमें जोड़ने की योजना बना रहे हैं?
1: जैसे मैंने आपको बोला था कि 3D मॉडल्स ऑफ इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया, जैसे कैलाश टेम्पल हो, या जैसे मैंने बोला था बृहदीश्वर टेम्पल हो, या एलोरा केव्स हो, या अजंता केव्स हो, तो हम वर्चुअल रियलिटी के थ्रू लोगों को उन मॉन्यूमेंट्स को घर बैठे बैठे एक्सपीरियंस दे सकते हैं। मुझे VR के वर्ल्ड के बारे में इतनी ज्यादा जानकारी है नहीं, तो इसके लिए मैं इसके बारे में आपको विस्तारित से जवाब नहीं दे सकता, लेकिन आई एम श्योर दैट इन द कमिंग टाइम टेक्नोलॉजी विल बी सोफिस्टिकेटेड इनफ वेयर आप घर बैठे बैठे कैलाश टेम्पल को एक्सप्लोर कर सकते। तो ऐसे बहुत सारे फीचर डाल सकते हैं जहां पे लोग घर बैठे बैठे या वो मॉन्यूमेंट में ही वो मॉन्यूमेंट के बारे में जाने और उसको एंजॉय करें। अभी तो फिलहाल 3D मॉडलिंग तो हमने नहीं की, हमने तो एक सिंपल ओवर 2D मैप ओवर लेआउट में हमने एक टाइमलाइन किया है। जैसे हम सोच रहे हैं कि जैसे आगे बढ़े, हम ऐसा भी कुछ करें कि भारत के कुछ इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं उसको

0: हम एक 3D मॉडल बना के वेबसाइट में होस्ट करें ताकि लोग वहां पे 3D के थ्रू उस मॉन्यूमेंट्स को एक्सपीरियंस कर सके। ये एक फीचर है जो हमने पाइपलाइन में रखी है, जल्दी में वो हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। कोलैबोरेशन से हमारा जो एक्यूरेसी है, ये जो एनरिचमेंट ऑफ डेटा है, ये कोलैबोरेशन से आगे बढ़ेगा। बट हाउ आई विजुअलाइज दिस वेबसाइट एटलीस्ट इन द नियर फ्यूचर इज एन एजुकेशनल एड।
1: आपसे रोचक बातचीत जारी रहेगी यहाँ इसी मोड पर। मैं आपसे आपकी पसंद का एक गाना पूछना चाहूंगी जो हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे।
0: दंगल टाइटल सॉन्ग है वो।
1: ठीक है, तो लीजिए आपकी पसंद का ये गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं।

गाने के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। मन की बात का विस्तार लिए ये कार्यक्रम आज आप तक लाया है एक वेबसाइट।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम आहूजा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आधारित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
1: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे मंगलवार को एकतानगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह के विजेताओं को सम्मानित करेंगी। राष्ट्रपति बुधवार को बड़ोदरा में महाराज सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस ने वाराणसी में बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति समिति टीपीसी के प्रमुख ब्रजेश गंझू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। ब्रजेश गंझू की गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने कुल 30 लाख रूपये का इनाम घोषित किया था। दिल्ली कैंट विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के कार्यालय ने साफ किया है कि भारत के चुनाव आयुक्त डॉ सुखबीर सिंह संधू द्वारा दी गई जानकारी, तथ्यों और दस्तावेजों की ठीक से जांच कर ली गई है। एक प्रेस नोट में निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी ने कहा कि डॉ संधू की वोटर लिस्ट एंट्री को मंजूरी दे दी गई है और इसे विधानसभा क्षेत्र 38 दिल्ली कैंट की फाइनल वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए बरकरार रखा गया है। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला करते हुए मॉस्को में एक तेल शोधन संयंत्र और रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन ने रूस पर 1000 से अधिक ड्रोन दागे हैं, जिनमें से सैकड़ों का रुख सीधे राजधानी मॉस्को की तरफ था। मॉस्को के मेयर सरगई सोबियानिन ने इसे राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया है। रूस में यह नया हमला ऐसे समय हुआ है जब वहां 3 दिवसीय संसदीय चुनावों का आखिरी चरण जारी था। समरकंद में चल रहे 46वें शतरंज ओलंपियाड के 5वें राउंड में आर प्रज्ञानंद और डी गुकेश ने अनिश गिरी और इरविन अलामी के खिलाफ अहम जीत हासिल की, जिससे भारत ने नीदरलैंड्स पर 3-1 से जीत पक्की कर ली है। लेकिन भारतीय महिला टीम को पोलैंड से हार का सामना करना पड़ा। ओपन कैटेगरी में आर प्रज्ञानंद और डी गुकेश

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 MHz पर। मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 1:11 और 8 सेकंड। गीत सुहाने प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ के साथ।

फिल्म असली नकली से लता मंगेशकर की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये सदाबहार गीत। संगीत शंकर जयकिशन का था और गीतकार थे शैलेंद्र साहब। 1962 में ये फिल्म रिलीज हुई थी और इस फिल्म को निर्देशित किया था ऋषिकेश मुखर्जी ने। देवानंद, साधना, लीला चिटनिस, अनवर हुसैन, संध्या रॉय और केस्ट्रो मुखर्जी ने इस फिल्म में अभिनय किया था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट भी रही थी। अगला गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में।

फिल्म का नाम नीलकमल और आवाज थी रफी साहब की, संगीत रवि का, और ये फिल्म आई थी 1968 में, जिसमें मुख्य भूमिका निभाई थी वहीदा रहमान, राजकुमार, मनोज कुमार और ललिता पवार ने। अगला गीत आशा जी की आवाज़ में।

आशा जी की आवाज़ में सुना आपने ये सदाबहार गीत फिल्म साहिब बीवी और गुलाम से, और इस फिल्म का संगीत दिया था हेमंत कुमार ने और गीतकार थे शकील बदायूनी साहब। ये फिल्म आई थी 1962 में और इस फिल्म को निर्देशित किया था अबरार अल्फी ने, निर्मित गुरुदत्त साहब ने किया था और इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी गुरुदत्त, मीना कुमारी, रहमान, वहीदा रहमान। और ये फिल्म 1956 की बंगाली फिल्म साहेब बीवी और गुलाम की रीमेक थी और जो बिमल बित्रा के उपन्यास पर आधारित थी। अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म लव इन टोक्यो से।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

स्वादिष्ट पिलाऊ 1 MHz पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 1:41 और 21 सेकेंड और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने। अगला गीत लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज में।

लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये गीत। फिल्म का नाम परवरिश और संगीत था दत्ताराम वाडकर का और गीतकार थे हसरत जयपुरी। ये फिल्म आई थी 1958 में और इस फिल्म को निर्देशित किया था शानू बनर्जी ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी राज कपूर, माला सिन्हा और महमूद ने। अगला गीत तलत महमूद और शमशाद बेगम की आवाज़ में।

फिल्म बाबुल से सुना आपने ये गीत, शमशाद बेगम और तलत महमूद की आवाज में। गीतकार थे शकील बदायूनी और संगीत था नौशाद साहब का। ये फिल्म 1950 में आई थी और ये इस फिल्म को निर्देशित किया था एस यू सनी ने, और नौशाद साहब ने इस फिल्म को प्रोड्यूस करने के अलावा इस फिल्म का म्यूज़िक भी दिया था और अहम रोल इसमें निभाया था दिलीप कुमार, नरगिस मुनव्वर सुल्ताना ने।

फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल भी रही और 1950 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। गीत, अगला गीत अब तक पहुंच रहा है रफी साहब की आवाज में। फिल्म का नाम गजल।

0: छोड़ी समाचार के साथ मैं पूनम आहूजा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी है। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
1: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे मंगलवार को एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में विजेताओं को सम्मानित करेंगे। राष्ट्रपति बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस ने वाराणसी में बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति समिति टीपीसी के प्रमुख ब्रजेश गंझू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। ब्रजेश गंझू की गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने कुल 30 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। नागालैंड में निर्वाचन आयोग की वोटर लिस्ट की स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन एसआईआर प्रक्रिया के तहत 16 अगस्त से 14 सितंबर तक चले मतदाता गणना चरण में 88.38% मतदाता गणना फॉर्म जमा किए गए। एसआईआर से पहले के 13,97,208 मतदाताओं में से कुल 11,99,456 मतदाताओं ने अपने मतदाता गणना फॉर्म जमा किए। इस गणना प्रक्रिया में 28,944 मृत मतदाताओं की पहचान की गई, जबकि 1,23,749 मतदाताओं की अनुपस्थिति कहीं और चले गए या अन्य श्रेणी में रखा गया। इसके अलावा 5,059 मतदाता एक से ज्यादा जगहों पर पंजीकृत पाए गए। इस प्रक्रिया के बाद आज ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई है, जिसमें सर्विस वोटर सहित 12,06,457 मतदाता शामिल हैं। हेती के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की जुलाई 2021 में हुई हत्या के मामले में गिरफ्तार किए गए 18 संदिग्धों को रविवार को अमेरिका को प्रत्यर्पित किया गया। इसके साथ ही हैती में चल रही लंबी कानूनी प्रक्रिया खत्म हो गई। इस हत्या ने कैरिबियन देश को हिलाकर रख दिया था। फ्लोरिडा के दक्षिणी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी रेडिंग क्विनोस ने के मुताबिक इन संदिग्धों पर फ्लोरिडा में मुकदमा चलेगा। उन्होंने कहा कि एफबीआई और अन्य एजेंसियां ये पक्का करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं कि देश के प्रमुख की हत्या से फायदा उठाने की कोशिश करने वाले सभी लोगों को पूरी तरह जवाबदेह ठहराया जाए। ये प्रत्यर्पण ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका इस मामले में कई अन्य संदिग्धों पर मुकदमा चला रहा है और उन्हें सजा सुना रहा है।

तुमने जब पहली बार मेरा हाथ थामा था, तुमने जब पहली बार मेरा हाथ थामा था, तो मैंने जाना कि दो शहरों की दूरी सिर्फ हाथों को थाम लेने भर से कम हो जाती है। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 2:12 और 3 सेकंड। रात सुरमई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और इस सुरमई प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर और रफी साहब की आवाज़ के साथ।

वादे तो हम सभी करते हैं, कोई अपने दोस्त से करता है, कोई अपने पेरेंट्स से करता है, और कभी कभी हम खुद भी अपने आप से करते हैं। लेकिन जो वादे आंखों ही आंखों में किए जाते हैं, उनकी बात ही कुछ अलग होती है ना। अगर इस गाने को सुनकर आपको भी किसी की याद आई हो जिससे आपने आंखों ही आंखों में वादा किया था, तो ये अगला गीत उसी के लिए।

प्यार में जब हम चलते हैं, साथ साथ चलते हैं, तो एक खूबसूरत और एक अच्छा सा जो जहां होता है वो अपने आप बनता चला जाता है। प्यार में साथ साथ चलने से रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं और हम अच्छी मंजिलों की तरफ बढ़ने लगते हैं। और हम प्यार में ना सबसे अच्छी बात ये होती है कि हमें सामने वाले को जो हमारे लिए खास है उसे ये बताना भी होता है कि तुम मेरे लिए खास हो। सिर्फ गानों से काम नहीं चलता। तो अगली बार जब भी आपकी मुलाकात खास इंसान से हो तो उसे बताना भी है कि वो उसकी जिंदगी में कितना खास है। अगला गीत रफी साहब और लता मंगेशकर की आवाज़ में आप ही के लिए। ना, ना, ना, ना।

जब बागों में बाहर है तो फिर स्टूडियो में क्या होना चाहिए? स्टूडियो में होना चाहिए मीठी मीठी बातें और प्यार भरे गाने जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं, और उम्मीद है आपको पसंद भी आ रहे होंगे। जब इस गाने को सुनकर किसी खास इंसान की याद आ ही गई है तो फिर उस तक बाहर पहुंचाना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये अगला गीत आप ही के लिए।

उठ कर तो आ गए हैं तेरी बज्म से मगर, उठ कर तो आ गए हैं तेरी बज्म से मगर, कुछ दिल ही जानता है कि किस दिल से आए हैं।

100.1 MHz पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 2:40 और 15 सेकेंड और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रात सुरमई। रात के कितने रंग होते हैं, कभी वो उदास होती है, कभी खुश होती है, जिंदगी की तरह। और अगला गीत आप तक लता मंगेशकर की आवाज में, बहुत ही खूबसूरत गीत आप सभी के लिए।

कभी आपने रात की उदास चिट्ठियां पढ़ी हैं? मैंने पढ़ी है और मुझे ऐसा लगता है कि ये उदास चिट्ठियां कभी भी अपने सही पते पर नहीं पहुंचती। ये श्राप है इनको, इनके हिस्से में सिर्फ भटक नहीं आया है, जो दूर से देखने में अच्छी लगती हैं, चमत्कार भी लगता है, रोशनी भी लगती है, और जो अपनी ही रोशनी से इनका दम घुट जाता है। तो अगली बार जब भी आपको रात की चिट्ठी मिली, तो उसे उसकी रोशनी से नहीं, उसके अंधेरे से समझने की कोशिश करना। अगला गीत आप ही के लिए।

अभी तो बताया मैंने अपना नाम आपको। रात की चिट्ठियों में इतना नहीं खोना होता कि मुझे ही भूल जाओ। मैं आपकी रात की हम सफ़र, जहाँ जुड़ते हैं हम दिल से दिल तक। और ना जाने इस साथ के साथ इस सफ़र में कितने कस्में वादे हम बिना कहे निभाते चले जाते हैं। अगला गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ पे।

रात सुरमई में आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। अब से थोड़ी देर में यानी 3 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 3:10 पर हमराही प्रोग्राम लेकर आपके साथ रहेंगी मीना चौहान। मुझे यानी अपनी रात की हम सफर मंजू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम आहूजा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
1: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे मंगलवार को एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में विजेताओं को सम्मानित करेंगी। राष्ट्रपति बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस ने वाराणसी में बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति समिति टीपीसी के प्रमुख ब्रजेश गंजू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। ब्रजेश गंजू की गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने कुल 30 लाख रूपये का इनाम घोषित किया था। नागालैंड में निर्वाचन आयोग की वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर प्रक्रिया के तहत 16 अगस्त से 14 सितंबर तक चले मतदाता गणना चरण में 88.38% मतदाता गणना फॉर्म जमा किए गए। एसआईआर से पहले के 13,97,208 मतदाताओं में से कुल 11,99,456 मतदाताओं ने अपने मतदाता गणना फॉर्म जमा किए। इस गणना प्रक्रिया में 28,944 मृत मतदाताओं की पहचान की गई, जबकि 1,23,749 मतदाताओं की अनुपस्थिति, कहीं और चले गए या अन्य श्रेणियों में रखा गया। इसके अलावा 5,059 मतदाता एक से ज्यादा जगहों पर पंजीकृत पाए गए। इस प्रक्रिया के बाद कल ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई, जिसमें सर्विस वोटर्स सहित 12,06,457 मतदाता शामिल हैं। हेती के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की जुलाई 2021 में हुई हत्या के मामले में गिरफ्तार किए गए 18 संदिग्धों को रविवार को अमेरिका को प्रत्यर्पित किया गया। इसके साथ ही हेती में चली लंबी कानूनी प्रक्रिया खत्म हो गई। इस हत्या ने कैरेबियन देश को हिलाकर रख दिया था। फ्लोरिडा के दक्षिणी जिले के अमरीकी अटॉर्नी रेडिंग क्विननॉन्स ने के मुताबिक इन संदिग्धों पर फ्लोरिडा में मुकदमा चलेगा। उन्होंने कहा कि एफबीआई और अन्य एजेंसियां ये पक्का करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं कि देश के प्रमुख की हत्या से फायदा उठाने की कोशिश करने वाले सभी लोगों को पूरी तरह जवाबदेह ठहराया जाए। ये प्रत्यर्पण ऐसे समय हो रहा है जब अमेरिका इस मामले में कई अन्य संदिग्धों पर मुकदमा चला रहा है और उन्हें सजा सुना रहा है। मौसम विभाग ने ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अगले 2 से 3 दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दिल्ली में अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास और न्यूनतम 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। समरकंद में चल रहे 46वें शतरंज ओलंपियाड के 5वें राउंड में आर प्रज्ञानानंद और डी गुरकेश ने अनीश गिरी और इरविन अलामी के खिलाफ अहम जीत हासिल की।

0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो चुका है 3:11 और 4 सेकंड। हमराही कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ मीना चौहान। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं इस गीत के साथ।
1: यूं ही तुम

नजरों की भाषा भी बड़ी कमाल की होती है, बिना कुछ कहे ही दिल की सारी बात कह जाती है। तो आइए सुनते हैं प्यार की इन्हीं हसीन इशारों से सजा कश्मीर की गली का ये सदाबहार गीत।

जानते हैं दोस्तों, यादों की भी एक अलग दुनिया होती है, जहां कोई दूर होकर भी हर पल हमारे पास रहता है। कभी किसी अपने की हंसी याद आती है, कभी साथ बिताए पल, और कभी बस यूं ही दिल कह उठता है कि तुम होते तो कितना अच्छा होता। इसी इंतजार और किसी अपने को फिर से पास बुलाने की खूबसूरत चाहत के साथ सुनते हैं फिल्म चरस का ये गीत।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हो चुका है 3:26 और 33 सेकंड। कार्यक्रम चल रहा है हमराही, और मैं हूं आपके साथ मीना चौहान।

जानते हैं दोस्तों, प्यार जब दिल में उतरता है ना, तो हर धड़कन किसी अपने को पुकारने लगती है। कभी ये पुकार शब्दों में होती है, कभी आंखों में, और कभी किसी गीत के सुरों में। इसी मासूम पुकार और प्रेम की खूबसूरत अनुभूति को अपने सुरों में समेटे हैं ये गीत।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

दोस्तों, जब किसी को अपना मान लेते हैं ना, तो दिल की दुनिया भी उसी के नाम हो जाती है। फिर उसकी खुशी में, अपनी खुशी और उसकी मौजूदगी में अपनी दुनिया नजर आने लगती है। इसी मासूम प्रेम और अपनेपन के एहसास को खूबसूरती से बयां करता फिल्म मिलन का ये गीत।

दोस्तों, किसी रिश्ते की असली खूबसूरती तब सामने आती है जब हालात बदल जाए, दूरियां बढ़ जाए, लेकिन दिल में एक दूसरे के लिए प्यार कम ना हो। वफा वही है जो वक्त की कसौटी पर भी अपने आप का अपनेपन का एहसास बनाए रखे। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, निभाए गए वादों से पहचाने जाते हैं।

शीशा हो या दिल, दोनों ही नाजुक चीजें हैं और दोनों की अपनी एक नाजुक दुनिया होती है। एक टूट जाए तो टुकड़े दिखाई देते हैं और दूसरा टूटे तो दर्द दिखाई नहीं देता। इसलिए रिश्तों में प्यार के साथ थोड़ी सी संभाल और बहुत सारा अपनापन भी जरूरी है।

दोस्तों, आज के दौर में बात पल भर में पहुंच जाती है, लेकिन कभी खत का इंतजार भी मोहब्बत का एक खूबसूरत हिस्सा हुआ करता था। कागज पर लिखे हर शब्द में अपनेपन की खुशबू होती थी और जवाब का इंतजार दिल को बेचैन भी करता था और खुश भी। उसी दौर की मीठी याद लिए सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही हमराही कार्यक्रम से मुझे यानी मीना चौहान को दीजिए इजाजत। नमस्कार। 4:10 पर आपके साथ रहूंगी कार्यक्रम अरुणिमा में। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम आहूजा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए

0: हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
1: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे मंगलवार को एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में विजेताओं को सम्मानित करेंगी। राष्ट्रपति बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस ने वाराणसी में बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति समिति टीपीसी के प्रमुख ब्रिजेश गंझू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। ब्रिजेश गंझू की गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने कुल 30 लाख रूपये का इनाम घोषित किया था। नागालैंड में निर्वाचन आयोग की वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर प्रक्रिया के तहत 16 अगस्त से 14 सितंबर तक चले मतदाता गणना चरण में 88.38% मतदाता गणना फॉर्म जमा किए गए। एसआईआर के पहले से 13,57,208 मतदाताओं में से कुल 11,99,456 मतदाताओं ने अपने मतदाता गणना फॉर्म जमा किए थे। रूस में युद्ध के दौरान हुए पहले संसदीय चुनाव के लिए मतदान कल रात समाप्त हो गया। इस चुनाव में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नीतियों का कोई विरोध नहीं था और क्रेमलिन का दबदबा और मजबूत होना लगभग तय है। 3 दिन तक चले इस चुनाव के आखिरी दिन यूक्रेनी सेना ने रूस पर 1,000 से ज्यादा ड्रोन दागे, जिनमें से सैकड़ों मॉस्को की ओर भेजे गए थे। रूस के केंद्रीय चुनाव आयोग ने बताया कि वोटिंग खत्म होने तक मतदान का प्रतिशत 56.66% रहा। हेती के राष्ट्रपति जेवेनेल मोइस की जुलाई 2021 में हुई हत्या के मामले में गिरफ्तार किए गए 18 संदिग्धों को रविवार को अमेरिका को प्रत्यर्पित किया गया। इसके साथ ही हेती में चली लंबी कानूनी प्रक्रिया खत्म हो गई। इस हत्या ने कैरेबियन देशों को हिलाकर रख दिया था। फ्लोरिडा के दक्षिणी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी रेडिंग क्विनोन्स के मुताबिक इन संदिग्धों पर फ्लोरिडा में मुकदमा चलेगा। उन्होंने कहा कि एफबीआई और अन्य एजेंसियां ये पक्का करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं कि देश के प्रमुख की हत्या से फायदा उठाने की कोशिश करने वाले सभी लोगों को पूरी तरह जवाबदेह ठहराया जाए। ये प्रत्यर्पण ऐसे समय में हो रहा है जब अमरीका इस मामले में कई अन्य संदिग्धों पर मुकदमा चला रहा है और उन्हें सजा सुना रहा है। समरकंद में चल रहे 46वें शतरंज ओलंपियाड के 5वें राउंड में आर प्रज्ञानानंद और डी गुकेश ने अनीश गिरी और इरविन अलामी के खिलाफ अहम जीत हासिल की, जिससे भारत ने नीदरलैंड पर 3-1 से जीत पक्की कर ली है, लेकिन भारतीय महिला टीम को पोलैंड से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. President Draupadi Murmu has said, the increasing frequency of natural disasters in recent times underlines the urgent need for strong climate action and global cooperation to mitigate the impacts of climate change. The president was addressing the valedictory session of the two-day conference on the future of

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हो चुका है 4:11:05। अरुणिमा कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ मीना चौहान। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, सुबह के इस सुहाने पहर में जब एक नई सुबह धीरे धीरे दस्तक दे रही है, तो क्यों ना शुरुआत की जाए एक खूबसूरत एहसास के साथ। फूलों की खुशबू की तरह कुछ यादें भी मन को ताजगी से भर देती है और किसी अपने की याद दिला जाती है। तो आइए प्यारी सी सुबह की शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ।

मिलने का इंतजार जब खत्म होता है ना, तो वो पल अपने आप में एक छोटी सी खुशी बन जाता है। अपनों से मिलने की खुशी में जैसे समय भी कुछ पल के लिए ठहर जाता है और दिल बस उसी खूबसूरत लम्हे को जीना चाहता है। आइए सुनते हैं इसी मिलन की खुशी और उमंग से सजा ये गीत।

फूलों की तरह खिलती हुई मुस्कान किसी भी सुबह को और खूबसूरत बना देती है। किसी अपने की एक मुस्कुराहट में वो जादू है जो बिना कुछ कहे दिल का मौसम बदल देता है। तो आइए इसी खिलखिलाते एहसास के साथ सुनते हैं ये गीत।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो चुका है 4:26 और 16 सेकंड। कार्यक्रम चल रहा है अरुणिमा और मैं हूं आपके साथ मीना चौहान।

दोस्तों, दूरियां कभी कभी मन को बहुत बेचैन कर देती है। तब दिल बस यही चाहता है कि काश कोई ऐसी राह होती जहां रास्ते और फासले मायने ही ना रखते और हम बिना देर किए अपने प्रिय तक पहुंच जाते। इसी प्यारी सी ख्वाहिश को आवाज देता ये गीत सुनते हैं।

दोस्तों, जिंदगी भी एक सफर है और इस सफर में कई बार हम खुद से ही पूछ बैठते हैं कि आखिर जाना कहाँ है, कौन सी राह हमें हमारी मंजिल तक ले जाएगी। लेकिन शायद यही अनजानी राहें और छोटे छोटे पड़ाव जीवन को खूबसूरत बनाते हैं। तो आइए सफर और मंजिल की इसी प्यारी सी बात को सुनते हैं इस गीत में।

दोस्तों, प्यार की बातें भी बड़ी अजीब होती है। किसी को देखते ही दिल की धड़कन बन जाए, मुस्कान अपने आप चेहरे पर आ जाए, फिर भी जुबान कहे कि हमें तो कुछ पता ही नहीं। इसी भोलेपन और चुलबुले अंदाज के साथ सुनते हैं फिल्म शागिर्द का ये गीत।

जब दिल में किसी के लिए प्यार होता है ना, तो उसे छुपाना भी कहाँ आसान होता है। दिल चाहता है कि पूरी दुनिया को बता दें कि हमारे लिए सबसे खास कौन है और ये एहसास कितना खूबसूरत है। इसी बेझिझक प्यार की मीठी सी पुकार के साथ सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही मीना चौहान को अरुणिमा कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। नमस्कार, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
1: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की

की अध्यक्षता करेंगी। श्रीमती मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वे ब्रह्म कुमारी के विश्व नवीनीकरण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान का शुभारंभ और वडोदरा में ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस स्ट्रीट केंद्र का उद्घाटन भी करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति ब्रह्म कुमारी नडियाड के विकसित भारत के लिए युवा राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति का जागरण अभियान का वर्चुअल शुभारंभ भी करेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। नागालैंड में निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत 16 अगस्त से 14 सितंबर तक चले मतगणना गणना चरण में 88.38% मतदाता गणना फॉर्म जमा किए गए। एसआईआर से पहले के 13,57,208 मतदाताओं में से कुल 11,99,456 मतदाताओं ने अपने मतदाता गणना फॉर्म जमा किए। इस गणना प्रक्रिया में 28,944 मृत मतदाताओं की पहचान की गई, जबकि 1,23,749 मतदाताओं को अनुपस्थित, कहीं और चले गए या अन्य श्रेणियों में रखा गया। इसके अलावा 5,059 मतदाता एक से ज्यादा जगहों पर पंजीकृत पाए गए। इस प्रक्रिया के बाद कल मसौदा मतदाता सूची जारी की गई, जिसमें सर्विस वोटर्स सहित 12,06,457 मतदाता शामिल हैं। सदियों के इंतजार के बाद भव्य राम मंदिर के निर्माण से भगवान राम की नगरी अयोध्या में विकास के एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। अयोध्या नगरी अब धार्मिक, पर्यटन और विकास के वैश्विक पटल पर प्रमुखता से उभरी है। केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों से अयोध्या में विकास के नए दौर की शुरुआत हुई है और ये नगरी एक बार फिर सनातन धर्म के प्रमुख वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित हो रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के उच्च स्तरीय सप्ताह के लिए भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। साथ ही डॉक्टर जयशंकर इस महीने की 26 तारीख को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित भी करेंगे। यात्रा के दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी हिस्सा लेंगे। रूस में युद्ध के दौरान हुए पहले संसदीय चुनाव के लिए मतदान कल रात समाप्त हो गया। इस चुनाव में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नीतियों का कोई विरोध नहीं था और क्रेमलिन का दबदबा और मजबूत होना लगभग तय है। 3 दिन तक चले इस सप्ताह के आखिरी दिन यूक्रेन की सेना ने रूस पर 1,000 से ज्यादा ड्रोन दागे, जिनमें से सैकड़ों मॉस्को की ओर दागे गए थे। हैती के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की जुलाई 2021 में हुई हत्या के मामले में गिरफ्तार किए गए 18 संदिग्धों को रविवार को अमेरिका को प्रत्यर्पित किया गया। इसके साथ ही हैती में चली लंबी कानूनी प्रक्रिया खत्म हो गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो चुका है 5:11 और 7 सेकंड। भोर सुहानी कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ मीना चौहान। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं इस गीत के साथ।

दोस्तों, किसी खूबसूरत चेहरे की तारीफ करना भी आसान नहीं होता, क्योंकि खूबसूरती को शब्दों में बांधना भी मुश्किल होता है। कभी किसी की मुस्कान दिल जीत लेती है, कभी किसी की आंखों की चमक भा जाती है, और कभी किसी की एक झलक ही इतनी खास होती है कि तारीफ के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं।

संगीत की सबसे खूबसूरत बात यही है कि इसे समझने के लिए किसी भाषा की जरूरत नहीं होती। सात सुर जब मिलते हैं ना, तो कभी खुशी बनकर चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं, कभी किसी पुरानी याद का दरवाजा खोल देते हैं, और कभी दिल की ऐसी बात कह जाते हैं जिसे हम शब्दों में नहीं कह पाते हैं। सारे गामा पाधा निसा, ये सिर्फ सात सुर नहीं बल्कि भावनाओं की एक पूरी दुनिया है। इन्हीं सुरों से सजे गीत हमारी जिंदगी के अलग अलग रंगों को आवाज देते हैं।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो चुका है 5:26:26 और 42 सेकेंड। कार्यक्रम चल रहा है भोर सुहानी और मैं हूं आपके साथ मीना चौहान।